FM 91.3 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक्षमत 348 की आषाढ़ मास की 4वीं तिथि तदनुसार 15 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य

0: शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन सीईटीए और डीसीसी का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मथेसिया व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारे पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबेल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है, FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं खेती की बातें। किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें जुलाई माह के मुख्य मुख्य कृषि कार्य की। जुलाई माह खरीफ की फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक है। जुलाई माह में खरीफ फसलों में कई मुख्य सब्जियों की खेती भी होती है। इस माह में कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें। खेतों में जल निकास की व्यवस्था करें। जल निकास सफल खरीफ फसल का आधार है। मक्का, गन्ना, कपास, बाजरा और अन्य फसलों में सिंचाई के लिए

बनाई नालियों को जल निकास के काम में ला सकते हैं। खेत में पानी जमा होने से फसलों का भारी नुकसान हो सकता है। फालतू पानी को गांव के तालाब में ले जाने का प्रबंध करें और जरूरत पड़ने पर सिंचाई के काम में लाएं। धान में रोपाई के बाद हर हफ्ते पुराना पानी खेत से निकालकर ताजा पानी भरे जो 2 इंच से ज्यादा गहरा ना हो। यदि कम पानी उपलब्ध है तो हल्की सिंचाई करके खेत को सिर्फ गीला रखें। नेत्रजन प्रबंध बहुत जरूरी है, इससे पोषक तत्वों का बचाव होता है। जुलाई माह में नेत्रजन खाद देते समय वर्षा का विशेष ध्यान रखें। जमीन में काफी नमी होनी चाहिए ताकि यूरिया पूरी तरह घुल जाए, पर अधिक नमी या तुरंत बरसात होने की स्थिति में यूरिया तब तक न डालें जब तक मौसम और जमीन में नमी उचित मात्रा में नहीं रह जाती है। जी हाँ किसान भाइयों, मूंगफली की बुआई माह के मध्य तक पूरी कर लें। बाजरा की बुआई के लिए जुलाई का दूसरा या तीसरा सप्ताह उत्तम है। ज्वार की खेती में 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। सोयाबीन की बुआई के लिए जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह का समय सर्वोत्तम है। गन्ने को गिरने से बचाएं और खेतों से पानी निकलने की व्यवस्था करें। गन्ने में लगी बेल को काटकर अलग कर दें। यदि मक्का की बुआई नहीं हो पाई है तो शीघ्र कर लें। बुआई के 15 दिन बाद पहली निराई कर देनी चाहिए। जो किसान भाई मक्का की खेती शुरू कर चुके हैं वो मक्का की फसल से खरपतवार निकालते रहें। पौधों की छटाई कर लें। खेत में नमी का ध्यान रखें। जुलाई माह में करेला, तोरी, फ्रेंच बीन, टमाटर, फूलगोभी, बैंगन, मिर्ची की फसलें ले सकते हैं। टमाटर की खेती के लिए खेत की तैयारी अच्छी तरह कर लें। बैंगन के लिए इस माह के प्रथम और द्वितीय सप्ताह से ही रोपाई करें और हल्की सिंचाई करें। मिर्च फलों की तुड़ाई कर बाजार भेजने की व्यवस्था करें। बरसात वाली भिंडी की बुआई आप पूरी कर लें। पहले बोई गई भिंडी की फसल में बुआई के 30 दिन बाद प्रति हेक्टेयर 35 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 से 85 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। भिंडी की तैयार फलियों को तोड़कर बाजार भेजने की व्यवस्था करें। आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करें। जल निकास की उचित व्यवस्था करें। ग्वार की तैयार फलियों को तोड़कर बाजार भेजने की व्यवस्था करें। फलियों को कच्ची अवस्था में तोड़ने की कोशिश करें। किसान भाइयों, आम के नए बाग लगाने के लिए रोपाई का कार्य प्रारंभ करें। फलों को तोड़कर बाजार भेजें। बाग में जल निकास की व्यवस्था करें। केला के अवांछित पत्तियों को निकाल दें और पेड़ों पर मिट्टी चढ़ा दें। नए बाग लगाने के लिए रोपाई का कार्य प्रारंभ करें। जी हाँ ग्रामीण भाइयों, अगर आप अमरूद की खेती करना चाहते हैं तो अमरूद के नए बाग रोपने का कार्य करें। किसान भाइयों, अगर हम दलहनी फसलों की खेती की बात करें तो अरहर की कम समय में पकने वाली किस्मों की बुआई जुलाई के प्रथम सप्ताह में कर लें। 1 हेक्टेयर के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून की वर्षा के साथ ही मूंग, उड़द और लोबिया फसलों की बिजाई कर दें। मूंग, उड़द और लोबिया के अलग अलग राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बीज को छाया में सुखाकर कतारों में बोएं। तिल को जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगा सकते हैं। खरीफ की प्याज के लिए पौधशाला में बीज की बुआई जुलाई के पहले पखवाड़े से पहले पूरी कर लें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में बुआई के लगभग 25 से 30 दिन बाद पौधों के बढ़वार के समय प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग जरूर करें। लौकी, खीरा, चिकनी, तोरी, करेला और टिंडा की बुआई भी इस समय में की जा सकती है। करेला की पूसा दो मौसमी और पूसा विशेष किस्म जुलाई के पहले सप्ताह तक लगा सकते हैं। पिछले माह में बोई गई लौकी वर्गीय सब्जियों को मचान बनाकर सहारा दें। सभी सब्जियों में उचित जल निकास की व्यवस्था करें। जी हाँ ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें जुलाई माह के मुख्य मुख्य कृषि कार्य की। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, जुलाई माह में कृषि कार्य, प्रतिमा वर्मा से। यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।
1: नंबर 208 208।

भरत को चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट आते देख निषादों की भांति लक्ष्मण के मन में भी आशंका हुई कि राजपद पाकर भरत को प्रभुता का मद हो गया है और श्री राम को वन में अकेला असहाय समझ वे युद्ध करने आ रहे हैं। अतः लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने की ठान ली। श्री राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोले, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने वैसे भी हमारा कम अहित नहीं किया है और अब युद्ध करने आ रहे हैं, आखिर हम ये सब कहां तक सहन करेंगे, जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। अग्रज से युद्ध की आज्ञा मांगते हुए लक्ष्मण साक्षात वीर रस के अवतार दिख रहे थे। सिर पर जटाजूट और कमर में बंधा बाणों भरा तरकस, भरत का सामना करने को वो पूरी तरह तैयार हैं। उपस्थित समाज के वहां एकत्रित होने के कारण उनका हौसला और भी बढ़ गया है। मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध अच्छी तरह प्रकट करेंगे। क्रोधित लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख सारा जगत भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे तात, जो बिना विचारे जल्दी में कुछ करके बाद में पछताते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं चिंतन निर्मला तिवारी से।

आती है। कोई इन मुश्किलों को देखकर डर जाता है, घबरा जाता है, परेशान होता है, इससे बचने का प्रयास करता है, तो कोई इसे स्वीकार करता है और देखकर प्रसन्न होता है, मुकाबला करता है। अगर देखा जाए तो हर मुश्किल चुनौती हमारे लिए कुछ उपहार लेकर ही आती है, और यह उपहार हमें उस चुनौती को स्वीकारने, उसे पार करने पर ही मिल पाता है। यह एक प्रकार का अवसर होता है, और यह हम पर है कि हम इसे स्वीकारते हैं या पीछे हट जाते हैं। अक्सर लोग मेहनत करने से घबराते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए छोटा और सरल रास्ते की तलाश करते हैं, लेकिन किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में व्यक्ति का संघर्ष जितना कठिन होगा, उसकी सफलता भी उतनी ही शानदार होगी। कठिन संघर्ष से ही व्यक्ति अपने जीवन के उन अनमोल उपहारों के ऊपर पड़ी हुई परतों को हटा पाता है जिनसे वह अनभिज्ञ होता है। कठिन संघर्ष से ही व्यक्ति का जीवन निखरता है, प्रामाणिक बनता है, और मुश्किलें उसके जीवन में वह आग होती हैं जिनसे गुजरने पर उसकी अशुद्धियां जलकर समाप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार सोने की शुद्धता को जांचने के लिए उसे गलाया जाता है, जिससे अशुद्धियां जलकर नष्ट हो जाती हैं और केवल शुद्ध सोना बचता है, उसी तरह कठिन चुनौतियां व्यक्तित्व को निखारती हैं। चुनौतियां हमें सिखाती ही हैं, अवसर प्रदान करती हैं आगे बढ़ने के लिए। हम सीख सकते हैं उस नन्हे बालक से जो चलना सीखता है। वह खड़ा होता है, अपने कदम आगे बढ़ाता है और गिर जाता है। वह बार बार गिरता है, फिर भी वह खड़ा होता है और चलने की कोशिश करता है, अंततः चलना सीख जाता है। इसी प्रकार पशु पक्षियों से भी हम सीख सकते हैं। वो भी कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। इसी तरह हमारे जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं जो हमें सिखाने आती हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुकाबला करने की प्रेरणा देती हैं। व्यक्ति यदि बार बार असफल हो तो वह निराशा हताशा में घिर जाता है, लेकिन यदि बार बार सफल हो जाए, असफलता मिले ही नहीं, तो भी यह सही नहीं है, क्योंकि इससे व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, उन्माद में डूब जाता है। इसलिए जीवन में सुख दुख का होना आवश्यक है ताकि संतुलन बना रहे। संघर्ष होने से जीवन निखरता है, हमें बहुत सारी बातों का ज्ञान कराता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, कुछ करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य जब संघर्ष करता है तो बहुत कुछ अनुभव प्राप्त करता है। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष का होना आवश्यक है। चुनौतियों से डरे नहीं, बल्कि इसे स्वीकारें और आगे बढ़ें।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन निर्मला तिवारी से संघर्ष। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आई सुनते हैं आराधना हरिहरन, सुरेश वाडेकर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे आराधना हरिहरन सुरेश वाडकर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता, रीढ़ की हड्डी की बीमारियां और सावधानियां। भेंट वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर राजचंद्र झा रांची से, और इनसे बातचीत करेंगे श्री संजीव कुमार लाल।

0: ग्रसित हो जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इस बीमारी को प्रभावित करती है, और क्या क्या सावधानियां अपने हम जीवन में बरतें, और खान पान का हम किस प्रकार ख्याल रखें कि एक संतुलित जीवन हम व्यतीत कर पाएं और रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियां हम तक नहीं पहुंचे। बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजचंद्र झा। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है रीढ़ के हड्डियों से संबंधित बीमारियों में?
1: शरीर के किसी भी अंग की हम बात करें तो आमतौर पर चार कारण गिनवाए जाते हैं बीमारियों के होने के पीछे। एक जन्मजात, जैसे रीढ़ की हड्डियां हैं, किसी बच्चा पैदा होता है उसकी रीढ़ की हड्डियां टेढ़ी होती हैं, या एक से ज़्यादा हड्डी एक से एक साथ मिल जाए तो उसकी हाइट लंबाई कम होती है। दूसरा, संक्रमण बैक्टीरियल हो सकता है, बैक्टीरिया से जीवाणु से हो सकते हैं, कीटाणु से हो सकते हैं। तीसरा, ट्यूमर, जो साधारण ट्यूमर जो जानलेवा नहीं होता है, बेनाइन, या जिसे हम कैंसर कहते हैं, मैलिग्नेंट। और चौथा कारण होता है चोट लगना। तो रीढ़ की हड्डियों की बीमारियों को भी हम इन्हीं चार भागों में बांट के देखते हैं। जन्मजात बीमारियों का मैंने कहा, उसका हमारे पास अभी कोई ऐसा साधन नहीं है खान पान में या दवाइयों के माध्यम से कि उसको हम रोक सकें। दुर्घटना, अपनी तरफ से सावधानी बरतने के बावजूद दुर्घटनाएं होंगी तो उसका इलाज होगा। संक्रमण से बचा जा सकता है, और जो आज की जीवन शैली का आपने जिक्र किया जिसकी वजह से कमर दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, गर्दन से लेकर नीचे कमर तक, तो उसमें खान पान और जीवन शैली में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: जी, आजकल के हमारे युवा साथी लगातार कंप्यूटर या लैपटॉप पर बैठकर काम करते हैं, और काम करने के सिलसिले में बहुत सारी बीमारियाँ उन तक पहुँचती है। उन्हें कमर में दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द महसूस होने लगता है, और कभी कभी पैर के पीछे भी उन्हें दर्द का एहसास होता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, किस तरह की हम सावधानियां रखें कि बीमारी है नहीं हो?
1: अब समय और युग का अपना धर्म होता है, लैपटॉप पर काम करना है तो करना है, लेकिन व्यक्ति के हाथ में जो है कि आप इससे कैसे बचें। तो इसके लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं कि एक तो आप एक ही स्थिति में, एक ही पोस्चर में शरीर को ना रखें, बीच में एक आध मिनट के लिए आप उठ के दो चार कदम टहल सकते हैं। कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जो गर्दन से लेकर कमर तक सहारा दे, सीधा होना चाहिए और कड़ा होना चाहिए, सीधी और कड़ी कुर्सी का उपयोग करें, और अगर संभव हो तो लैपटॉप को टेबल पर थोड़ा ऊंचा कोई सपोर्ट देके रखें ताकि लैपटॉप का स्क्रीन आपके नज़रों के सामने पैरेलल हो, कि आपको झुक के ना काम करना पड़े। तो अगर ये छोटी छोटी सावधानियों से आप रीढ़ के हड्डियों की तकलीफ से बच सकते हैं।
0: जिसके आरंभिक लक्षण हैं वो क्या है, ताकि हम सावधान हो जाएं और अपने दिनचर्या में हम सुधार ला लें?
1: प्रारंभिक लक्षण ज़्यादातर मामले में ये होता है कि काम करते समय दर्द का एहसास होना या थकावट का, कड़ापन गर्दन के पीछे, कमर के पीछे कड़ापन का होना भी शुरुआती लक्षण है। इस स्थिति में अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि काम की अधिकता से ऐसा हो रहा है, लेकिन असली सावधानी की ज़रूरत इसी समय है कि आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। वो आपको, जैसे मैंने बताया कि आपके बैठने के तरीके, आपके काम करने के तरीके के बारे में सुझाव देंगे, आपको खान पान के विषय में बताएंगे, आपको कुछ व्यायाम की सलाह देंगे, और अगर आवश्यक होगा तो दवाइयां देंगे। इन चारों के संयोग से ही इन बीमारियों से बच भी सकते हैं, और अगर बीमारी हो गई है तो उसका समाधान भी निकल सकता है। खान पान में सबसे आवश्यक ये है कि एक चीज़ हम लोग याद रखें कि अपने रसोई घर में उन चीज़ों का ज़्यादा समावेश करें जो हमारे पूर्वज खाया करते थे, दादा, नाना, नानी, दादी। ये फास्ट फूड ने बहुत नुकसान किया है। इस वर्ष पूरी दुनिया में, विशेषकर भारतवर्ष में, मोटे अनाजों

0: काफी चर्चा हो रही है और फिर से एक बार उनको हमारे दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। तो मोटे अनाज, अब अगर भात ही है, चावल खाना है, तो मोटा उसना चावल स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। अगर आप मिलेट्स जिसको कहते हैं, तो उसमें मड़ुआ है, कोदो है, बाजरा है, जो इन सब का भी प्रयोग शुरू करें। एक दौर आया कि हम लोग मैदा की तरफ भागते गए, महीन और चिकना दिखने वाले चावल की ओर गए, इससे नुकसान हुआ। और जो आपके और हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध सब्जियां हैं, साग हैं, झारखंड इस मामले में बहुत धनी है, तरह तरह के साग यहाँ सालों भर उपलब्ध रहते हैं और सभी साग शरीर के लिए, खास करके हड्डियों के लिए भी, जैसे पालक है, बहुत लाभदायक है, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और फास्ट फूड चाउमीन जैसे पदार्थों से बचें।
1: एक्सरसाइज की हम बात करें, क्योंकि हम आजकल घरों के अंदर सिमट के रह जाते हैं, घूमना फिरना हमारा बहुत कम हो गया है, तो व्यायाम हम कितना करें और कितना हम सुबह की सैर करें?
0: आमतौर पे इस बारे में सलाह आज के दिन जो दी जा रही है कि कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट और सप्ताह में 5 दिन, अगर संभव हो तो 7 दिन करें, लेकिन नहीं संभव हो तो सप्ताह में 5 दिन कम से कम आधे घंटे प्रतिदिन सैर करें और तेजी से कदम, ब्रिस्क वॉकिंग हम लोग कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो बाहर नहीं निकल पाते हैं या मजबूरी है महानगरियों में कि ओपन स्पेस, खुली जगह नहीं है जहां जाके आप व्यायाम कर सकते हैं, तो घर में कुछ प्राणायाम और कुछ आसन हैं जो कोई भी गृहस्थ हो वो कर सकता है। और जो ऑफिस में अगर आपके जगह है, थोड़ी सी भी जगह है, तो आजकल सलाह ये दी जा रही है कि आधे घंटे बैठने के बाद अगर आप एक मिनट भी चहलकदमी कर लेते हैं तो आपके शरीर की हड्डियां मजबूत रहेंगी, पैर, घुटना, कूल्हा, नीचे कमर, पीठ और गर्दन का दर्द कम होगा
1: जी। और कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं रीढ़ की हड्डी की, जिससे हम काफी परेशान हो जाते हैं?
0: रीढ़ की हड्डी में एक तो है कि इन्फेक्शन होता, जिसमें हमलों के देश में बहुत आयत में पाया जाता है, वो है रीढ़ की हड्डी का टीबी, यक्ष्मा रोग, उसको भी प्रभावित करता है। उसमें घाव हो जाता है और अगर सड़ने की प्रक्रिया ज़्यादा दिनों तक रह गई तो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो मुख्य नस होता है उस पर दबाव पड़ने से लकवा भी हो सकता है। टीबी ना हो तो बैक्टीरिया, साधारण कीटाणुओं से होता है, उसमें पस जैसे कि फोड़ा जैसा रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। और जो आज के जीव समय की महामारी के रूप में जिसको हम लोग देख रहे हैं और उसका इलाज कर रहे हैं, वो है रीढ़ की हड्डियों की।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता, रीढ़ की हड्डी की बीमारियां और सावधानियां। भेंट वार्ता करते डॉक्टर राजचंद्र झा और इनसे बातचीत कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां आप सब सुनेंगे संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही पलों में।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक व्यापार संधिः अद्य प्रवर्तते। तेन सह सामाजिक सुरक्षा संधिरपि या DCC इति द्विगुण अंशदान संधिः नामना प्रसिद्धः क्रियान्वितो जातः। अनेन ब्रिटेन देशे कार्यरतेभ्यः भारतीय व्यावसायिकेभ्यः कार्यावसराः, प्रतिस्पर्धा सामर्थ्यं च वर्धिष्यन्ते। एषः सन्धिः तावत् ब्रिटेन देशस्य विपण्यां 99% यावत् शुल्कश्रेणीषु भारतीय वस्तूनां शून्यसीमा शुल्कं सुनिश्चीकरोति, येन भारतीय निर्यातस्य संवर्धनं भविष्यति। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् वाणिज्य सचिवः राजेश अग्रवालः इतं सन्धिं भारतस्य व्यापार विकासे महत्वपूर्णम्।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, इसे दोहरा अंशदान समझौता भी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क लाइनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।

0: ये समझौता वैश्विक स्तर पर एकीकृत, सुगम और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 771 मिलियन डॉलर से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर भी श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन यात्रा के बाद कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी गया है। श्री गोयल ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और रोजगार, आर्थिक तथा कृषि मंत्री डेविड क्लारिन वाल से मुलाकात कर भारत बेल्जियम के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, तार्किक और कार्यबल गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट क्षमता वाले 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को संचालन करने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन के लिए मिकेल ओयार जाबल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as a Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants India's exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey.
2: This is one of first FTA of its kind, which establishes future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको बता दें प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:15 पर सुनेंगे पलाश लोकगीतों का ये कार्यक्रम। धनु नायक हम साथियों की आवाज़ में, बेगम अख्तर की आवाज़ में आप सुनेंगे स्वर सरिता। 8 बजे का समय होगा दिल्ली से समाचार प्रभात का। 8:15 पर सुनेंगे दिल्ली से प्रादेशिक समाचार। 8:40 पर सुनेंगे विज्ञापन रांची से। गीत गुंजन का समय होगा 8:45 पर। 9 बजे का समय होगा जोहार पलामू। 9:30 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हिंदी में समाचार आप दिल्ली से सुनेंगे 10 बजे। अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे दिल्ली से 10:05 पर। 10:10 पर हम चलेंगे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती। 11 बजे का समय होगा रंग तरंगा। 12 बजे यादव की महफिल। 1 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 1:05 पर। 1:10 पर हम सुनेंगे

ये प्रादेशिक समाचार रांची से। एक बज के 20 मिनट पर सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सुरीला सफर। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 2 बजे। 2 बज के 15 मिनट पर सुनेंगे दिल्ली और मुंबई से हिंदी में समाचार। 2 बज के 30 मिनट पर आप सुनेंगे विविध भारती में सदाबहार नगमे। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 2 बजकर 55 मिनट पर। 3 बजे आप सुनेंगे विविध भारती में सखी सहेली। 4 बजे का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का। 4 बज के 2 मिनट पर हम चलेंगे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती में आज के मेहमान। प्रादेशिक समाचार का समय होगा रांची से 5 बजे। 5 बज के 2 मिनट पर आप सुनेंगे विविध भारती में छाया गीत मुंबई से। शाम 5 बज के 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

शाम 5:35 प्राप्त सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। खेती बारी का समय होगा 6:02 पर। ग्रामीण सभा सुनेंगे 6:30 पर। 7:00 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का रांची से। रांची से आप सुनेंगे जिले में आजकल 7:10 पर। 7:15 प्राप्त सुनेंगे एक रंग। 7:45 प्राप्त सुनेंगे कल्याणी कार्यक्रम के तहत स्वाद चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता विवाह की सही उम्र। भेंट वार्ता कारों के डॉक्टर निर्मल सिंह रांची से, उनसे बातचीत करेंगे श्री संजीव कुमार लाल। 8:00 का समय होगा चितपट संगीत का। रात्रि के 8:45 प्राप्त सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 9:00। 9:15 प्राप्त सुनेंगे दिल्ली से उर्दू में समाचार। 9:30 प्राप्त सुनेंगे मुंबई से विविध भारती। 10:00 का समय होगा रजनीगंधा का। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से। 11:05 प्राप्त सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। और हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। ये थी हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम पलास धर्मो नायक एवं साथी।

अभी आप सुन रहे थे धर्मू नायक हम साथियों की आवाज़ में पलाश लोकगीतों का ये कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वर सरिता बेगम अख्तर की आवाज़ में।

सलाम, आज तक मैं आपके सामने सिर्फ एक गायिका के रूप में ही हाजिर हुई हूँ। आपसे बातें करने का मौका तो मुझे पहली बार ही मिला है, इसलिए ये कहे बगैर नहीं रह सकती कि मैं बेहद खुशनसीब हूँ जो ऐसे मुल्क में मैंने जन्म लिया जहाँ की फ़जाएँ संगीत से मुअत्तर हैं, जहाँ के लोग फ़न और फ़नकार से मोहब्बत करते हैं। मुझे भी एक फ़नकार की हैसियत से आपका बहुत प्यार मिला है। आपके प्यार का शुक्रिया हमेशा मैंने अपनी गायकी से अदा किया है।

लोग कहते हैं आज के मॉडर्न ज़माने में क्लासिकल म्यूजिक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, इसमें आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं, मगर ऐसा कहने वाले ये भूल जाते हैं कि गज़ल और उसकी गायकी भी क्लासिकल मौसीकी का ही एक अंग है। इसे आज भी वही मकबूलियत हासिल है जो पहले थी। गज़ल अगर सही ढंग से पेश की जाए तो इसका जादू सर चढ़कर बोलता है।

बदलते हुए जमाने ने जहां हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहां मूसीकी ने भी नई कदरों की कदर की है। मैं नएपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहां तक आज के फनकार और मूसीकार नएपन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़ें। गजलें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं, मगर असल में गजल वही कहलाने की मुस्तहक है जिसमें गजल का रवायती अंदाज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर गजल की ये बंदिश सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है।

अभी आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की आवाज़ में स्वर सरिता। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात अब से कुछ ही पर।

0: पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: This is also one of the most ambitious.
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
3: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नयनी पांडे।
0: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्र के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों

0: की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविकी जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुँचे हैं। तीन भव्य रथ नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने के कारण सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम गिर बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकाबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकर। पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकार। जवाब है, पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को 6000 रुपए का एकमुश्त मानदेय देने का लिया निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए बिना अधिग्रहण के ली गई जमीन के बदले मुआवजा देने के लिए निर्देश देने से किया इनकार, कहा प्रार्थी मालिकाना हक साबित करे। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने की दिशा में बीआईटी सिंदरी को शोध और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने का लिया निर्णय। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में झारखंड का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए रणनीति और विभिन्न एजेंडों पर की चर्चा। और मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कार्यों में लगे बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को 6000 रुपए का एक मुश्त मानदेय देने का निर्णय लिया है। यह राशि उन्हें मिलने वाले पारिश्रमिक के अतिरिक्त होगी। चुनाव आयोग ने इस विशेष अभियान में काम के भारी बोझ को देखते हुए यह फैसला लिया है। इस फैसले से झारखंड समेत उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाभ मिलेगा जहां एसआईआर चल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए कथित रूप से बिना अधिग्रहण के उपयोग में ली गई जमीन के बदले मुआवजा देने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रार्थी विवादित जमीन पर अपना कानूनी मालिकाना हक साबित नहीं कर देते तब तक मुआवजे का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद के बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी आपराधिक अपील खारिज कर दी है। अदालत ने इस घटना को न्यायपालिका पर हमला बताते हुए निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने की दिशा में बीआईटी सिंदरी को शोध और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार कल धनबाद में जिला प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। श्री पुरवार ने कहा कि बीआईटी सिंदरी झारखंड की तकनीकी शिक्षा की पहचान रहा है।
1: बीआईटी सिंदरी को एक अच्छा इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। थर्ड तो बीबीएमटी यूनिवर्सिटी है, इसमें भी क्योंकि नया एक्ट आया हुआ है उसकी जो गतिविधियां है उसको कैसे यहाँ पे स्टार्ट करना है ताकि जो हायर एजुकेशन इकोसिस्टम है एक मेच्योर तरीके से उसका एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहे हैं और रिसर्च को और टेक्निकल एजुकेशन को एक जैसे आईआईटीज वगैरह है उसी पैटर्न में उसको डेवलप कर रहे हैं।
0: धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच सियासत पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। दोनों नेता अपने अपने समर्थकों के साथ जनसभा और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि आज निरसा में उनकी जनसभा होगी।
2: पूर्वक पद यात्रा करके वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहेंगे कि जो एलिवेटेड रोड विकास के नाम पर रोकने का प्रयास करेगा, जो निरसा क्षेत्र को विकास का बाधक बनेगा, उसका जवाब निरसा के जनता 24 घंटा देने के लिए 15 तारीख को एक विशाल पद यात्रा का आयोजन किया गया है।
0: वहीं मार्क्सवादी समन्वय समिति विधायक अरूप चटर्जी ने भी आज अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा की।
3: उनका उद्देश्य पॉलिटिकल है तो निश्चय पॉलिटिकल की जवाब पॉलिटिकल में ही दिया जाएगा। अगर निरसा बागमारा में तमाम जगहों को छोड़कर निरसा में शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे अगर हमको या हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे तो हम लोग भी वहाँ अपनी शक्ति का परिचय देंगे।
0: इधर धनबाद जिला प्रशासन ने दोनों कार्यक्रमों में सुरक्षा को लेकर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की है। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने 13 सितंबर से केप टाउन में आयोजित होने वाले 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में झारखंड से भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडल को लेकर कल बैठक की। इस दौरान झारखंड का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सम्मेलन की रणनीति और एजेंडा पर चर्चा की गई। सदस्यों ने राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े विषयों को सम्मेलन में प्रमुखता से उठाने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैंटीन सर्विसेज की 80वीं बैठक में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कामकाज और रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। संजय सेठ ने कहा कि सीएसडी में किए जा रहे सुधार लाभार्थी केंद्रित हैं और आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल तथा सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा को रिम्स का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि रिम्स की व्यवस्था में कई व्यापक सुधार हुए हैं और आगे भी जारी रहेंगे।
4: कॉलेज से शूट में कैसेट टर्न हुआ, इसको हमने नजदीक से देखा है और यहाँ जो पहले पेशेंट का था, जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ये सब रहते थे, लेकिन आज सुपर स्पेशलिस्ट भी हो गए। जैसे हमारे पीडियाट्रिक सर्जन है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, और ये सब जुड़ता गया। इसमें आज हॉस्पिटल की संख्या बढ़ गई है, ये सारा चेंजेज आया है।
0: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी को मगध जोन में दोबारा सक्रिय करने और लेवी के जरिए आर्थिक संसाधन जुटाने के मामले में रांची के विशेष एनआईए अदालत में छठे आरोपी चंदन कुमार के खिलाफ तीसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला वर्ष 2021 में दर्ज किया गया था। गुमला जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत रंजीत कुजूर और सेवानिवृत्त शिक्षक वत्स रविकांत को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौसम। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के विभिन्न जिलों में 18 जुलाई तक भारी बारिश, तेज हवा चलने और वज्रपात की संभावना है। रांची मौसम केंद्र ने आज रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रांची स्थित जीडी गोयनका स्कूल नामकुम में आयोजित 2 दिवसीय रांची जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सप्तऋषि ने वर्ष 2026 का चैंपियन ऑफ चैंपियंस खिताब जीता, जबकि रूपश्री, अभिमन्यु पांडे, पम्मे कुमारी और मौसम कुमार को विभिन्न विशेष उपाधियों से सम्मानित किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने हॉर्मुज संकट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दोषियों की उम्रकैद को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के फैसले को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, खूंटी देवघर में 1,21,00,000 रुपए की अवैध निकासी की जांच करेगा सीआईडी। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, एमओयू करने वाली 10 कंपनियां 25,000 लोगों को देंगी रोजगार। और दैनिक जागरण ने रांची में पुलिसकर्मी को एसयूवी वाहन से टक्कर मारने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को 6,000 रुपए का एकमुश्त मानदेय देने का लिया निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए बिना अधिग्रहण के ली गई जमीन के बदले मुआवजा देने के लिए निर्देश देने से किया इनकार, कहा प्रार्थी मालिकाना हक साबित करे। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने की दिशा में बीआईटी सिंदरी को शोध और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने का लिया निर्णय। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में झारखंड का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए रणनीति और विभिन्न एजेंडों पर की चर्चा। और मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं गीत गुंजन। गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं फिल्म अमर अकबर एंथनी का ये गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दोस्ताना का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म कस्मे वादे का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में।

और इसी गीत के साथ हमें गीत गुंजन से आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन। आइए सुनते हैं जोहार पलामू।

जोहार प्लामो सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज के हमारे सुविचार इस प्रकार से हैं, कहते हैं उम्मीद मत छोड़ना, आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर होगा। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत हो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखलाएंगे। तो इन्हीं सुविचार के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है,

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम ज्वार पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बातें करते हैं मौसम की जानकारी की। तो आज का अधिकतम तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 27 डिग्री। तो बातें और भी होगी, मैं सुनते हैं प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बातें करते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से हमें सचेत रहना है। अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छोटी मोटी बीमारियां तो हर कोई में होते रहता है, और जिस तरह से जो छोटी मोटी बीमारियां वो छोटी मोटी नहीं रह जाती हैं, जैसे में शुगर। जी हाँ, आज के डेट में रक्तचाप की जो बीमारियां हैं, उच्च रक्तचाप की बीमारियां, जिसे हम कहें तो शुगर की बीमारी कह सकते हैं, जो काफ़ी है, लेकिन अगर हम उसके परहेज में रहें, उसके देख कर रहें, तो हम काफ़ी हद तक ठीक रह सकते हैं। और इन सब के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम दवा ही लें, इसके लिए हमारे किचन में बहुत सी औषधीय जो मसाले हैं वो रहते हैं, और उन्हीं मसालों में एक है मेथी, जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी ही उपयोगी है। अगर हम मेथी के दाने खाते हैं सब्जी के साथ, तो भी हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। अगर हम मेथी के साग खाते हैं ठंडे वाले दिनों में, तो भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि मेथी जो है हमारे आहार के लिए काफ़ी उपयोगी है, और हम चाहे तो इसे अपने घर के गमलों में भी उगा सकते हैं, काफ़ी जगह ना हो तो भी। मेथी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि हम अगर रात भर पानी में भीगे हुए मेथी के दाने को रखते हैं और इसे सुबह खाली पेट पीते हैं, तो ये हमारे पीने से ब्लड शुगर और वजन नियंत्रित रखता है, यह पाचन शक्ति को दुरुस्त रखता है, शरीर को डिटॉक्स सफाई करता है, हमारे जो जोड़ों के दर्द है उसमें राहत देते हैं, और हमारे जो बाल झड़ते हैं उसमें हमें काफ़ी उपयोगी है। हम अगर इसके दानों को तेल के साथ में मिलाकर लगाते हैं, तो हमारे होने वाले बालों में जो छोटी छोटी रुशियाँ हैं वो ख़त्म होती हैं, बालों में कभी कभी बहुत ज़्यादा सर में खुजलाहट होती है वो हमारे ख़त्म होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके तेल लगाने से हमारे सरों में किसी भी प्रकार की फोड़ा फुंसी नहीं होते हैं। मेथी में पाए जाने वाले गुण इंसुलिन को कार्य प्रणाली को काफ़ी बेहतर बनाता है, जिससे कि हमारे जो शुगर लेवल है वो अच्छे रहते हैं। ये मेटाबॉलिक को तेज करता है और भूख को शांत करता है, जिससे वजन घटाने में हमें मदद मिलती है। पेट की गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं से हमें राहत दिलाने में मेथी का पानी काफ़ी फायदेमंद है। बाल व त्वचा के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, जैसे अगर हमारे शरीर में दाने दाने निकलते हैं, मेथी के पानी पीने से दाने खत्म हो जाते हैं। मेथी दाने में एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन रोधी गुण होते हैं, जो गठिया और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम मेथी के दानों को पानी में भिगो कर पिए, मेथी के दानों को सब्जी के साथ खाएं, मेथी का सब्जी बनाकर खाएं, या मेथी के पत्तों के साग को खाएं, तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, इन्हें अगर हम चाहें तो अपने घर के बड़े गमलों में भी लगाकर इनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: और इसी गीत के साथ जो हर पल मुंह से मैं आगे दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
1: जोहार पलामू।
0: अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू, प्रस्तुति स्वर था पिंकी कुमारी का। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
1: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हम

0: ने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
1: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
0: जी,
1: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
0: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
1: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
0: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
1: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
0: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था, फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
1: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
0: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
1: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
0: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्र वासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
1: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
0: जी,
1: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
0: जी।
1: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे। ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
0: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
1: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
0: जी।
1: अभी जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
0: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्र वासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
1: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
0: जी।
1: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूं विमलेश जी, और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
0: तो श्रोताओ, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
1: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
0: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे।

0: देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
1: नाना जी।
2: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ। कैसी रही चौपाल?
1: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
3: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है। नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
1: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
2: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
3: ये लो, नानी जी भी आ गई।
4: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
2: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
4: हाँ वो तो है।
1: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
4: अच्छा तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
2: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
1: कहाँ से आया है
2: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
1: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
2: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
3: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
2: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
1: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
2: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
2: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
2: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
2: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
2: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
4: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
2: हाँ।
4: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
2: बिल्कुल।
4: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
4: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
4: हाँ।
2: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
3: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर

0: ने बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
1: भाई इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
2: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव। और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम, शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

0: स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओह, ये तो एक बच्चा है। पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे

0: खर्चने के लिए चार आने पैसे दिए थे, पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए।
1: अच्छा?
0: जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें चार आने पैसे देता हूँ। ये लो चार आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो, अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ खुशी खुशी घर जाओ।
0: अच्छा।
2: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्र नाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्र नाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय हाँ? कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
2: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ एक अपराध हो गया।
4: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ
2: बाल्यकाल से ही नरेंद्र नाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्र नाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
5: नरेंद्र नाथ तुम सो रहे हो?
6: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
5: क्या सोच रहे हो तुम?
6: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
5: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
6: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
5: नरेंद्रनाथ तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
2: नरेंद्र नाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्र नाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
6: प्रणाम महात्मन।
7: जीते रहो पुत्र।
6: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
2: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
7: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
6: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
7: हाँ पुत्र।

0: मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं, तुमसे बात ही कर रहा हूं। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूं।
1: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
2: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
1: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्र उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है। सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिए, देश के लिए मरें।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार अब से कुछ ही पलों में।
0: आज भी उनकी

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: इस समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य कैबिनेट के सदस्यों और केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने घोषणा की कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दी है। राज्य के योगदान को मिलाकर अगले साल मार्च तक पंचायतों के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना और VBG रामजी एक्ट 2025 के अंतर्गत नया ग्रामीण रोजगार ढांचा लागू करना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इसमें 9 राज्यों के 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल है। उन खनिजों में मोबिल्डेनिम, ग्रेफाइट, ग्लाइकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटैश, लिथियम, सीजियम और रूबीडियम शामिल है। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की। इससे सफलता दर 63% से अधिक हो गई है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे जिन्होंने गोवा श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे जिन्होंने

0: दो लफ्जों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह
1: नहीं
0: जाती
1: होती।
0: जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है।
1: बिल्कुल
0: और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है,
1: जी,
0: तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने
1: काम किया
0: कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके, यहाँ थिएटर अलग ही है,
1: बहुत।

0: और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है,
1: जी
0: तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने
1: काम किया।
0: कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका
1: वेरी
0: है,
1: नाइस।
0: प्रगति के मार्ग पर है।

0: मैंने एक वो देखा रंजीत सर के रीडिंग में, डेढ़ पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है,
1: अच्छा
0: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
1: अच्छा
0: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
1: ओके okay.
0: अगर कोई चीज, एक शब्द बोला है, उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो
1: जी
0: एक
1: जी
0: छोटा सा, जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर देके बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो ही विल वर्क ऑन यू।
1: जी
0: एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को दिया जाए।
1: अच्छा
0: तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि
1: हाँ
0: एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं, कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप, ज्यादा है,
1: उस पर ज्यादा जोर दिया
0: ज्यादा
1: जाता
0: जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं
1: जी
0: जो
1: जी
0: मैं
1: जी
0: उनसे सीखा,
1: जी
0: और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं,
1: हाँ
0: परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी सबकी एक अलग अलग वो होती है।
1: जी जी
0: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है, प्रयोग,
1: जी हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
0: एक्सपेरिमेंट,
1: एक्सपेरिमेंट।
0: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके देखता हूं,
1: जी
0: दूसरी
1: जी
0: बार दूसरा कुछ करके देखो,
1: बिल्कुल
0: जो कि
1: बिल्कुल
0: टेलीविजन में, फिल्म्स में पॉसिबल नहीं है।
1: बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं, मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं है।
0: नहीं आएगा, सही बोला आपने, अपना अपना मजा है,
1: हाँ
0: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
1: हाँ
0: लाइव परफॉर्मेंस,
1: लाइव परफॉर्मेंस।
0: वो चीज जो है वो आपको एक गूजबम्प दे जाती है,
1: जी जी जी जी और उसका जो
0: तुरंत
1: भी रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त लाइव तुरंत आना है।
0: तुरंत यू फील सो गुड कि जो मैंने किया उसका किस लेवल, अच्छा एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया, कहीं पे बहुत ज्यादा आया।
1: जी
0: तो ये चीज जो है, जो लाइव परफॉर्मेंस है, उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है, और
1: हाँ
0: मैं एंजॉय करता हूं डेफिनेटली। और आप 15 दिन, महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे छह छह दस दस पंद्रह पंद्रह लाइनें, डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक करेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में, तो
1: जी
0: महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है, जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है, वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है, मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता।
1: बिल्कुल
0: तो दैट मेक्स अ सेंस। और वो जो एक बार हो गया वो तो फिर,
1: जी। अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और आप
0: हाँ
1: राजकुमार संतोषी साहब से जब मिलने गए और वो घर पे नहीं थे तो उनके सेटआउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा सीन होगा। तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे?
0: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान मैं जब नागपुर में था, और वहां पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है तो आप कहीं जा सकते थे, तो वहां मैं रामटेक गया। रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, अमोल खंते, उनका एक एडवेंचर विलेज है, वो भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे, तो मैं रिक्वेस्ट करके वहां चला गया। वहां पे खाली इसमें नेचर के साथ मैं बैठा रहता था, एक कॉपी और पेन लिए, और वहां मुझे एक पर्टिकुलर कहानी, एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होके लिखने की इच्छा हुई, और मैंने वो वहां पे लिखी। 5 6 दिन में वहां पे था तो मैं लिख रहा था दिन रात, फिर मैं वापस आया, नागपुर में भी रुका, तो वहां भी मैं वो कहानी को डेवलप करता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमन कबीर, वो भी नागपुर से, उसके साथ मैंने वो डेवलप की कहानी, और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कैसे प्रेरित करता है, थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है और लाइट कॉमेडी है उस
1: तो ये
0: टाइप
1: कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
0: का। हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना,
1: हाँ
0: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के साथ,
1: जी
0: लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है,
1: जी जी
0: जो शायद कुछ और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है, आईपीसी 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था,
1: अच्छा
0: आईपीसी 324। और वो जरूर बगल में, पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
1: जी,
0: जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है,
1: हाँ,
0: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म है
1: जी जी,
0: एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी।
1: ओह क्या बात है।
0: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
1: जी,
0: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारेगामा या
1: अच्छा
0: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहां पे वो रिलीज हुआ है। तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया
1: जी जी,
0: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया।
1: हालांकि चलिए इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी
1: जी, आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी, मिसेस सीरियल किलर।
1: जी
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया,
0: अच्छा
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे, और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई,
0: अच्छा
1: छोटा सा किरदार था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
0: जी
1: जब
0: जी
1: तक, जैसे मैंने एक साथ ही में अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब,
0: अच्छा
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक हैं।
0: जी
1: रुद्र में लीड थे अजय देवगन साहब, तो वो कैरेक्टर मुझे आया। हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का है, छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूँ। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार, वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं, उनको
0: अच्छा
1: अच्छा लगा है, और उनको थोड़ी टावरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला, अजय देवगन साहब को के सामने कौन टावरिंग दिखेगा? ही सेड नहीं, आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाओगे।
0: हाँ
1: तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे भी मैं घर पे बैठने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं,
0: अच्छा
1: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं, उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूं,
0: बिल्कुल
1: मतलब मैं परफॉर्म कर लूं, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे।
0: बिल्कुल
1: थिंग्स हैपन दैट वे ओनली। आई वेंट देयर, दे लाइक माई वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा करेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है।
0: हाँ
1: सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था, इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का था,
0: जी जी जी
1: तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे। बट
0: अच्छा
1: रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना, एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को,
0: जी जी
1: उनकी वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है, तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक
0: जी
1: प्रोजेक्ट मेरे
0: जी
1: मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में।
0: क्या बात।
1: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s,
0: अच्छा
1: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी,
0: अच्छा
1: और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वो वही 12-13 साल की एक रहेगी, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी, ऐसा
0: अच्छा
1: दिखाएंगे।
0: अच्छा
1: और कैरेक्टर अच्छा था। जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं
0: हाँ
1: हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं, कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो,
0: जी।
1: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो,
0: अच्छा
1: दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं,
0: हाँ
1: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा, गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो निगेटिव कैरेक्टर है, वो अच्छा काम भी, एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सार्कास्टिक विलन,
0: कई
1: तो
0: शेड्स हो सकते
1: कई
0: हैं।
1: शेड्स हो सकते हैं।
0: जी
1: सो जितने रस वो दिखा सकता है, उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है,
0: अच्छा
1: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी, जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था।
0: हाँ
1: मैंने सुना था वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने पासे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू
0: जी
1: स्टोरी थी,
0: जी जी
1: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है,
0: ओह
1: इस टाइप का एक वो कैरेक्टर था। लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस, तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था,
0: जी
1: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे। तो
0: अच्छा
1: बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट 1 साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में, बालाजी टेलीफिल्म बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का,
0: जी
1: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स, और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल,
0: अच्छा
1: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसाते बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही
0: जी जी
1: दैट
0: जी
1: वे।
0: क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
1: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूँ कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव. जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मली भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो. लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं
0: जी,
1: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था, यूं ही चला चल रही.
0: हाँ, मकरंद देशपांडे,
1: मकरंद जी थे उसमें.
0: हाँ, वो फिल्म आई,
1: शाहरुख भाई ने भी उसमें साथ में उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत एक उनकी कारवान में वो चले जा रहे हैं और ये गाना चल रहा है. और अभी बारिश आने ही वाली है.
0: हाँ.
1: जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन. और इस मौसम में बढ़िया अपनी एक गाड़ी या बुलेट, मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो.
0: हाँ.
1: और फिर ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में ही पहुंच जाते हो.
0: क्या बात है, चलिए सुनते हैं यही गीत
1: जी.

0: विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी आया होगा, तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूंगा
0: जी।
1: तो सबसे ज्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में।
0: अच्छा।
1: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, आई प्रोड्यूस्ड इट, क्रिएटेड इट एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन हु इज कैमरा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इन्फॉर्मेटरी फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स मैं एक साइड बनाता रहूं, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस, जिसके साथ साथ हम हमारे फिल्म्स को भी फंड कर पाए।
0: अच्छा।
1: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर हम, जैसे मैंने आपको बताया IPC 324, एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई
0: जी,
1: बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके मुझे पकाएंगे। और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूँ, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर
0: जी।
1: मैंने वागले के बाद में अभी, वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है
0: जी,
1: तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था उसी लेवल का कोई एक अच्छा किरदार।
0: और एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को मिल जाए, तो वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला?
1: ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है
0: जी,
1: बिकॉज दायरे OTT अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है। अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी
0: जी,
1: मैं आजाद हूं, वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से, और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है।
0: ओहो, क्या बात।
1: तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था, इतने बाजू इतने सर किनले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से।
0: वाह।
1: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था, और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी। तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो वो करने को कभी मिले तो मजा आए।
0: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है?
1: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया, ये गाना ही
0: गाना
1: बहुत एप्ट होगा कि हम जब जी जान से खेलते हैं
0: जी
1: जान से लड़ते हैं
0: जी,
1: तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा, दुश्मन नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो आपको मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल।

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत हो,
1: शख्सियत हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं
1: ट्रू
0: वो भी, दुर्भावनाएं जो होती हैं
1: दुर्भावना
0: वो भी हमारी दुश्मन है।
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है,
0: जी जी
1: आपकी फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे
0: जी
1: आर देयर टू हेल्प मी।
0: जी
1: आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीजों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है,
1: जी
0: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहाँ बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से ही काम करना चाहिए।
0: हैं? जी।
1: बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है, ये किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है, क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है। और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है, उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें।
0: जी।
1: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जोड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा। और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने

0: किसी रूप में व्यक्त की जाए, तो विपुल आप किसे के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा।
0: हाँ
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, एनएसडी एफटीआई ये सब चीजें हमें पता नहीं थी।
0: हाँ
1: लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं।
0: जी।
1: एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टेन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी।
0: हाँ
1: और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ,
0: जी
1: और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के, उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूं।
0: जी।
1: बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है। मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है,
0: हाँ
1: जो कि दूर से देख के, ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है।
0: वाह
1: वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन, मतलब
0: जी।
1: ट्रेनिंग ना हुई हो, बट ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है, वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था
0: जी
1: कि
0: जी
1: आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से।
0: सीखने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है, तो हम इस पर बात करेंगे, मगर यहां इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
1: जब संघर्ष की बात आई है, तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी,
0: हाँ
1: उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे। ये
0: हाँ
1: मुझे बड़ा बेहतरीन गाना लगता
0: क्या
1: है।
0: बात है,
1: जी
0: चलिए सुनते हैं।

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है
1: जी।
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है तो आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में। और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग, सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है
0: जी,
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युड़ाए तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो,
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छी बात होती।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी यहां पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूं कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहां से, कम से कम राह के पत्थर तो हटा देते।
0: ओ
1: तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे

0: बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, उन्हें
1: हाँ
0: एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था,
1: अच्छा
0: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था। कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का।
1: जी
0: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 मेल 3 फीमेल्स। उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं
1: वाह
0: बतौर कलाकार।
1: वाह वाह
0: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल। उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी कर्शिकर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी
1: जी
0: और शंतनु रोड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं
1: जी
0: डायरेक्टर,
1: जी
0: ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। ये कंटिन्यू करना चाह रहा था, बट देन आई गॉट बिजी विथ कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स,
1: हाँ
0: वो हो नहीं पाया। बट मैं अभी भी चाहता हूं कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊं कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए। और जो यहाँ पे लोग हैं, जो फॉर एग्जाम्पल जिनके पास समय है, जो
1: जी
0: गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो वो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो,
1: जी जी जी
0: लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे,
1: क्या बात
0: तो
1: है
0: ये मेरा सबसे जरूरी है। अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा। तो इस पे भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं,
1: अच्छा
0: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं।
1: ओह क्या बात
0: दिस इज वन ऑफ द थिंग। तो ये हमने
1: हाँ
0: रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि ये मैं
1: जी
0: कंटिन्यू
1: जी
0: करूं। तो स्ट्रगल स्मार्ट मैंने नाम भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया, strugglesmart.com, कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो
1: अच्छा
0: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो। संघर्ष कोई गलत बात नहीं है या कुछ निगेटिव सोच वाली बात नहीं है,
1: हाँ
0: पॉजिटिव बात है।
1: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है?
0: ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये दो
1: जी
0: दो तीन साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही। लोग कांटेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम्स से अलाइन कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि 3-4 साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है, इट इज विथ मी,
1: अच्छा
0: द डोमेन नेम इज ऑल्सो विथ मी, जो हमारे
1: ओके
0: साथ ही है।
1: जी जी
0: मैं उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूं, और तब तक अगर बाई चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली आई वुड लव टू गाइड देम। विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊं, जितना मैं कर सकता हूं। मैं बहुत बड़ा
1: जी जी
0: कलाकार तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मेरे ख्याल से वो मेरे लिए एक
1: निश्चित रूप
0: योगदान।
1: से, और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और यहां हम कोई गाना सुनते हैं।
0: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
1: जी
0: कि लोग यहां पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं,
1: हाँ
0: कि आपको बोलते हैं कि हाँ भी आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो,
1: हाँ
0: सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा, आपका करेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है। लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे।
1: हाँ
0: तो
1: आप मुख्य कलाकारों में तो हैं,
0: बिल्कुल
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है, और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व
0: इंपॉर्टेंस,
1: नहीं है।
0: महत्व नहीं है। तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं, एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास।
1: हाँ
0: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा, शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा, या 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा।
1: हाँ
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूं, करना चाहता हूं कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं,
1: लगे कि मैंने काम
0: लगे कि
1: किया
0: विपुल देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया है।
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: मेरा
1: बिल्कुल
0: सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग,
1: ओहो
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: तो बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था।

0: क्या बात, क्या बात,
1: बाकी संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। तो
0: वाह,
1: संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है।
0: क्या बात, बहुत ही खूबसूरत
1: बहुत
0: गाना है।
1: खूबसूरत गाना
0: आइए सुनते हैं।
1: जी।

0: तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी है, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचिस को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका और
0: जी
1: लॉबी ऑफ फेम भी देखा। यहाँ पे कौन
0: हाँ
1: नहीं आया है,
0: जी,
1: मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं ऐसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग की पहली पेशकश, लीजिए सुनिए।

अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन हो।

पढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे, चाहे ये दुनिया रूठे, काम को अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना, मोहब्बत वो खजाना है, कभी जो गम नहीं होता, है जिसके पास ये दौलत, उसे कुछ

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में कव्वाली अभी आप सुन रहे थे अधिकार फिल्म से। रमेश पंत ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत था। आप इस वक्त सुन रहे हैं रंग तरंग। लीजिए इस प्रोग्राम की अगली पेशकश।

0: अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल अभी आप सुन रहे थे, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

हम किसी से कम नहीं। ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
1: The Security Council has been ineffective.
2: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
1: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए हुर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हुर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 495 अंक की वृद्धि के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 147 अंक बढ़कर 24,191 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: काला पत्थर, इस फिल्म से अभी ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत था। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: प्रोग्राम यादों की महफिल की अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान,

0: उदित नारायण और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी कसूर। समीर ने इस गीत को लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

मासूम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनूप घोषाल की आवाज में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था आरडी बर्मन की तर्ज। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुँच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि ये निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये समझौते एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि ये समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
2: This agreement would open up new opportunities.
3: यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए सामान और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। नवाचार और प्रतिभा की आवाजाही में सहयोग है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: Both the countries, India and the United Kingdom.
1: वहीं एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि ये समझौता भारत की मुक्त व्यापार समझौते यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जोड़ता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि अभियान के उद्देश्य पूरे हो गए हैं। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज एटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में लगभग 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 372 अंक की वृद्धि के साथ 77,427 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 24,152 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Odisha today. Heavy rainfall is also expected over parts of Northeast India, Bihar, West Bengal and Uttarakhand till tomorrow. And in FIFA Cup football, Spain stormed into the final, stunning France 2-0 in the first semi-final clash at Dallas Stadium in Texas last night. In other semi-final, defending champions, Argentina will face England at Atlanta Stadium tonight at 12:30 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: Akashwani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार, एनसीईआरटी और सीबीएसई से मांगा जवाब। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का और मूरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 जुलाई को करेंगे लोकार्पण। पुलिस मुख्यालय ने लापता और बरामदगी से संबंधित मामलों की निगरानी और अनुसंधान के लिए सभी जिलों को स्थायी मॉनिटरिंग सेल गठित कर रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। राज्यभर में रथ यात्रा महोत्सव कल से होगा शुरू। आज एकांतवास से बाहर लाकर भगवान जगन्नाथ के विग्रहों का किया जाएगा नेत्रदान। और झारखंड में मॉनसून की बारिश सामान्य स्तर से नीचे। पूरे राज्य में अब तक 41% कम हुई बारिश। धान समेत खरीफ फसलों का उत्पादन प्रभावित होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनसीईआरटी, सीबीएसई से उन 2 नई याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी नीति को चुनौती दी गई है। 1 सप्ताह बाद अगली सुनवाई की तिथि तय की गई है। इधर सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई भाषा नीति जारी की है। सत्र 2027-28 से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, लेकिन स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में पास होना अनिवार्य होगा। इसमें फेल होने पर 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची मंडल के पिस्का और मूरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 जुलाई को दोनों स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। गौरतलब है कि दोनों स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन स्टेशनों में विशेष सुविधाएं होंगी।
2: राजीव मंडल के अंतर्गत आने वाले पिस्का और मूरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा होते ही इसके उद्घाटन की तैयारी शुरू कर दी गई है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए इन दोनों स्टेशनों को नया और काफी आकर्षक रूप दिया गया है। यहाँ बेहतर प्रवेश द्वार, विकसित प्लेटफॉर्म, आधुनिक शेल्टर, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, बेहतर रोशनी, यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी समेत कई सुविधाएं होंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विभागीय कार्यवाही में अंतिम दंड का आदेश पारित होने के बाद सिर्फ आपराधिक मामला लंबित होने पर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की अंतिम पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया रोकी नहीं जा सकती। न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार और महालेखाकार को 6 सप्ताह के भीतर अंतिम पेंशन भुगतान का निर्देश दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कल शाम रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां की विधिवत पूजा अर्चना की और झारखंड और देशवासियों के लिए खुशहाली मांगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मां छिन्नमस्तिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी शक्ति दें कि उनके नेतृत्व में भारत 2047 तक दुनिया का सबसे सशक्त और विकसित राष्ट्र बने।
3: भगवान से माँ से मांगते हैं कि माँ आशीर्वाद तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो और शक्तिशाली हो, बलशाली हो और दीर्घायु हो और 2047 जो उनका सपना है दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र वो राष्ट्र बने। वो देश तो देखो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की 4वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बना रहे।
1: पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर खूंटी बाईपास सहित झारखंड की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि खूंटी

0: बाईपास के निर्माण से क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा, यातायात का दबाव कम होगा और आदिवासी क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी। इस दौरान परियोजना के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण और वन स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने लापता और बरामदगी से जुड़े मामलों की निगरानी और अनुसंधान के लिए सभी जिलों में स्थायी मॉनिटरिंग सेल का गठन कर अनुपालन रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सभी एसएसपी और जिलों के एसपी को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रत्येक जिले में डीएसपी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय मॉनिटरिंग टीम होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम बोर्ड की 3 महीने से बैठक नहीं होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अपर नगर आयुक्त को पत्र लिखकर जल्द बोर्ड बैठक बुलाने और 16 अप्रैल को हुई पहली बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की है। श्री राय ने कहा कि हर महीने कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बोर्ड की बैठकें नहीं होने से नगर निगम के प्रशासनिक और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा महोत्सव कल से शुरू हो रहा है। इससे पूर्व आज भगवान के विग्रह को एकांतवास से बाहर लाया जाएगा और शाम 4 बजे से नेत्रदान उत्सव शुरू होगा जो देर रात चलेगा। अगले दिन भव्य रथ पर सवार कर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों को मौसीबाड़ी ले जाया जाएगा। रथ यात्रा तथा मेले के सफल आयोजन को लेकर कल डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने रथ यात्रा मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया। इस्कॉन जमशेदपुर की ओर से कल भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा गोपाल मैदान, जिसको गोल चक्कर, स्ट्रेट माइल रोड, केमिस्ट चौक और साक्षी बाजार चौक सहित विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। इस्कॉन के सदस्य ने बताया कि पिछले 1 महीने से आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है।
1: यात्रा विष्णुपुर राम मंदिर से प्रारंभ होकर आपका विष्णुपुर मुख्य गोल चक्कर होते हुए रीगल गोल चक्कर, रीगल गोल चक्कर से आगे आपका जुस्को गोल चक्कर, जुस्को गोल चक्कर से सीधा कीनम स्टेडियम होते हुए साक्षी गोल चक्कर होते हुए साक्षी पार्किंग जाके समाप्त होते हैं। देखिए, इस पूरे गतिविधियों में अगर बात करें तो मैं कहना चाहूंगा कि पूरे जमशेदपुर का वातावरण हरे राम हरे कृष्ण के वातावरण से गूंजेगा।
0: हजारीबाग जिले की बरही पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रसोईया धमना के पास कल विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया। मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राधा प्रेम किशोर ने दी।
2: जब रसोईया धमना के पास हमारी टीम पहुंची तो वहां हम लोगों ने देखा कि एक ट्रक है और एक छोटी गाड़ी है क्रेटा, जिसमें कुछ लोग पुलिस की टीम को देख के भागना शुरू किए। पकड़ा गया और पकड़ने के उपरांत जब उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया कि शराब की का जो खेप है ये बिहार की ओर ले जा रहे हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी। देखिए, लगभग अभी तक जो हम लोगों के पास अनुमान जो है वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,32,000 रुपए प्रति किलो है। झारखंड के सभी 24 जिलों में मौसम विभाग के अनुसार औसतन 41 कम बारिश है। कम बारिश वाले जिलों में सबसे अधिक प्रभावित गढ़वा, चतरा, कोडरमा, पाकुड़, देवघर और हजारीबाग हैं। हमारे चतरा ने बताया कि जिले में दिनों में केवल 47 मिलीमीटर बारिश हुई है।
3: चतरा जिले में वर्षा की कमी का असर एक धान की खेती पर दिख रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक आर्यन मिश्रा ने बताया कि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान की खेती के साथ साथ अन्य खरीफ फसलों का

0: उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार के अनुसार जिले में अब तक 90% धान का बिचड़ा तैयार हुआ है, लेकिन बारिश की कमी के कारण उसकी रोपाई नहीं हो पा रही है, इससे धान के बिचड़े सूखने लगे हैं। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
1: और अब मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार, एनसीईआरटी और सीबीएसई से मांगा जवाब। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 जुलाई को करेंगे लोकार्पण। पुलिस मुख्यालय ने लापता और बरामदगी से संबंधित मामलों की निगरानी और अनुसंधान के लिए सभी जिलों को स्थायी मॉनिटरिंग सेल गठित कर रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। राज्य भर में रथ यात्रा महोत्सव कल से होगा शुरू। आज एकांतवास से बाहर लाकर भगवान जगन्नाथ के विग्रहों का किया जाएगा नेत्रदान। और झारखंड में मॉनसून की बारिश सामान्य स्तर से नीचे, पूरे राज्य में अब तक 41% कम हुई बारिश। धान समेत खरीफ फसलों का उत्पादन प्रभावित होने की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया, सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।

0: हमने टारगेट रखा है वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है, उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
2: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
2: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
1: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
3: The Security Council has been ineffective.
4: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
3: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजी की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 1,83,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्यासा फिल्म से आप सुन रहे थे गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे और इसकी अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

0: फिल्म वक्त से अभी आप ये गीत सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे श्री 420 से। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बीआईटी मिश्रा के स्थापना दिवस पर संस्थान के 7 दशकों के शैक्षणिक व तकनीकी योगदान की सराहना की। उन्होंने एनईपी 2020 के तहत युवाओं को एआई और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों से जोड़कर जॉब क्रिएटर्स बनाने और विकसित भारत 2047 के निर्माण में भूमिका निभाने का आह्वान किया। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज चुनाव आयोग के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपना एन्यूमरेशन प्रपत्र जमा किया। जागरूक मतदाता सशक्त लोकतंत्र का संदेश देते हुए उन्होंने राज्य के सभी पात्र नागरिकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर इस प्रक्रिया में भाग लेने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। जमशेदपुर के चर्चित बिष्टुपुर डीडी बार गोलीकांड और हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों राघवेंद्र कुमार और गणेश मछुआ को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपियों ने मुख्य हमलावरों को छुपाने और फरार कराने में मदद की थी, जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है। इस मामले में अब तक कुल 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
1: 27 जून 2026 को जो डीडी बार वाली घटना हुई, उसमें काफी सारे अभियुक्त थे जिनको गिरफ्तारी लगातार की जा रही थी, और इस क्रम में अब तक कुल 14 प्राथमिकी और अपराधी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका। एक और व्यक्ति को पकड़ना बाकी था, उसको भी फाइनली पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, और इसके साथ साथ एक और व्यक्ति है जो उसको सहयोग देने में और वाहन उपलब्ध करवाने में अन्य प्रकार से इसकी संलिप्तता पाई गई थी, इसको भी आगे फॉरवर्ड किया जाएगा पुलिस द्वारा।
0: रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने बीती रात सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी और ओडी प्रभारी के अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। वहीं अरगोड़ा थाने का गेट बंद मिलने पर एसएसपी ने आम जनता की सुविधा के लिए इसे 24 घंटे खुला रखने का सख्त निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी के कर्रा रोड स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सुविधाओं के कारण आमजन का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। आज केंद्र में बच्चों का टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की रूटीन जांच कर आयरन की गोलियां दी गई। डॉक्टरों के अनुसार मलेरिया, टीबी और सामान्य बीमारियों के इलाज एवं सुलभ दवाओं की उपलब्धता से रोजाना बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं।
2: यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और ट्यूबरक्लोसिस की भी जांच किया जाता है। ये बस ओपीडी सेंटर है और यहाँ हर मेडिसिन उपलब्ध है। यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है सरकार की तरफ से, पेशेंट को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। पेशेंट ठीक होता है, पेशेंट खुश भी रहता है। ज्यादातर पेशेंट यहाँ शुगर जीती का दिया जाता है, बच्चों का भीड़ लगता है, यहाँ टीकाकरण होता है।
0: गिरिडीह जिले में आज 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगो जीटी रोड पर हुई, जहां मालवाहक वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की जान चली गई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं तीसरी थाना क्षेत्र में एक 4-पहिया वाहन और मोटरसाइकिल के बीच हुई भीषण सीधी टक्कर में 2 स्थानीय युवकों की मौत हो गई। राज्य में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राजधानी रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज नेत्रदान उत्सव के साथ भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों विग्रहों का अनुष्ठान शुरू हो गया है। शाम 5 बजे 108 दीपों की महाआरती के साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे। वहीं कल शाम भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा, जो 25 जुलाई को वापस लौटेगी। इधर हजारीबाग में कल इस्कॉन द्वारा 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक से बने रथ पर यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, जिसमें विशेष पहांडी दर्शन और कोलकाता की टीम द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति मुख्य आकर्षण होंगे। मौसम केंद्र रांची ने तात्कालिक पूर्वानुमान जारी कर राज्य के चतरा, गढ़वा, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 1 से 3 घंटे में इन जिलों के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको और सुनने वाले हमारी सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को प्यार भरा मंजरी का नमस्कार। और थोड़ा सा आप कहेंगे अच्छा अच्छा सा भीनी भीनी हवाएं आए सब तरफ और बादल भी आए, जहाँ पानी नहीं बरस रहा वहाँ बरसे,
1: ये हम प्रार्थना करते हैं,
2: ये प्रार्थना करते हैं और ये दिली तमन्ना भी है। और देखो ना, बादलों का जो परिवार था ना वो इधर से उधर चला गया,
1: यानी हमारे साथ में लुका छिपी खेल रहे हैं बादल।
2: हाँ, अभी तो उन्होंने कहा कि नहीं अब यहाँ बहुत बरस ली, अब चलो चलते कहीं और, तो कहीं और चले गए। लेकिन कभी ना कभी रात में आके थोड़ा बहुत बरस जाते हैं,
1: और जब रुक जाती है बारिश तो हम पसीने से भीग जाते हैं।
2: बिल्कुल, तो मौसम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन मौसम में अपनी सावधानियां भी बहुत जरूरी होती है ना।
1: बहुत सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है ना जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि छाता रख लिया जाए, फिर ऐसा लगता है अरे छाता फालतू में रख लिया, हमें तो गॉगल रखना था।
2: सही बात है। और देखो इसी के साथ देखो हम लोग अपने विषय की ओर भी बढ़ चलते हैं। वो भी ध्यान रखना है कि भाई आज तो मकई के व्यंजन के बारे में बातें होंगी। हमारे साथियों ने बहुत सारी चीजें लिखकर भेजी है।
1: हाँ, बहुत सारे हमारे साथियों ने मकई के व्यंजन लिखकर भेजे हैं, पर जब झमाझम बारिश होती है ना उसी वक्त वो मकई के व्यंजन खाने में और भी आनंद आ जाता है। हालांकि बाजार में बहुत सारी नरम नरम मुलायम सी मकई के दाने आ चुके हैं, तो जब बारिश गिरेगी ना तो उस वक्त हम मकई के पकौड़े बनाएंगे, उसकी चाट तो बनती ही है, और बहुत सारे मीठे व्यंजन भी मकई के बनते हैं। जैसे हमारे
2: मकई का हलवा, मकई का सूप बनता है,
1: मकई की खीर,
2: यानी अनंत है। और फिर देखो हमारी बातें होंगी पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र, ये भी बड़ा प्यारा सा विषय है और सबके विचार भी आ गए हैं, तो आप भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा प्यारा सा पड़ोसी है, अच्छा मित्र है, ये भी बता सकते हैं।
1: और साथ में मंजरी जब पड़ोसी का जिक्र चलता है तो व्यंजन जो है ना कटोरी में डाल के पड़ोसियों को भी दिए जाते हैं,
2: होता है। और साथ में कभी कभी चीनी खत्म हो गई, चाय की खत्म हो गई, इसका भी तो होता
1: और
2: है।
1: वो थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा, पर उसमें जो प्यार होता था ना, उसमें जो उस उनकी जो छोटी सी एक कटोरी भर के जो व्यंजन आता था ना, उससे जो हम इतने हम घर में भी लड़ाई होती कि अरे थोड़ा मेरे लिए भी रखना। वो आंटी जो पड़ोस वाली आंटी, उनकी जो फलानी फलानी सब्जी है वो बहुत अच्छी लगती है, तो ये आदान प्रदान फिर से अगर शुरू हो जाए तो उसमें क्या बात होगी।
2: नहीं, कहीं कहीं पे तो देखो सोनाली होता भी है, अभी भी हमारे जो अच्छे अच्छे पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बना के देते रहते हैं। और शब्द हमारा विचार आपके, इसमें भाई हिम्मत की बात होगी।
1: और जब हम कभी संकट में आ जाते हैं, संकट की घड़ी आप पड़ती है हमारे जीवन में, उस वक्त हमें हिम्मत देने के लिए हमारे पड़ोसी ही सबसे पहले आते हैं।
2: बिल्कुल। और साड़ियों का संसार, इसमें सोनाली आज किस साड़ी की बात करने वाले हम लोग?
1: आज हम अरनी सिल्क की जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे श्रोता भाइयों ने, हमारी बहनों ने इस विषय में भी बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिए।
2: अच्छा, अरनी साड़ी को अरनी भी और अरनी दोनों भी बोला जाता है,
1: यानी अरनी भी कहते हैं और अरनी भी कहते हैं।
2: जी। और विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं आज हम, तो सबसे पहले तो विश्व युवा कौशल दिवस की सभी को बधाई दे देते हैं कि सब लोग के बच्चे जो है वो अपने अपने हुनर से आगे बढ़े, है ना,
1: और खूब तरक्की करें,
2: खूब तरक्की करें। और हम लोग आगे बढ़ते हैं गीत के साथ,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो हम भी चलते हैं।
1: बिल्कुल, विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं और हर वर्ष सोनाली 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी ताकि युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और सतत विकास के लिए आवश्यक कौशलों के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत बदलाव हुआ है। आज इतने सारे तकनीकी कोर्स उपलब्ध हो गए हैं कि युवाओं को बेहतर करियर के लिए वो उनको अपनी रुचि अनुसार चुन सकते हैं। जैसे पहले होता था ना कि शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और बैंक जॉब के बारे में, या बिजनेस कर लेंगे या दुकान खोल लेंगे जैसा सोचा जाता था। इनके अलावा भी बहुत से कोर्स हैं, लोगों की सोच बदली है क्योंकि आज इंटरनेट जुड़ गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि युवाओं को रोजगार परक एवं तकनीकी कौशल प्रदान करना। यानी कि समय के साथ साथ बदलाव हुआ है और हमारे युवाओं ने भी, युवतियों ने भी इस चीज को स्वीकारा है।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, साथ ही युवाओं को कुछ कौशल सीखने चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए तो संचार कौशल, यानी अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कहना और दूसरों को ध्यान से सुनना। साथ ही डिजिटल कौशल, यानी डिजिटल स्किल की बात की जाए तो उसमें कंप्यूटर है, फिर इंटरनेट है, ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सुरक्षा है और नई तकनीकों का उपयोग करना। साथ ही एआई की समझ, एआई टूल्स की जिम्मेदारी से उपयोग और उसकी उत्पादकता को बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल, और समस्या समाधान और तार्किक सोच, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल्स की बात की जाती है तो टीम का मार्गदर्शन करना और जिम्मेदारी निभाना भी युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। और टीम वर्क, दूसरों के साथ मिलकर काम करना और सहयोग की भावना रखना, इस तरह की जो स्किल्स हैं वो भी बहुत मायने रखती है। और समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग कर लक्ष्य, समय पर जो लक्ष्य होता बांधा किया जाता है उसको पूरा करना होता है।
0: और साथ ही वित्तीय साक्षरता, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी बजट बनाना, बचत, निवेश और धन का सही प्रबंधन। साथ ही उद्यमिता, यानी नए विचारों को व्यवसाय में बदलने और रोजगार सृजित करने की क्षमता रखना। साथ ही रचनात्मकता और नवाचार, यानी नए विचारों पर काम करना, अलग अलग सोच को विकसित करना। और साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और संतुलित व्यवहार करना।
1: बिल्कुल, और सुनाली इसके साथ साथ भाषा कौशल, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का ज्ञान, अनुकूलन क्षमता, यानी बदलती परिस्थितियों और नई तकनीकों के साथ स्वयं को बदलना या ढालना, प्रस्तुतिकरण और सार्वजनिक भाषण, यानी आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने अपने विचार रखना, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मविश्वास, धैर्य, निर्णय क्षमता और सकारात्मक सोच को समझना। आज युवाओं के लिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसे कौशल भी आवश्यक हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम और सफल बना सके।
0: और वैसे ही होता है ना कि आजकल पढ़ाई के साथ साथ माता पिता जो बच्चे 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड में आ गए कि इस तरह के उन्हें कोचिंग भी के लिए भी भेजते हैं ताकि जो बचपन से ही ये सारी क्षमताएं वो डेवलप कर लेते हैं, अगर विकसित कर लेते हैं तो आगे चल के उन्हें नौकरी में बहुत फायदा होता है। और इसी तरह की बात हमारे साथी ने भी लिखा है कि विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, अच्छे कार्य, उद्यम के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल से प्रशिक्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और प्रतिवर्ष इस दिन को मनाने की घोषणा की गई।
1: बिल्कुल, और एक साथी हमारे लिखते हैं कि आज के समय में केवल शैक्षिक डिग्री ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल भी सफलता की कुंजी बन चुके हैं। कंप्यूटर, संचार, तकनीकी शिक्षा, उद्यमिता और डिजिटल कौशल युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। भारत में स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे पहले इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विश्व कौशल दिवस का संदेश है, कौशल ही आत्मनिर्भरता और उज्ज्वल भविष्य की पहचान है। तो अपनी स्किल्स को
0: डेवलप
1: करना चाहिए। और एक साथी ने और भी लिखा है कि कुकिंग स्किल्स से तकनीकी का उपयोग करके भी आप लाभ उठा सकते हैं,
0: बहुत लाभ उठा रहे हैं। कितनी सारी गृहिणियां जो है वो अपनी कुकिंग स्किल, पहले जो पुराना जमाना हुआ करता था ना कि हम सिर्फ घर में ही खाना बनाते थे, पर आज जो अलग अलग प्रांत के लोग जो है वो दूसरे दूसरे प्रांत की डिशेस खाना पसंद कर रहे हैं और जिससे जो गृहिणियां हैं जिनमें कुकिंग की स्किल है उन्हें भी रोजगार मिल रहा है।
1: बिल्कुल, और जो हमारी जो लड़कियां भी हैं वो भी अच्छी अच्छी क्वालिफाइड हैं, एजुकेशन अच्छी उन्हें है, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छी अच्छी डिशेस बना के कुकिंग स्किल्स को बढ़ावा देकर के कुछ ना कुछ अपना आर्थिक रोजगार, अपने लिए आर्थिक धन
0: कमा रही
1: कमा रही हैं, तो कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी गुण है, जो भी शौक है, आप उसको आगे बढ़ाइए और अपनी आर्थिक मदद आप परिवार को भी कर सकते हैं और खुद
0: के
1: लिए
0: भी
1: तो
0: कर
1: बहुत
0: सकते
1: अच्छा
0: हैं।
1: है।
0: यानी बस अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत
1: जी
0: है कि हमारा ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट है जिसमें हम बहुत आगे बढ़
1: बढ़
0: सकते हैं
1: सकते
0: या
1: हैं।
0: पैसा कमा सकते हैं, और
1: और
0: हम अब
1: जी
0: आगे बढ़ेंगे गीत के साथ।
1: जी

तो सुना ली, बहुत प्यारा सा ये गीत था। तो जैसे इन्होंने कहा कि तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, तो इसी तरह हम सखियों में, सखी सहेली में भी हम दोनों सखियों का

0: भी ऐसे ही रहता है कि एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं
1: और जब हम साड़ी पहनते हैं
0: फिर
1: उस
0: भी एक
1: वक्त
0: दूसरे की
1: भी
0: तारीफ से उस समय भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं
1: और हमें तालमेल भी बहुत बिठाना पड़ता है,
0: बिल्कुल। तो
1: है
0: देखो
1: ना।
0: आज हम बात करने वाले हैं अरनी सिल्क साड़ी की, जिसे अरनी या अरनी भी कहा जाता है। अरनी सिल्क साड़ी भारत के प्रसिद्ध पारंपरिक रेशमी साड़ियों में से एक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के अरनी नगर में किया जाता है। ये साड़ी अपनी बेहतरीन बुनाई, शुद्ध रेशम, आकर्षक रंगों, टिकाऊ गुणवत्ता और शानदार जरी के काम के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली ये साड़ी आज देश विदेश के फैशन प्रेमियों की भी पसंद बन चुकी है।
1: और अरनी में रेशमी साड़ियों की बुनाई का इतिहास लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद के शासकों के समय इस क्षेत्र में रेशम उद्योग को विशेष संरक्षण मिला था और समय के साथ यहाँ के बुनकरों ने अपनी पारंपरिक कला को नई तकनीकों के साथ जोड़ा, जिससे अरनी सिल्क साड़ियों की अलग पहचान बनी है। आज भी अरनी में अनेक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी शिल्प से जुड़े हुए हैं और ये कला केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत भी है।
0: बिल्कुल। और अरनी सिल्क साड़ी का निर्माण कई चरणों में पूरा होता है, जैसे रेशम का चयन, उच्च गुणवत्ता वाले मलबेरी शहतूत रेशम का उपयोग किया जाता है, धागों की रंगाई, रेशम के धागों को विभिन्न आकर्षक और टिकाऊ रंगों में रंगा जाता है, ताना बाना तैयार करना, करघे पर धागों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जाता है और जरी का उपयोग असली या उच्च गुणवत्ता वाली जरी के बॉर्डर और पल्लू बुने जाते हैं
1: और साथ ही हाथ करघे पर बुनाई की जाती है। अनुभवी बुनकर कई दिनों तक मेहनत करके एक साड़ी तैयार करते हैं और तैयार साड़ी की मजबूती, रंग और डिजाइन की जांच की जाती है और एक उत्कृष्ट अरनी साड़ी बनने में मंजरी 7 से 20 दिन तक और जबकि जटिल डिजाइन वाली साड़ियों में इससे भी अधिक समय लग सकता है। और इस साड़ियों में चौड़े और आकर्षक जरी बॉर्डर होते हैं जिनमें मंदिर, मोर, आम, कमल, बेल बूटे और जामेती डिजाइन होती है और ये साड़ी वजन में बहुत हल्की होती है और जिसके कारण लंबे समय तक पहनने में आरामदायक होती है, साथ ही मजबूत बुनाई के कारण वर्षों तक सुरक्षित रहती है।
0: और तमिलनाडु में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और पारिवारिक आयोजनों में अरनी सिल्क साड़ी विशेष रूप से पहनी जाती है। ये शुभता, समृद्धि और पारंपरिक भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। दक्षिण भारतीय दुल्हनों के विवाह संग्रह में इसका विशेष स्थान होता है सोनाली। और अरनी के हजारों बुनकर इस पारंपरिक उद्योग से जुड़े हैं। वे आधुनिक डिजाइनों को अपनाते हुए भी अपनी प्राचीन बुनाई शैली को संरक्षित किए हुए हैं। उनके धैर्य, मेहनत और कलात्मक कौशल के कारण ही अरनी सिल्क साड़ी विश्व भर में सम्मान प्राप्त कर रही है
1: और साथ ही स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों में इन साड़ियों का निर्यात होता है और तमिलनाडु के हस्तकरघा उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये साड़ियां सशक्त बनाती है। महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां भी इस उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरनी साड़ियों को केवल ड्राई क्लीन करवाना चाहिए और सूती कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और सीधे धूप में लंबे समय तक ना रखें। अरनी साड़ियों को धोना बिल्कुल नहीं है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानकारी दी सुनाली तुमने। और समय समय पर साड़ी को मोड़ बदलते रहने, जो तह होती है उसको बदलते रहना चाहिए ताकि रेशम और जरी सुरक्षित रहे। अरनी सिल्क साड़ी केवल एक परिधान नहीं बल्कि भारतीय हस्तकरघा परंपरा, उत्कृष्ट शिल्प कला और सांस्कृतिक गौरव का जीवंत प्रतीक है। इसकी बारीक बुनाई, शानदार रंग संयोजन और आकर्षक जरी का काम इसे भारतीय रेशमी साड़ियों में विशिष्ट स्थान दिलाता है
1: और ये साड़ी हमें उन कुशल बुनकरों की अथक मेहनत और सदियों पुरानी कला की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी विरासत को आज भी जीवित रखा है। इसलिए अरनी सिल्क साड़ी भारतीय संस्कृति और हस्तशिल्प की एक अमूल्य धरोहर मानी जाती है
0: और हम सभी सखियां जो है वो अपने अपने वार्डरोब में चेक कर ले कि ये साड़ी है कि नहीं है
1: और नहीं है तो खरीद ले।
0: और फिलहाल ये सुने, गीत
1: सुनते हैं।

0: तो सुनाली देखो कितनी अच्छी सी बातें इस गाने में भी थी, है ना। तो
1: कि जब
0: साड़ी
1: हमारी कोई सहेली साड़ी पहन के जाती है, तो अब अगर हम बोले कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो वो कितनी खुश हो जाती है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो आज भी जब आई थी तो हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे ना, साड़ी तो नहीं लेकिन हाँ कुर्तों पे हम लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। ऐसी बातें हो जाती हैं जब सखियां मिलती हैं।
1: यानी जो छोटी से जो तारीफ, जो छोटा सा शब्द है ना, ये हम सभी का मनोबल बहुत कई गुना बढ़ा देता है। तो बीच
0: और
1: बीच में से तारीफ करते रहना चाहिए।
0: तारीफ करने के लिए भी देखो बड़ी हिम्मत का लेना चाहिए रहता है, या फिर किस तरह से किस
1: हमारी
0: भाव से
1: हिम्मत बढ़
0: तारीफ करें।
1: जाती है।
0: हमारी हिम्मत भी बढ़ जाती है, और हम लोग बात भी करेंगे हिम्मत के विषय में, कि हिम्मत कैसे अपने अंदर रखनी चाहिए कि हर मुसीबत का सामना भी हम अच्छे से कर सकें। तो हमारे बहुत सारे विचार आ ही चुके हैं, तो अब अंतराल का समय हो चुका है, तो
1: जी
0: लेते हैं अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली
1: सहेली, और हम लोग बात करने वाले हैं शब्द हमारा विचार आपका, इसमें हम लोग हिम्मत के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोनाली, देखा जाए जब भी हम हिम्मत की बात करते हैं
0: जी,
1: तो केवल कठिन समय में आगे बढ़ने का नाम हिम्मत नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी है। और हर जगह हिम्मत दिखाना समझदारी नहीं होती, जहां विवेक और धैर्य की आवश्यकता हो
0: जी,
1: वहां केवल साहस नहीं बल्कि संयम भी जरूरी होता है। हिम्मत कहां कहां रखनी चाहिए सच्चाई का साथ देने में, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, गलत के खिलाफ आवाज उठाने में, अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, यहाँ पर भी हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। और अपने सपनों को पूरा करने में भी हिम्मत दिखानी चाहिए, असफलताओं से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, है
0: ये
1: ना?
0: तो बहुत सही बात आपने कही है। एक हमारे साथ ही लिखते हैं कि हिम्मत वो दीपक है जो अंधेरों में भी जलता है, हर मुश्किल के सामने सीना तान कर चलता है, राहों में चाहे कितने भी तूफान आ जाए हिम्मत वाले कदम पीछे नहीं हट पाए, गिरकर उठना फिर आगे बढ़ जाना सपनों को सच करने का यही अफसाना है, जो डर को अपनी मंजिल के बीच न आने दे वही इंसान सफलता का आसमान छू ले, हिम्मत से ही जीवन में नई राहें बनती है, इसी से जीत की खुशियां और उम्मीदें बनती हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जिसके पास हिम्मत होती है उसके लिए असंभव भी एक दिन संभव बन जाता है। हिम्मत वो आवाज है जो हर हार के बाद भी कहती है एक बार और कोशिश करो, ये तूफानों से लड़ना नहीं बल्कि उनके बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना सिखाती। बहुत सुंदर सी बात लेकर हमारे साथियों ने भेजी है।
0: एक साथी कहते हैं कि हिम्मत का अर्थ केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि एक मानसिक और आत्मिक शक्ति है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से हार मानने से इनकार कर देता है तो वही उसकी असली हिम्मत कहलाती है। ये डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और संघर्ष हमें नया अनुभव देते हैं। हिम्मत रखने वाले लोग इन अनुभवों से अपने भविष्य की नई कहानी लिखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार आपके भीतर हिम्मत की एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत शब्द का अर्थ साहस, बहादुरी और हौसला होता है। हम बोलचाल की भाषा में इसका बहुत आयत प्रयोग करते हैं, हम तो हिम्मत हार गए या इस फैसले से हमारी हिम्मत बढ़ गई। ये व्यक्ति की वो मानसिक शक्ति है जो उसे किसी कठिन परिस्थिति, डर या खतरे का निडरता से सामना करने और बड़े संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा देती है। डर पर काबू पाने की क्षमता साहस को दर्शाता है। किसी मुश्किल काम को करने का पक्का इरादा, जब कोई दिलेरी पराक्रम की बात होती है, इसे पराक्रम, दिलेरी, शौर्य, जीवट भी कहा जाता है।
0: एक साथी कहते हैं, एक मुहावरा है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर हम कोई असंभव कार्य करने की हिम्मत करते हैं तो खुदा यानी ईश्वर जरूर मदद करेगा। बस आप को खुद पर विश्वास रखते हौसला बढ़ाए रखना है। फिर वो व्यापार करने वाले हो, कारोबारी हो, पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, हिम्मत से जीवन नया पार लगा सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो आंतरिक शक्ति है जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। ये डर को खत्म नहीं करती बल्कि डर की मौजूदगी में इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है, इसी से इंसान को सफलता मिलती है। हिम्मत वो सीढ़ी है जो हर हार को भी जीत में बदल देती है। बहुत सुंदर सी बात है कि हिम्मत अगर होगी, अगर उसकी सीढ़ी पर हम चढ़ गए तो हमारी हार जो होती है ना वो भी जीत में बदल जाती है। और हिम्मत तो हमें देखो दिखानी पड़ती है। अभी कोई नया काम हम सीखते हैं, नई चीज सीखना चाहते हैं, जैसे वाहन चलाना, स्कूटर चलाना या कार चलाना है, तो हमें हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है, तभी हम सीख सकते हैं।
0: बच्चों को भी हमें हिम्मत देना पड़ता है। जब नए नए बच्चे चलना सीखते हैं तब भी डरते हैं, पर माँ जब उसे थाम लेती है कि डरो नहीं हम हैं साथ में, तो वही हिम्मत उसकी ताकत बन जाती है।
1: बिल्कुल, इसी तरह बच्चे जब पढ़ने वाले होते हैं, स्कूल जाने वाले होते हैं, तो वो किताबें देख के डरते हैं, विषय देख के डरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, तो उन्हें हिम्मत दिखानी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि देखो अभी हम समझाते हैं, तुम समझ जाओगे, डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, दिमाग पर जोर मत दो, आराम से सुनो। ऐसी बातें करते तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है, तो वो हर चीज कर लेते हैं।
0: परीक्षा के समय में भी हिम्मत जुटाते हैं ना हम, हिम्मत बढ़ाते हैं बच्चों की, विद्यार्थियों की, देखो घबराओ नहीं, परीक्षा अच्छे से देना। अगर किसी ने पीठ पर हाथ थपथपा दी कि देखिए तुम अच्छा कर रहे हो, परिणाम अच्छे ही होंगे, और अगर परिणाम इधर उधर हो भी गए तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस तरह से अगर कोई हमारे इर्द गिर्द हिम्मत बढ़ाने वाले लोग होते हैं ना, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होता है।

0: है।
1: बिल्कुल सुना ली। और इसी के साथ साथ हमारे एक साथी और लिखते हैं, हिम्मत साहस हौसला इसके कई रूप हैं। बड़ी से बड़ी स्थिति को डट कर सामना करना हिम्मत का काम है। किसी भी गलत बात के लिए आवाज उठाना बहुत हिम्मत का काम है। अपने मन की ना सुनकर सही राह पर चलना भी हिम्मत का काम है। कोई बात किसी की ना पसंद आए, सही ना लगे, उसको मना करना, ये भी बहुत हिम्मत की बात है। हिम्मत के रूप तो कई हैं। बचपन में तो मम्मी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी। अगर गलती करते थे तो डांट पड़ जाती तो चुप रहकर सुन ही लेते थे। हिम्मत नहीं है तो सर नहीं होती थी सर उठाने की।
0: यानी पुराने जमाने की बात ही कुछ और हुआ करती थी।
1: देखिए मम्मी ही नहीं भाई, पापा लोग से, पिताजी लोग से भी, बड़े
0: उनकी आंखों से ही डरते थे हम।
1: उनकी आंखों से डरते थे। तो ये बात थी कि उस समय हम लोग अगर वो कुछ कहते थे तो हिम्मत नहीं होती थी कि हम उन्हें जवाब दें। आजकल पलट के जवाब सुनने को मिल जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो ये तो एक ऐसी आदतों की बात होती है, लेकिन हिम्मत अगर आपके अंदर है, हौसला है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे फौजी भाइयों और सिपाहियों, सैनिकों में बहुत हौसला होता है, हिम्मत होती है कि सरहद पर खड़े होकर वो दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और देश के प्रति अपनी हिम्मत और जज्बे को दिखाते हैं। तो उनको हमें बहुत बहुत सलाम नमस्कार करना चाहिए
0: और गीत सुनना चाहिए।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई देखो सोनाली, अब हमारी बात होने वाली है पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र। इस पर हमारे साथी लिखते हैं कि इसका जवाब एक लाइन में नहीं है। पड़ोसी हो सकते हैं सच्चे मित्र, पर होते ही हैं, ऐसा जरूरी नहीं। रात 2 बजे तबियत बिगड़े उस समय दोस्त और रिश्तेदार फोन पर होंगे, पर पड़ोसी दीवार के उस पार हर दिन की छोटी छोटी जरूरतें आपसी रिश्ते को गहरा करती हैं। लेकिन यही पड़ोसी मित्र कब नहीं बन पाते, जब सिर्फ दीवारें साझा हों पर दिल नहीं, ईर्ष्या, राजनीति, शोर शराबा या दखलंदाजी से पड़ोस का रिश्ता खराब भी हो सकता है, तब वो सिर्फ फ्लैट नंबर बनकर रह जाते हैं। पड़ोसी अपने आप में मित्र नहीं होते, उन्हें मित्र बनाया जाता है। एक नमस्ते, एक कप चाय, त्योहार पर एक प्लेट मिठाई, बस इतनी पहल से दीवारों के बीच का रिश्ता भी दिल का रिश्ता बन जाता है। वाकई में जब कोई दिक्कत होती है तो एक दूसरे के ही काम आते हैं हमारे पड़ोसी, जो भी होते हैं, सब किसी के भी पड़ोसी, वो एक दूसरे के काम ही आते हैं, तो उनके साथ अपना संबंध बना के रखिए, क्योंकि रिश्तेदार तो दूर होते हैं, अचानक आपको दिक्कत आएगी तो वही आपके काम आएंगे, और आप उनको दिक्कत आती तो आप उनके लिए मदद के लिए खड़े हैं।
3: हमारे एक साथी लिखते हैं मंजरी कि ये सच है कि पड़ोसी हमारे लिए रिश्तेदार से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपदा के समय रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। हमारे साथ तो पड़ोसी के संबंध को प्रगाढ़ बनाने में उनके सबसे छोटे बच्चे ने बड़ी भूमिका निभाई है। 3-4 महीने से लेकर अब 1.5 साल का होने तक वो बच्चा हमारे साथ ऐसा घुल मिल गया है कि अब अपने घर से ज्यादा हमारे साथ रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, देर रात कभी भी दादी बाबा कहते हुए दरवाजे पर आ जाता है, और हम भी उसके भोलेपन के व्यवहार से ऐसे बन चुके हैं कि सब काम छोड़कर उसे बुला लेते हैं, और फिर हमारे घर में उसकी छोटी छोटी शरारतों से एकदम से रौनक आ जाती है। उस बच्चे ने अपने निश्चल और नटखट प्रेम से हम दोनों परिवारों को एक साथ बांध दिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर।
2: और एक साथी और लिखते हैं कि पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र ही नहीं बल्कि सच्चे रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी हमारी मदद के लिए पहुंचते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मुझे 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वहां से लौटने के बाद बहुत परहेज वाला खाना खाने को कहा गया। मेरे घर के सामने वाली आंटी ने रोज कुछ ना कुछ बनाकर मेरे लिए भेजती थी ताकि मेरी मम्मी को ज्यादा परेशानी ना हो। मना करने पर बोलती थी कि जब मुझे जरूरत होती है तब तुम भी तो जी जान से सेवा करती। वाकई में एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार रहेगा तो आपका घर परिवार और आपके अगल बगल से लेकर पूरा मोहल्ला भी खुशहाल रहेगा, क्योंकि सबके पड़ोसी ऐसे हो जाएं तो।
3: एक साथी ने लिखा है कि पहले सगो पड़ोसी, सगे संबंधी तो दूर दूर रहते हैं। इस बात पर यह कहावत पड़ी होगी कि सगा पड़ोसी, इसलिए जो अच्छे संबंध हो तो वो ही पहले सुख दुख में भागीदार बनता है, इसलिए पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए।
2: बिल्कुल। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि एकल या विभक्त कुटुंब पद्धति में अब पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र तथा रिश्तेदार बन रहे हैं। जी हाँ, कभी कभी वो

प्राइवेसी को जरूर डिस्टर्ब कर देते, परंतु सुख दुख और आपातकालीन संकट में वो ही तो सबसे पहले हमारे काम आते हैं, सहारा बन जाते हैं। बदलती समाज व्यवस्था में पड़ोसी जीवन का अहम हिस्सा है। त्योहारों की रौनक और सुख दुख के सच्चे साथी बन गए हैं। थोड़े

0: से ही उपलब्ध होते हैं। एक अच्छा पड़ोसी सुख दुख साझा कर जीवन को सुरक्षित बनाता है। और पड़ोसियों के या पड़ोस धर्म के बारे में हम अधिक पढ़ सकते हैं। यदि आप पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या आप जानना चाहेंगे एक दूसरे के साथ तालमेल और सद्भाव कैसे बढ़ाएं? त्योहारों और समारोहों में सहयोग के तरीके, किसी भी अनबन को सुलझाने के उपाय हम जान सकते हैं। भैया एक उसमें कटोरी में डाल के कुछ मिठाई दे दी तो पड़ोसी भी, ये जो संबंध जो है ना प्रगाढ़ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये छोटा सा बर्तन।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक साथी लिखते हैं, सोनाली पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र हैं। अब ये बहुत अचंभित और कहानी सुनने जैसी बात लगती है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी आज भी है, पर आज की जो जैन जी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। प्राइवेट कॉलोनी में अब ये दूरियां बढ़ गई हैं। फ्लैट और सोसाइटी में ये ज्यादा दिखाई देती। मैंने कोरोना काल में प्राइवेट कॉलोनियों में को भी देखा और सोसाइटी और फ्लैट के सिस्टम में भी देखा है। फ्लैट वाले बहुत अच्छे पड़ोसी साबित हुए प्राइवेट कॉलोनियों के हिसाब से। हमारे जमाने की वो पड़ोसी नहीं कि किसके घर की दाल में आज कौन से मसाले की छौक पड़ी है, वो भी पता चल जाता था। और कहने पर बड़ी सौंधी सुगंध आ रही है तो कटोरी दाल भी आ जाती थी, या अगर कोई दो दिन नहीं दिखाई दिया तो तीसरे दिन आपके घर आकर उनसे पूछ लिया गया, आप दो दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है। ये भावनात्मक लगाव खत्म हो गया है जो सचमुच चिंतनीय है। बहुत इन्होंने पते की बात
0: बहुत
1: लिखी है।
0: सही बात की। और खासकर शहरों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, छोटे शहरों में और गांवों में अभी भी लोग पड़ोसियों के घर हक से जाकर बैठते हैं, हक से खाना खाते हैं, वहीं पर रह भी जाते हैं। पर यहाँ पे शहरों में बहुत ही गंभीर परिस्थिति आ चुकी है। पर इस गंभीर परिस्थिति को हम हल्का करेंगे गाना सुनकर।
1: जी।

0: तो भाई देखो सुनाली,
1: हम्म,
0: तुम आई तो मैं सोच रही थी आज तो तुम पक्का मुझे मकई के कुछ कुछ व्यंजन खिलाओगे, लेकिन तुम लाई नहीं। चलो हम रेसिपी पढ़ के संतुष्टि ले
1: भाई बारिश तो गिरने दो, उसके बाद में हम कुछ, बारिश गिरने के बाद ही मकई
0: चलो
1: खाने का
0: चलो
1: आनंद
0: माफ
1: बढ़ता
0: किया
1: है
0: है ना,
1: जी
0: चलो रेसिपी पढ़ के अपनी भूख को शांत कर लेते। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है मकई की चाट, इसकी सामग्री नोट कीजिएगा। एक एक 1.5 कप या 2 कप स्वीट कॉर्न या देसी भुट्टे के दाने। सब्जियों में आपको लेना है 1 छोटा प्याज, 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च। और मसाले में आपको लेना है 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और नमक आपके स्वाद के अनुसार, काला नमक या आप सादा नमक भी ले सकते हैं। और इसमें 1 बड़ा चम्मच मक्खन लेना है आपको, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको बनाने की विधि है कि आप भुट्टो को उबाल ले एक पैन या बर्तन में पानी डाल करके, कॉर्न के दाने आप 5 से 10 मिनट उबालिए और इसको छान लीजिए। तड़का लगाने का के लिए आपको एक पैन में मक्खन गर्म करना है, उसमें उबले हुए कॉर्न 1-2 मिनट के लिए भूने। आप बिना भुने

0: इसका चाट, इसकी चाट बना सकती हैं। अब इसमें मसाला मिलाएं जो आपने फ्राई किया है उसको मसाला मिलाएं। एक बड़े कटोरे में गरम या सामान्य कॉर्न ले और इसमें सभी कटी हुई सब्जियां, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसाले, चाट मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, नमक आदि डालें, मिला लें। नींबू का रस डाल दें, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से आप मिलाएं और ये आपकी चटपटी मसालेदार कॉर्न चाट तैयार होगी।
1: यानी जो लोग डाइटिंग करते हैं वो भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल खा सकते हैं, अनार के दाने भी आप डाल सकते हैं और हाँ। पड़ोसियों को चाहते हैं आप, है ना।
1: और मकई का हलवा बनाने की विधि लिखकर भेजी है कि ताजे नरम कच्चे भुट्टे के दाने को मिक्सी में से पीस ले, फिर एक पैन में घी गरम करके भुना हुआ मकई का पेस्ट डाले, अब तब तक भुने जब तक वो पैन ना छोड़ने लगे अर्थात पैन में चिपके नहीं, फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक पकाए। तैयार है पौष्टिक मकई का हलवा, ऊपर से मेवे डालकर हलवा सर्व करें। और इसमें अगर आपने ज्यादा दूध डाल दिया और थोड़े से दाने ऐसे उबले हुए बिना पीसे हुए दाने डाल दे तो मकई की खीर भी बन सकती है।
0: क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि लिखती है कि मेरे घर मकई की सब्जी बनती है, वो कुछ इस तरह से कि सबसे पहले बिना छिलके वाले साबुत मकईयों को हल्दी नमक पानी के साथ कुकर में उबाला जाता है। ठंडा होने पर इसके 1 से 3-4 पार्ट में इसको काटा जाता है। उबली हुई मकईया के टुकड़े प्याज, आलू, टमाटर की सब्जी में मिलाकर 4 मिनट तक पकाया जाता है ताकि सब्जी का मसाला मक्की के टुकड़ों में आ जाए। ग्रेवी गाढ़ी या पतली आप चाहो तो इसे रख सकते हो। और मकई के दानों की आप बेसन में मिला करके पकौड़े बना लीजिए, है ना।
1: और एक है ना, सखी ने लिखा है कि भुट्टे के दाने का छिलका या चीला, यानी दाने को बारीक पीस ले। अब इसमें कटी हरी मिर्च, नमक, 1-2 चम्मच बेसन या चावल का आटा या सूजी, बारीक कटा प्याज मिला ले और तवा पर इसका चीला बनाए। ये बहुत पतले नहीं बनते, थोड़े मोटे रहते हैं। अगर इसमें आप प्याज नहीं मिलाना चाहते तो बिना प्याज के बहुत अच्छी लगती है। चटनी या दही के साथ खाते, पर मैं तो कहूंगी किसी की जरूरत नहीं, खुद ही बहुत स्वादिष्ट और मीठे लगते हैं। और मकई ना दो तरह की आती है, एक पीले रंग की मकई होती है और एक सफेद। तो पीले रंग के जो दाने होते हैं ना मीठे होते हैं और सफेद वाले जो होते हैं इतने मीठे नहीं होते, यानी फीके होते हैं।
0: हाँ।
1: तो जब नमकीन डिश बनाना होता तब सफेद वाले मकई का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छे।
0: तुमने बहुत अच्छी सी टिप्स दी है, तो बड़ा स्वाद आ गया इन सब रे व्यंजनों को सुन करके, देख करके और पढ़ करके। तो अब चलो एक गीत सुन लिया जाए।
1: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली, मकई के सूप के बारे में भी बता देते कि मकई के दाने इसकी लेना है आपको, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर लेना है और सब्जियों को हल्का भूने, पानी में डालकर उबालें, थोड़ा कॉर्न पीस कर मिलाएं ताकि सूप गाढ़ा हो जाए और गर्मा गर्म आप इसको परोसें।
1: तो यानी
0: तो
1: अभी जब सर्दियों के दिन आते हैं या फिर जब झमाझम बारिश गिरती है, जब वातावरण एकदम से ठंडा हो जाता है, उस वक्त ये गरम गरम सूप जो है ना, ये बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत भाता है। भले ही थोड़ी सर्दी हो जाए ना, उस वक्त भी ये सूप दे दे तो बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किचन में जाते हैं, कुछ नई चीज हमें बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें अपना कौशल भी दिखाना पड़ता है और साथ में हिम्मत भी बहुत दिखानी पड़ती है कि जो हम बना रहे हैं
1: जी
0: वो सही बनेगा और लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और जब अच्छी चीज बनती है तो लगता है थोड़ी सी पड़ोसी को दे दे। तो यानी कहना चाहिए कि हमें आज के सारे विषयों को मिलाकर एक अच्छी नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों को बढ़िया बढ़िया कुछ ना कुछ खिलाते
1: और
0: रहना
1: श्रोताओं को
0: चाहिए।
1: कहते हैं हम धन्यवाद और
0: जी,
1: लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। आज देश में स्किल इंडिया मिशन की 11वीं वर्षगांठ और वैश्विक स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आधुनिक और बाजार की मांग के अनुरूप तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। रांची के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कांके विधानसभा क्षेत्र में SIR अभियान के तहत एक जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से अपने मतदाता विवरणों का समय पर सत्यापन और आवश्यक संशोधन कराने की अपील की। पलामू समाहरणालय में आज आयोजित एक समारोह में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने IDBI बैंक के CSR फंड से 10 दिव्यांगजनों के बीच 3 पहिया पेट्रोल चालित ट्राई स्कूटी का वितरण किया। इस अवसर पर उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और सदर SDO संजय कुमार पांडे भी उपस्थित रहे। रांची में 17 जुलाई को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए NPS संचय आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की ओर से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि संबंध क्षेत्रों और ग्रामीण उद्यमियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मलिक के निधन से धनबाद में शोक है। कल रात उनका पार्थिव शरीर रांची से धनबाद आवास लाए जाने के बाद से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। आज शमशेर नगर कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। लोहरदगा पुलिस ने कुड़ू थाना क्षेत्र के चांपी पिकेट के पास वाहन जांच अभियान के दौरान 25 ग्राम स्टोन मार्क ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। SDPO श्रद्धा करकेट्टा ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से मिले सुराग के आधार पर पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पर जाते हैं तो FM विविध भारती ही लगा लिया जाता है। और आपको बताऊं ममता जी, हाँ। कि एक दिन बड़ा रोचक प्रसंग हुआ। हाँ। मेरी जो श्रीमती जी हैं, उन्होंने कहा आज खाना नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अच्छा। बोले FM रेडियो नहीं बज रहा है। अच्छा। और मैं विविध भारती सुने बगैर खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये विविध भारती की लोकप्रियता है। और आप जैसी रेडियो सखी, आपकी बहुत सारी छाया गीत मैं बड़े अच्छे से सुनता रहा हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज आपसे बातचीत हो रही है। आप कहानीकार भी हैं, आप उपन्यासकार भी हैं और साहित्यकार हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपके बारे में चर्चा करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम सबसे पहले विवेक रंजन जी जानना चाहते हैं आपसे कि ये जल्लाद क्या है, कहां से विचार आया ये नाटक लिखने का, इसके लिए पुरस्कार भी मिला आपको?
2: जी हाँ, मुझे मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी ने अभी रिसेंटली जो साहित्य एकेडमी के पुरस्कार डिक्लेयर किए उसमें हरिकृष्ण प्रेमी नाट्य पुरस्कार 51,000 रुपये का है, वो घोषित हुआ है मेरी नाट्यकृति जलनाद पर। और जलनाद कैसे लिखा मैंने, मैं आपको बताऊं। विश्व जल वर्ष था UNO का, तो नार्डिक देशों के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें मुझसे ये चाहा गया कि मैं पानी के महत्व को लेकर के कोई पौराणिक आख्यानों को जोड़ करके एक नाटक तैयार करूं।
0: जी।
2: तो मैंने ये विभिन्न जो हमारे धार्मिक या कहें आध्यात्मिक चिंतन वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि जैसा आप जानती हैं ममता जी, कि इस सृष्टि का उदय भी पानी से हुआ और जो अंत की परिकल्पना है आध्यात्मिक रूप से वो भी जल प्रलय से है।
0: जी हाँ।
2: आप जानती हैं कि हमारे ऋषि मुनि पानी से ही मंत्र उच्चारित कर श्राप दे दिया करते थे, वरदान दे दिया करते थे। और न केवल भारतीय मनीषा के उसमें, हम इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें तो
0: जल ही जीवन है,
2: जल ही जीवन है, पानी का लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें आज भी कितने सारी कंट्रीज हैं जहां पर शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, जबकि हम विज्ञान से इस कदर प्रगति कर चुके हैं। अभी आपने देखा कि तेल खाड़ी देशों में जो युद्ध हुआ, वहां भी जो समुद्र के पानी को शुद्ध करके पेयजल बनाया जाता है, तो वो एक बड़ी समस्या थी कि अगर वो उन पानी के संयंत्रों पर बिजली की कमी या कोई के कारण से पानी नहीं बन पाएगा तो जीवन के लिए संकट उपस्थित हो सकता है। तो पानी का महत्व निर्विवाद है।
0: तो इसमें ये जो नाटक है ये जलनाद, इसमें कैसे पात्रों का चयन किया आपने, संवाद कैसे गढ़े, कहाँ से आपके पास आइडिया आया,
2: इसमें
0: क्या रिसर्च किया आपने?
2: जी हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च करी और पानी से संबंधित जितने दृष्टांत मुझे मिलते चले गए उनको नाट्य रूपांतर में मैं बदलता रहा। तो 12 इसमें नाटक हैं। जैसे मैं एक कविता का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करूं जो मैंने ऋग्वेद से, जो हमारा एक ऋग्वेद का मंत्र था जिसमें जल देवता को संबोधित करते हुए बात की गई है। तो मैं उससे एक जो उसका हिंदी मैंने भाव अनुवाद किया है, एक अंतिम पैरा पढ़ देता हूँ।
0: जी जी।
2: हे जल के देवता, मेरा आचरण अब तेरे जैसा हो, तेरा रसायन मेरे पोर पोर में समा जाए, तू प्रवाहमान अग्नि है, तू आ मुझे तेजस्वी बना, वर्चस्व प्रदान कर। जिस प्रकार हम जानते हैं ये ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, उसका हिंदी अनुवाद है अंत में मैंने किया कि पानी की एक बहुत बड़ी गुण है कि वो जिस पात्र में रखा जाता है वह रेप आकार ले लेता है। पानी का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसमें जो रंग मिला दिया जाए वह उस रंग में रंग जाता है। तो ये एक, इसका अगर हम बौद्धिक विवेचन करें तो ये हमारे लिए जीवन सूत्र भी है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। और आपने व्यंग्य भी लिखे हैं।
2: हाँ।
0: और एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं, तो हरिशंकर परसाई जी को आपने पढ़ा है, उनसे क्या कुछ पाया, क्या कुछ सीखा आपने?
2: ममता जी, व्यंग के ट्रिपॉइड मध्य प्रदेश में है
0: जी।
2: शरद जोशी जी, बाद में उनकी कर्मभूमि मुंबई रही, वो भोपाल से थे।
0: उनका प्रतिदिन एक कॉलम आता था।
2: हाँ। और हरिशंकर परसाई जी का एक कॉलम आता था सुनो भाई साधो,
0: सुनो भाई साधो जी।
2: तो मैं ये सब पढ़ते हुए अखबारों में बड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार साहित्यिक रहा।

0: हंसी उड़ा रहा
1: जी जी
0: है ना। और एक प्रयोग होता है जिसमें हम किसी पे अवलंबन लेकर के, जैसे
1: किसी व्यक्ति विशेष
0: कोई
1: को
0: हमने एक पात्र
1: टारगेट
0: चयन
1: करते हैं।
0: किया, जैसे एक मेरा व्यंग है कि वोटिंग की लाइन में अर्जुन, तो अर्जुन को पात्र बना करके, जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, तो उस तरह का हम किंकर्तव्य मूड हो जाते हैं कि हम इसको वोट दें कि उसको वोट दें। दोनों चेहरे तो एक से हैं,
1: जी जी
0: कई
1: जी
0: बार ये स्थितियां होती
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: तो हम किंकर्तव्य विमूढ़ नहीं हो सकते हैं।
0: जी
1: हम
0: हाँ
1: इस समय जानना चाहते हैं कि आप गाने भी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो इस
0: जी,
1: समय एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को। आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए ममता जी आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सुना जाए,
1: सुनते हैं।
0: क्योंकि लोग कुछ भी कहते रहेंगे, हमें अपना एक दृष्टि और एक
1: लक्ष्य
0: एक ना लक्ष्य निर्धारित कर उस ओर बढ़ना होता
1: जी,
0: है।
1: अमर प्रेम फिल्म का
0: ये
1: गाना
0: अमर
1: है।
0: फिल्म फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज़ है,
1: जी
0: आनंद बख्शी जी ने इसे बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, तो क्यों ना हम ये गाना सुने।
1: सुनते हैं यही गीत।

0: विवेक रंजन जी, आपने लिखे भी हैं, नाटक लिखे हैं, व्यंग्य लिखे हैं और उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन हमें बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की,
1: जी हाँ
0: एमटेक किया,
1: जी हाँ
0: बिजली विभाग में आप अभियंता के रूप में कार्यरत रहे,
1: जी हाँ
0: तो उसकी कहानी थोड़ी बताइए, कैसे वहां पहुंचे और कोई खास याद वहां से जुड़ी हुई है जो शेयर
1: ममता जी,
0: करेंगे।
1: मैं इसके लिए कहूंगा कि आप बड़ी लकी हैं, क्योंकि आपकी अभिरुचि भी साहित्य में है और आप आकाशवाणी जैसे संस्थान में काम भी कर रही
0: जी जी
1: हैं।
0: जी
1: मैं इतना लकी नहीं था,
0: विरोधाभास
1: विरोधाभास रहा मेरे जीवन में,
0: रहा है जी।
1: क्योंकि भारतीय स्थितियों में अनेक लेखकों के साथ मैं जानता हूं
0: हाँ
1: कि जो आजीविका के लिए कुछ और हैं और जिनको रुचि कुछ और है। तो मैं एक साहित्यिक परिवार से आता हूं, मंडला में मेरे दादाजी जो थे उनके गीत प्रभात फेरियों में गाए जाते थे,
0: अच्छा, क्या
1: मेरे
0: बात है।
1: पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध जी, उनकी 40 विभिन्न किताबें हैं
0: जी
1: जो आध्यात्मिक प्रसंगों की रचनाएं हैं। उन्होंने भगवत गीता, रघुवंश, मेघदूत जैसी रचनाओं के हिंदी काव्यानुवाद किए और उनको अनुवाद पर सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला। तो मैं उससे था, मैंने जब हाई स्कूल में था तब तक हमारे यहाँ 11वीं कक्षा जो होती थी वो हायर सेकेंडरी होती थी, तो मैंने हायर सेकेंडरी तक मंडला की जिला पुस्तकालय और जो भी मंडला के जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उनके सारे साहित्यिक उपन्यास चाट डाले
0: क्या बात
1: थे।
0: है, उस
1: तो
0: समय पढ़ने का एक
1: जी हाँ,
0: खास शौक हुआ
1: और
0: करता,
1: पढ़ने
0: तो
1: का
0: दौर
1: शौक
0: था
1: था,
0: पढ़ाई
1: बहुत
0: का।
1: दौर था, क्योंकि मनोरंजन के और साधन

0: नहीं थे,
1: जी
0: रेडियो, अखबार, अखबार के साहित्यिक कॉलम वो लोग हम लोग पढ़ा करते थे, पत्रिकाएं आती थी तो हम भाई
1: जी
0: बहन दौड़ते थे जब भी कोई नया पत्रिका का अंक
1: कि
0: आता
1: कौन
0: था
1: पहले पढ़ेगा।
0: कौन पहले पढ़ेगा, तो ये जमाना था। तो
1: मनोहर
0: मैंने
1: श्याम जोशी का
0: जी हाँ
1: साहित्यिक ये साप्ताहिक हिंदुस्तान,
0: साप्ताहिक
1: तो इंतजार
0: हिंदुस्तान,
1: होता था कि कौन पहले
0: धर्मयोग,
1: पढ़ेगा। धर्मयोग,
0: धर्मयोग
1: जी जी
0: और वो उससे भी पहले छोटे की बात करें तो पराग, नंदन, ये सब हम लोगों के बचपन में पढ़ पढ़ के वो संस्कार आए।
1: जी
0: तो हम बात कर रहे थे कि मंडला में जब हमारा साहित्यिक परिवार से था तो मैं पढ़ने में होशियार था ईश्वर की कृपा से, लक्ष्य निर्धारित हो तो हम सब अपने उसको उस दिशा में चल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना एक अच्छा व्यवसाय माना
1: तो
0: जाता था।
1: इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना आपने कैसे देखा, पहले ये बताइए कि कहाँ से बीज पड़ा, क्योंकि आप तो
0: गणित, जी
1: साहित्यिक
0: हाँ,
1: रुचियों में जा
0: रुचि
1: रहे
0: में
1: थे,
0: था, बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन गणित में मैं हमेशा अव्वल रहा,
1: अव्वल थे।
0: जी हाँ। तो जब मेरा 11th हुआ और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो मैंने सलाह की, मैं मंडला जैसी छोटी जगह, मंडला एक आदिवासी प्रमुख जिला है और कान्हान अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य अभयारण्य है उसके लिए जाना जाता है, तो वहाँ से था। तो मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया, तो
1: क्या
0: मैंने
1: बात है,
0: रायपुर
1: बढ़िया।
0: से BE किया। फिर उसके बाद BE करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया
1: M.Tech से।
0: MSCT भोपाल से, और इस प्रकार इंजीनियरिंग में मैं निष्णात हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया विद्युत मंडल में। तो मैं वहीं से चीफ इंजीनियर बन के रिटायर हुआ, और आजकल की तरह नहीं कि उस समय, तो आजकल तो जब तक बच्चों की कंपनियों का नाम याद करते हैं हम तब तक वो कंपनी बदल लेते
1: तब आपने एक जगह
0: हैं
1: नौकरी ज्वाइन की तो
0: लगातार
1: बस
0: की।
1: वहीं पे स्थायी रूप से।
0: जी
1: लेकिन विद्युत मंडल में, विद्युत विभाग में अभी भी बहुत सारे शहरों में बिजली की कटौती होती है, महानगरों को छोड़ दें, मुंबई में तो बिजली जाना मतलब एक खबर बन जाती है,
0: जी
1: लेकिन अभी भी देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती होती है। तो ऐसी कभी कोई घटना की शिकायतों से भर दिया गया हो, कोई ऐसी घटना याद
0: नहीं,
1: आती
0: आप
1: है?
0: सही कह रही हैं, लेकिन बिजली का परिदृश्य बहुत बदल चुका है ममता जी। मुझे ये बताने में खुशी है कि अब एक समय था कि जब उत्पादन कम था और मांग
1: खपत
0: ज्यादा थी,
1: ज्यादा थी जी।
0: खपत ज्यादा थी, अब हमारी मांग के अनुरूप काफी बिजली बन रही है और बहुत सारी उसमें नवाचार भी हुए हैं। अब अलग कंपनियां हैं जो विद्युत बनाती हैं। भारत में बिजली बनाने के, जो अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा मैं, कि सबसे स्वच्छ बिजली बनती है पन बिजली, जहां पर पानी की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको, पानी को नीचे गिराकर गति ऊर्जा में बदला जाता है और उससे टरबाइन, मैंने बिजली बनाने का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि तांबे का कोई, जो हमने फेराडे लॉ पढ़ा है कि बिजली तभी बनती है जब कोई उनमें बल अंतर होता है, तो वो कॉपर का पूरा कॉइल जब घूमता है किसी मैग्नेट के अंदर तो बिजली बनती है। अब उसको घुमाने का तरीका क्या हो सकता है, तो या तो भाप की शक्ति से घुमाया जाता है तो वो थर्मल बिजली कहलाती है,
1: जी
0: उसमें कोयला जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, चिमनियों से धुआं निकलता है। दूसरा होता है पन बिजली, जिसमें कि स्वच्छ पानी गिरता है लेकिन उसकी लागत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बांध बनाया जाता है, पानी भरता है तो बहुत से गांव विस्थापित होते हैं, हर एक के अपनी समस्याएं भी हैं। और परमाणु बिजली होती है, तो मैं मंडला में पदस्थ था तो मंडला जिले में एक चुटका परमाणु परियोजना, नर्मदा नदी के बांध के किनारे जो बरगी बांध है उसके जल भराव के क्षेत्र के किनारे प्रस्तावित है, तो उसके प्रारंभिक सर्वे से लेकर के और उस जमीन का, क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट है उनकी मांग ये थी कि हमें फाउंडेशन की दृष्टि से जमीन अच्छी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए,
1: जी
0: पानी का केमिकल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए और वहां की आबादी कम होना चाहिए क्योंकि कभी कोई दुर्घटना हो तो इन सारी दृष्टियों से जो मंडला का क्षेत्र था वो सही पाया गया और उसके सर्वे वगैरह मैंने किए। तो एक ये बात है, कच्चे माल के रूप में पानी और जमीन यही दिया जाना था, तो ये वो प्रस्तावित है, अभी जब भी बनेगा तो वो भी परमाणु बिजली घर भी मध्य प्रदेश को मिलेगा।
1: जी बड़ी अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए
0: जरूर
1: कौन सा
0: जरूर,
1: गाना।
0: एक बैजू बावरा 1952 में एक फिल्म आई थी ममता जी,
1: बहुत मशहूर फिल्म
0: मन
1: है।
0: तड़पत हरि दर्शन को, और इस गाने की खासियत पे हम चर्चा करना चाहेंगे।
1: जी।
0: एक धार्मिक सद्भाव की बात करें तो मोहम्मद रफी साहब ने इसको गाया था, नौशाद जी ने
1: संगीतबद्ध किया
0: संगीतबद्ध
1: है।
0: किया था और शकील बदायूनी जी के शब्द हैं और गीत है मन तड़पत हरि दर्शन
1: जी
0: को आज।
1: तो
0: आज भी ये धुन पूरे हम सब के मंदिरों में बजती है।

0: मानव के मन मंदिर में ये बजती रहे और सद्भाव हो देश में, ये मेरी कामना है।
1: क्या बात है, मेरे ख्याल से राग भैरवी पर आधारित ये गाना है।
0: क्या बात है, आपने उसका राग भी बता दिया ममता जी,
1: जी।
0: आपकी तो खैर बात ही कुछ अलग है।
1: तो अब यही गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: कि जो गाना अभी हमने सुना, गाने के बाद हम चाहते हैं कि आप चूंकि बिजली विभाग में कार्यरत रहे हैं
1: जी हाँ
0: और बिजली विभाग में जो कार्यरत होते हैं शिकायतें बहुत सारी मिलती हैं,
1: जी हाँ
0: तो कोई ऐसी यादगार बात बताना चाहेंगे आपके पास शिकायतों की भरमार? आपके घर वालों ने भी कभी कोई शिकवा शिकायत की कि आप तो बिजली विभाग में काम करते हैं और हमारे घर पे बिजली गायब है,
1: ममता जी,
0: तो ऐसी कोई
1: बहुत
0: बात है
1: अच्छा
0: तो?
1: सवाल किया आपने और इस सवाल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: जी
1: मैं जब चीफ इंजीनियर था तो
0: हाँ
1: मैं अपने जो लाइन स्टाफ था उसको ये कहा करता था कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनको इस ढंग से मोटिवेट करता था। क्या होता है ममता जी कि किसी भी विभाग में जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जवाबदारियां समझते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जिनका सीधा सामना आम नागरिकों से होता है, हम कहीं बैंक जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो जो विंडो क्लर्क होता है, यदि उसका भाव आपसे बातचीत अच्छी है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें मानवीय गुण हैं, उसमें नैसर्गिक एक समस्या को निपटाने की भावना है, तो जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड होकर निकलता है। तो वही बिजली विभाग की बात है कि जो हमारे लाइनमैन हैं, जो हमारे लोगों को बिजली कनेक्शन चाहिए होता है, लोगों को अपना बिल पटाना होता है, लोगों को बिजली सही ढंग से उनको अच्छी बिजली बराबर उसी उस पे वोल्टेज पे प्रॉपर मिलती
0: जी
1: रहे,
0: जी जी
1: ये उनकी उसके लिए पैसे देने को आज लोग तैयार हैं, लेकिन कई बार हमारी सेवाएं अगर नहीं होती तो वो तकनीकी सीमाएं जहां पर हैं वहां हैं, लेकिन जहां मानवीय सीमाएं हैं, जो हमारे व्यवहारिक सीमाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा ज्यादा काम करके थोड़ा सा वो कर, तो इसको मोटिवेट करना पड़ता है टीम भावना से। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में इसीलिए जाना भी जाता था
0: क्या बात है।
1: कि इस ढंग से हम लोगों को अपने मोटिवेट करते थे। और बिजली का परिदृश्य बहुत बदल गया, मेरी एक किताब भी है बिजली का।

0: अब मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो यहां मैं पूरे सारे बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूं।
1: बिल्कुल
0: वे सब पूरा, जैसे हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो जो हमारा पुलिस बल है, जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, जब हम उनकी तरफ से बात करते हैं तो वो पूरी टीम लगी होती है तब कहीं जा करके।
1: बिल्कुल, और जब कभी जरा सी बिजली गुल होती है तो लोग शिकायतों की भरमार कर देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि उस विभाग में भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और कहीं कोई त्रुटि हुई तो पूरी टीम काम में लग जाती है। चलिए अब हम यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: तो हम सबको मुस्कुराहटें देना चाहते हैं
1: जी।
0: तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, ये 1959, ये मेरे
1: अनाड़ी फिल्म का गाना,
0: अनाड़ी फिल्म का, ये मेरी जन्म वर्ष है 1959, 28 जुलाई 59।
1: तो सुनते हैं ये
0: जी,
1: गाना
0: जी।
2: किसी

0: अनाड़ी फिल्म का ये गाना था। विवेक जी, हमें बताइए कि आपने नाटक लिखा है, व्यंग्य लिखा है, अन्य विधाओं पर भी लिखा है, तो तीनों विधाओं में से आपके लिए कौन सी विधा में लिखना आसान होता है और कौन सी विधा बहुत मुश्किल लगती है, और कोई
1: जरूर
0: रचना प्रक्रिया बताना चाहते हैं वो भी बताइए लिखते समय।
1: व्यंग मेरी मूल विधा है,
0: जी
1: क्योंकि जब कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम सीधे किसी को कटाक्ष नहीं कर पाते, सीधे बात नहीं कह पाते, किसी से गाली गलौज नहीं कर पाते, तो अपने मन का फ्रस्ट्रेशन मैं कागजों पर उतार देता हूं और उसे मैं व्यंग में अभिव्यक्त करने में ज्यादा सहज और सरल समझता हूं। कई बार क्या होता है कि विचार अपने हिसाब से विधाएं चुन लेते हैं,
0: जी
1: जो मैं कभी कभी कहता हूं कि हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में कवि अवश्य होता है। युवा प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, मैं कभी जब बहुत सारे विचार मन में कौंधते हैं तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें संप्रेषित करने की जो विधा है वो कविता है। आप भी रचनाकार हैं और
0: बिल्कुल
1: आप इसे समझ सकती हैं,
0: जी जी
1: क्योंकि कविता एक ऐसा शब्द चित्र बनाती है कि उसमें हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से रंग भर सकता है और वह चित्र मुखरित हो जाता है उसके परिवेश के अनुरूप। तो कविताएं भी मैं करता हूं। मेरा 19 पहला काव्य संग्रह आक्रोश नाम से आया था,
0: जी
1: तो उसमें भी गिरिजा कुमार माथुर जी आकाशवाणी में रहे हैं,
0: जी जी
1: उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, मैं कोट करना चाहूंगा।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं साहित्यकार विवेक रंजन श्रीवास्तव। आपसे बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान।
1: उन्होंने लिखा था कि मुझे युवाओं के आक्रोश भरे स्वर बड़े अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो मेरी किताब का शीर्षक ही है आक्रोश, और ये तार सप्तक अर्धशती समारोह भोपाल में हुआ था तो उसमें ये विमोचित हुआ था और ये मेरी पहली किताब थी
0: जी। अगर कुछ पंक्तियां याद हो तो आप सुनाना चाहें सुनाइए, या किसी अन्य कविता संग्रह से कोई कविता याद हो तो सुनाइए।
1: हाँ जरूर, मैं आक्रोश की पहली कविता सुना देता हूँ। छोटी सी कविता है, शीर्षक है निर्वस्त्र। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में, और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। ये और बात है कि तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफेद तौलिए में लपेट दिया गया, और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की गलियों में।
0: क्या बात है।
1: और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की धूल भरी सड़कों पर। जब भी तुम्हारा उससे सामना हुआ, तुम्हें छी गंदा लड़का कहकर उसका परिचय दिया गया। और आज जब उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, जब आज उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की एक छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, तो तुमने उसे अपना फटा पुराना पतलून देकर कपड़ों में भी कर दिया है एक बार फिर से निर्वस्त्र।
0: क्या बात है।
1: तो ये जनवादी नेचर की कविता थी।
0: हाँ, तो यहाँ पर कोई आपकी व्यंग्य रचना की कुछ लाइनें अगर याद है तो आप सुनाएं प्लीज।
1: जरूर ममता जी, मैं एक व्यंग का अंश छोटा सा सुनाना चाहूंगा। विसंगति ये है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो वो चल निकलता है, और उससे पहले जैसे निराला जी ने भी एक बार कहा था कि जब उनका नाम हो गया और रचनाएं छपने लगी तो उन्होंने वो रचनाएं पुनः प्रेषित कर दी जो कभी वापस आ गई थी शुरू के दिनों की।
0: जी जी।
1: ये उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी तरह का है कि विसंगति है नाम का महत्व। और तो ये जो रचना का शीर्षक है छींक का महाकाव्य, उसका छोटा सा अंश पढ़ता हूँ मैं। परम आदरणीय साहित्यकार श्री विभूति नारायण आगाध जी की 3 महीने से एक गंभीर कविता लिख रहे थे, पर शीर्षक ही नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन अचानक उन्हें छींक आई, आंखें। छींक इतनी जोरदार थी कि कागज पर स्याही का एक बिंदु बन गया और उसके नीचे अनजाने में ही चूं जैसा कुछ लिख गया। आगाध जी उसे काटने ही वाले थे कि उनकी वरिष्ठता जाग उठी। उन्होंने सोचा, मैं आगाध हूं, मेरे अवचेतन से निकला कोई भी शब्द साधारण कैसे हो सकता है। उन्होंने कागज पर 3 शब्द और जोड़ दिए, धूप की किरण और चूं। उसी शाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक जी नई रचना लेने उनके पास पहुंचे और कागज पढ़ते ही उनकी आंखें चमक उठी। अद्भुत, इस चूं में पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है आगाध जी, आपने आधुनिक मनुष्य की छटपटाहट को पकड़ लिया है। आगाध जी ने मन ही मन सोचा कि यह तो सर्दी जुकाम का कमाल था, लेकिन गंभीरता चेहरे पर लाते हुए बोले, इसे पाने के लिए चेतना को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना पड़ा।
0: क्या बात है।
1: रचना मुख्य पृष्ठ पर छपी और फिर आलोचना जगत में तूफान मच गया। मार्क्सवादी आलोचक ने लिखा कि चूं शोषित वर्ग का विद्रोह है। मनोविश्लेषकों ने इसे दमित अहम की चीख बताया। अस्तित्ववादियों ने इसे जीवन की निस्सारता का सर्वोच्च उदाहरण बताया। एक युवा आलोचक ने तो यहां तक लिख दिया कि कबीर के अनहद नाद के बाद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाद यही चूं नाद है। सोशल मीडिया पर चूं ट्रेंड करने लगा, लोग बिना समझे उसकी प्रशंसा करने लगे। तो आशा यह है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो उसकी रचनाएं चल निकलती हैं।
0: जी, क्या बात है। बढ़िया आपने रचना सुनाई, व्यंग्य रचना। और अब एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
1: ये सुना जाए कि जिंदगी प्यार का गीत है, सौतन से।
0: जी, सौतन फिल्म का गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: विवेक रंजन जी, व्यंग्य रचनाओं पर आपकी बात हुई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य, समकालीन साहित्य में, समाज में किस तरह के सकारात्मक बदलाव आप महसूस करते हैं?
1: बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ममता जी हो रहे हैं। स्त्री विमर्श पर आजकल बड़ा चर्चा है और साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा, जो तीसरा जेंडर है, उस पर भी बहुत सारी रचनाएं आ रही हैं
0: जी
1: और कहानियों ने भी यथार्थवाद को पकड़ा है।
0: जी
1: कहानियां अब उस ढंग की नहीं रही कि जो एक आदर्श ही प्रस्तुत करती थी, अब यथार्थ को लेकर के, यथार्थ नायक, जो जिस ढंग का, जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, वो
0: जी
1: सारी चीजें कहानियों में देखने पढ़ने मिल
0: जी
1: रही हैं।
0: तो आपको क्या लगता है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से
1: जी
0: बहुत सारे कथाकार जिनको नहीं जाना जाता है
1: जी
0: तो वो भी चर्चित हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया ने क्या सृजन कार्य को कम किया है या बढ़ावा दिया है? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ना लिखना लोग कम कर रहे हैं या ज्यादा, आपके नजरिए से क्या है?
1: सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया है, क्योंकि पहले मुझे याद है, ममता जी आपको भी याद होगा, कि हम लोग जब रचनाएं किसी पत्रिका के लिए भेजा करते थे तो साथ में एक पता लिखा, टिकट लगा, लिफाफा रखना होता
0: जी
1: था।
0: जी वापस
1: और मुझे याद है कि तब हम राइस पेपर पे कार्बन लगा करके मैं लिखता था, डॉट पेन
0: जी
1: से
0: जी क्या बात है।
1: नीचे कांच रख करके। मैंने वो युग जिया है और भेजी हैं रचनाएं उस ढंग से, और हम डालते थे डाक में वो लिफाफे और फिर इंतजार करते थे
0: ये
1: कि अब
0: रचना कब
1: मैंने
0: आए।
1: रचना की, या तो स्वीकृति आएगी या अस्वीकृति आएगी और मेरा हाथ का पता लिखा लिफाफा लौट के आएगा। तो एक वो
0: बेसब्री
1: समय
0: से
1: था,
0: इंतजार
1: जी
0: होता
1: हाँ,
0: था।
1: ये एक समय था। और आज उसका नुकसान भी कहें और फायदा भी कहें, नुकसान ये है कि असंपादित रचनाएं बेहिसाब इधर मन में आया, और स्वसंपादन का युग है। हमने बटन दबाया और फेसबुक के जरिए, मैंने ब्लॉगिंग 2005 से शुरू की थी,
0: जी जी
1: जब
0: जी
1: हिंदी ब्लॉगिंग शुरू हुई तो मेरे ब्लॉग्स बहुत पढ़े जाते थे और उन पे हिट्स मिलते थे। आर्कुट का जमाना था, आप सबको
0: जी
1: टर्नो के, जी
0: बिल्कुल,
1: हाँ,
0: एक समय था
1: एक
0: आर्कुट
1: समय था,
0: बहुत
1: जी
0: प्रचलित
1: हाँ,
0: हुआ था। जी
1: तो उसमें भी मैं था, फिर ब्लॉग में आया, फिर फेसबुक आई, फेसबुक में आ गया। तो इन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ये लाभ तो मिलता है कि रचनाकार के मन में जो भी भाव आए, आप सहमत होंगी कि वो लिखता है और उसको संपादक की कोई गरज नहीं होती, वो खुद लिख करके खुद उसे संप्रेषित कर देता है। लेकिन उसका जो साहित्य की दृष्टि से दुष्परिणाम की अगर बात करें तो असंपादित रचनाएं जा रही हैं।
0: जी
1: संपादन का एक अलग महत्व होता है। संपादक वह प्रहरी होता है जो पाठक और लेखक के बीच कहीं कोई एक ऐसा कर्टन लगाता है कि उसे बड़े तरीके से प्रस्तुत करता है,
0: एक पुल का काम
1: पुल
0: करते
1: का काम
0: हैं
1: करता है।
0: कि
1: जी हाँ,
0: अगर पुल अच्छा है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से
1: नहीं, उससे
0: आप
1: परिष्कार भी
0: पार
1: होता है,
0: जा सकते हैं।
1: परिष्कार भी होता है। मैं तो चूंकि घर में, मैंने, मेरी वाइफ मेरी पहली श्रोता है हमेशा, जब मैं लिखता हूं तो उसे पकड़ के जबरदस्ती बिठा के सुनाता हूं, और वो बहुत से परिष्कार रचना में होता ही है, तो
0: तो क्या
1: बताती,
0: प्रतिक्रिया देती हैं, अच्छी बुरी?
1: सुधार के बिंदु बताती। वो भी एक साहित्यिक परिवार से है, उसके पिताजी ने, वो स्वतंत्र लेखिका भी है और
0: अच्छा।
1: महिला पत्रिकाओं में उसकी रचनाएं छपती हैं। तो वो, हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पे क्या लिखा जाना चाहिए, क्या, कौन सी बात ऐसी है जो संप्रेषणीय रचना की दृष्टि से हमने लिख ली, लेकिन सामाजिकता के, मर्यादा की दृष्टि से, क्योंकि साहित्य में स जुटा हुआ है, सबका हित।
0: जी
1: तो जो कुछ हम, जब जब पुरस्कार मिल जाता है किसी को, कोई रचनाकार कुछ लिखता है, तो हम समाज के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हम रहें ना रहें, साहित्य रहेगा,
0: जी बिल्कुल, किताब रहेगी
1: किताब
0: आपकी तो
1: रहेगी,
0: उसमें
1: रचनाएं
0: नाम
1: रहेंगी।
0: रहेगा।
1: तो
0: जी
1: ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की थी,
0: हाँ
1: तो उसमें ये कमी मुझे लगती है, लेकिन उसका लाभ यही है कि नंबर ऑफ लेखक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब विदेशियों की बात करें तो विदेशों में बहुत सारे बच्चे, हमारे युवा आज गए, हर तीसरे घर से कोई ना कोई किसी विदेश में है, तो वो उनके साथ उनके मम्मी पापा गए। अब उनके मम्मी पापा वहाँ क्या काम करें, फ्री हैं, तो बहुत से जो महिलाएं हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गईं, उन्होंने विदेश में लेखन को अपना अभिरुचि बनाई, और उसके कारण नए लेखक साहित्य जगत को मिले, और प्रवासी लेखकों का एक बड़ा संसार है। ममता जी,
0: एक
1: और
0: उनकी
1: उनका,
0: बाकायदा
1: हाँ
0: दुनिया है
1: उनका
0: और
1: एक
0: बहुत सारी पत्रिकाएं हैं
1: अच्छा
0: जिसके
1: ईश्वर की
0: माध्यम
1: कृपा से
0: से।
1: वहां पर रहते हुए संपन्नता के कारण वो उनकी किताबें फिर भारत से ही छपती हैं।
0: जी।
1: और अब किताबें भी आप ये देखिए कि फिजिकल किताबें तो एक समय था कि हमारे पिताजी की किताबें 1,000 का संस्करण छपता था, आज आप भी लेखिका हैं आप जानती हैं कि 200 प्रतियां यदि एक संस्करण में छप रही हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ये परिवर्तन हुए हैं समाज
0: जी,
1: में।
0: प्रवासी साहित्य की बात आपने की तो आप खुद विदेशों में गए हैं,
1: जी हाँ
0: आपने जिक्र भी किया कि
1: जी
0: यूएस और दुबई और कई जगह पर
1: जी
0: गए
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो प्रवासी साहित्यकारों उनकी दुनिया कैसी है,
1: उनकी
0: कि
1: दुनिया
0: फायदे
1: जी हाँ
0: नुकसान।
1: उनकी दुनिया को हिंदी एक मंच पर जोड़ने का बड़ा काम कर रही है।
0: जी
1: मैं यूएस में गया था तो वहाँ काउंसलेट में मुझे बुलाया गया था और वहाँ पर हिंदी दिवस का आयोजन था। तो मैंने लिखा कि रचना में कि हिंदी जो है वो हमें एक सूत्र में गर्व से जुड़ने का आपस में एक माध्यम बनती है। हिंदी एक फेविकोल की तरह काम करती है जो बहुत सारे भारतीय विदेश में हैं उनको एक मंच पर लाने का काम हिंदी का कर रही है।
0: जी
1: तो इस तरह से प्रवासी साहित्यकार बहुत सारा अच्छा लेखन कर रहे हैं
0: जी
1: और उनके संकलन भी आ रहे हैं
0: जी
1: और छप रहे हैं, चर्चा में हैं। अभी मैं
0: विवेक रंजन जी, आपने नाटक भी लिखे
1: जी हाँ
0: हैं, नाटक भी था,
1: जी
0: तो क्या होता है, आपकी रचना प्रक्रिया क्या होती है, उसके पात्र कहाँ से लाते हैं और संवाद कैसे गढ़ते हैं, उसके बारे में बताइए।
1: मैं ममता जी सायास बहुत कम लिखता हूँ। सायास मतलब कोई जबरदस्ती कभी नहीं लिखता मैं, जो स्वतः कभी मैंने वैचारिक रूप से अंदर उथल पुथल जब विचारों की चलती रहती है तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परिपक्व होती रहती है। मेरी रचना प्रक्रिया ये है और किसी दिन सुबह 4 बजे नींद खुलती है और फिर मैं सुबह के समय में 2-3 घंटे में रचना पूरी कर लेता हूँ। तो इस ढंग से मैंने कई नाटक लिखे और हर नाटक का, हर कविता का, हर व्यंग्य का मेरा एक भाव है। और मैं संदेश भी ये मित्रों को देना चाहता हूँ, रचनाकारों को, युवा रचनाकारों को, कि हम जो कुछ भी लिखें उसका एक हमारा मंतव्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना
0: कि लोग
1: चाहिए।
0: पढ़ें।
1: हाँ, लोग पढ़ें और उससे कुछ सकारात्मकता समाज में जाए। केवल नाम की गरज से लिखना या किसी के कहने पर कुछ लिख देना वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है।
0: जी,
1: जी
0: तो क्या होता है, फिक्शन लिखना पसंद करते हैं या किसी यथार्थपरक
1: हाँ,
0: विषय पर?
1: मैं जैसे जब कोई व्यंग जब लिखता हूँ तो पीड़ा होती है किसी बात को लेकर के, बड़ा मन व्यथित होता है कि यार ये क्या विसंगति है, तो उसको फिर व्यंग में अभिव्यक्त कर देता हूँ। कोई दृश्य कभी बड़ा मनोरम लगता है, कोई बड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें बहुत से रंग भरने की कोशिश होती है तो शब्द चित्र बनते हैं, तो मैं कविता लिख देता हूँ। जैसे मैंने अपनी जब काम वाली का जीवन देखा, मेरा कहना यह है ममता जी कि हर व्यक्ति अपने आप में एक उपन्यास है, चलता फिरता उपन्यास है। जो मेरे घर में काम करने वाली है उसकी पीड़ा जब मैंने पास से देखी, समझी, कितनी मेहनत वो सुबह से कहां से आकर के करती है हमारे लिए, अपना सर्व मैंने फिजिकल मेहनत, जब हम विदेशों में जाते हैं देखते हैं कि खुद फिजिकल मेहनत करना पड़ती है, जो यहाँ पे हाउस हेल्प समय
0: जी,
1: उपलब्ध कराती है,
0: सहायिकाएं होती
1: जी
0: हैं, सहायक
1: सहायिकाएं
0: होते
1: होती
0: हैं,
1: हैं,
0: आपको
1: जी
0: बहुत मदद मिलती
1: जी
0: है।
1: हाँ।

0: आरा में भी साहित्य एकेडमी का नाटक के लिए ही पुरस्कार मिला था, तो वो हिंदोस्तां हमारा, तो उसमें जैसे डीपीएस लखनऊ में किसी ने मुझसे फेसबुक के जरिए आमंत्रित किया कि हमारे स्कूल के लिए कोई नाटक लिखिए, तो मैंने फिर हिंदोस्तां हमारा देशभक्ति का एक नाटक बच्चों के लिए लिखा था। तो इस तरह से रचना प्रक्रिया चलती है।
1: तो ये तो हो गई, आपने कहा कि हम घर में सहायिका काम कर रही, वहां से उसके दर्द को साझा करते हैं, लेकिन एक कवि हृदय होता है, अमूमन कवियों की कविताओं की शुरुआत प्रेम कविता से होती है, और आपने अपने श्रीमती जी का जिक्र किया दो बार, तो उनके लिए भी कोई कविता लिखी है, अपनी पत्नी के लिए कोई कविता लिखी है? तो
0: उनके लिए तो जरूर लिखी है, मगर वो प्रेम पत्रों में बंद है। आज मैं आपको कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाना चाहता हूं कि अच्छा लगता है, शीर्षक है। भाव काव्य के मंथन लौट करते घर लौटे तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है।
0: जब हम किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहां से कुछ अगर दो पंक्तियां गुनगुनाते हुए लौटे तो अच्छा लगता है। ये भाव है, है ना। भाव काव्य के मंथन करते घर लौटे तो अच्छा लगता है, शब्द तुम्हारे कुछ जो लेकर घर लौटे तो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है।
0: कौन किसे कुछ देता यूं ही, कौन किसे सुनता है आज, छंद सुने और गाते गाते घर लौटे तो
1: अच्छा लगता है।
0: मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है।
0: पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है, एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक। सोशल मीडिया पर ये देखने में मिलता है लाइक और डिसलाइक, मैंने बस एक दूसरे
1: लाइक कमेंट
0: लाइक कमेंट एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक, गीत गजल सुन द्रवित हृदय जब रो देता तो अच्छा लगता है। कविताओं की विषय वस्तु तो कवि को ही तय करनी है, शाश्वत भावों की अभिव्यक्ति सुन पर अच्छा
1: लगता है। वाह।
0: रचना पढ़े बिना समझे बिन नाम देख दे रहे बधाई, आलोचक पाठक की पाती पढ़कर लेकिन
1: अच्छा लगता है। वाह।
0: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर।
1: क्या बात है।
0: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर, पढ़ने मिलता लिखा स्वयं का छपा हुआ जो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: बहुत पढ़ा और लिखा, बहुत कई जलसों में शिरकत की, बैठे घंटों श्रोता बनकर अब मंचों पर जब बैठो तो
1: अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया।
0: शब्द तुम्हारे कुछ लेकर के घर लौटो तो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। लता मंगेशकर का गाना है रेशमा और शेरा फिल्म से, तू चंदा मैं चांदनी।
1: बहुत ही बेहतरीन गाना है।

0: विवेक जी, ये तो कविता आपने सुनाई, अब नाटक पर फिर से आते हैं। नाटक जो लिखे हैं, तो ये इच्छा होती है कि नाटक रंगमंच पर आए, तो क्या आपके रंगमंच पर भी नाटक मंचित किए गए हैं?
1: जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो हिंदोस्तान हमारा के कुछ नाटक बाल नाटक थे, तो वो DPS स्कूल लखनऊ में, ज्ञानदीप मंडला में
0: जी
1: मंचित हुए, और स्कूलों में कई जगह वो बाल नाटक मंचित हुए। इसी तरह से जो अभी जलनाद है वो अमेरिका में एक
0: मंचन हुआ।
1: जगह, हाँ, मैं मंचन हो रहा है उसके अंशों का, और NSD को भी भेजा गया है ये नाटक। तो देखिए, जैसा बोला जाता है ना कि गीतों को छू ले कोई, मैंने अगर कोई गीत गा ले तो गीत अमर हो जाता है,
0: होठों से छू लो तुम मेरा गीत
1: और
0: अमर
1: गीत
0: कर
1: अमर कर दो।
0: दो।
1: और उसी तरह से नाटक के मामले में कि नाटक दृश्य और श्रव्य विधा है
0: जी
1: और उसकी संप्रेषण क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी कहानी को जब हम पढ़ेंगे तब हमारे मन में हमारे परिवेश के हिसाब से चित्र बनेंगे, लेकिन नाटक जब हम देखते हैं
0: जी
1: तो उसका सीधा असर, इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर दोनों दृष्टि से पड़ता है, संवाद डिलीवरी से भी और जो कुछ हम आंखों से देखते हैं।
0: जी
1: तो नाटक का महत्व ही उससे है। और जिस ढंग से हवा महल में जो झलकियां आप लोग सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को, तो उसमें आवाज की ही नाटकीयता से सारे भाव प्रेषित होते हैं।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: मेरी झलकियां, मैं कामना करता हूं कि विविध भारती से भी आए,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल
1: इस ढंग का कुछ प्रयास मेरा है।
0: जी, जरूर आपकी कलम में ताकत है तो फिर ये जरूर होगा। हमें बताइए कि आपके लेखन को किन साहित्यकारों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? मतलब आपने पढ़ा है बचपन से इतने
1: जी
0: सारे साहित्यकारों को,
1: जी
0: तो किन साहित्यकारों से आप प्रभावित रहे?
1: मूलतः मैं परसाई जी से प्रभावित हूँ, अपने आप को परसाई जी से प्रभावित मानता हूँ, क्योंकि व्यंग की जो प्रारंभिक मेरी भावनाएं जागी वो उनके स्तंभों को पढ़ने से हुई, और फिर आगे जैसे जैसे मैं और गहराई से पढ़ता गया तो निश्चित ही जोशी जी ने, शरद जोशी जी के व्यंग, त्यागी जी के व्यंग, उनसे भी मैं प्रभावित रहा हूँ।
0: जी, और इन दिनों क्या लिख रहे हैं आप?
1: इन दिनों मैं कहानी पर काम कर रहा हूँ और ललित निबंध पर काम कर रहा हूँ,
0: जी
1: क्योंकि ललित निबंध में साहित्य अमृत एक पत्रिका है, तो उसमें बड़े अच्छे ढंग से ललित निबंध बहुत पढ़ने मिलते थे। ललित निबंध विधा कम लिखी जा रही है, संस्मरण विधा कम लिखी जा रही है,
0: विस्मृत हो रही है एक तरह
1: विस्मृत
0: से
1: हो रही,
0: आजकल।
1: रिपोर्टाज बहुत कम लिखे जा रहे हैं। तो मेरा यह है कि चूंकि बहुआयामी बहुविध व्यक्तित्व अपना मेरा ऐसा कुछ बन गया है, तो पहले उस विधा की रचनाएं बहुत सारी पढ़ता हूँ, श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ता हूँ, और फिर वो ईश्वर ने भाव दिए हैं, शब्द दिए हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता दी है, तो उसमें अभिव्यक्त करता हूँ।
0: जी विवेक रंजन जी, बड़ी ही रोचक बातें आपने कहीं साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। विविध भारती परिवार की ओर से और श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए यहाँ, नमस्कार।
1: धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती परिवार को कि ये आज आपने मुझे अवसर दिया, और तमाम श्रोताओं को कि आपने मुझे सुना और आप मुझे पसंद किया नहीं किया ये तो आपके पत्रों से मालूम होगा। विविध भारती को आपके फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा।
0: जी, बहुत बहुत
1: नमस्कार,
0: शुक्रिया,
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: थैंक यू ममता जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जुबैर खान। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज झारखंड और ओडिशा के लिए 3,907 करोड़ रुपए की दो रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत झारखंड में राजखरसावां डांगुआ पोसी चौथी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। दुमका में आज विश्व युवा कौशल दिवस पर चार झारखंड गर्ल्स बटालियन एनसीसी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष सुधीर कुमार मंडल और कर्नल अनिल यादव ने युवाओं से सरकारी कौशल योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का अपील की। गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए देशभर में जारी गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत अब तक 5 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर जुटाए जा चुके हैं। अभियान के झारखंड प्रभारी अभय आश्रय दास ने प्रेस वार्ता में बताया कि आगामी 27 जुलाई को देश के सभी जिलों में उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हस्ताक्षरित मांग पत्र सौंपा जाएगा। राज्य के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मन्नान मलिक को आज धनबाद के वासेपुर स्थित शमशेर नगर कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। ऊर्जा संरक्षण और जागरूकता के उद्देश्य से आज शाम 7:30 बजे से बोकारो में 3 मिनट का ब्लैकआउट रखा जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत पेट्रोल पंप और मेडिकल अस्पताल सहित आसपास के प्रमुख क्षेत्रों में आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी गैर जरूरी बत्तियां बंद रखी जाएंगी। खूंटी पुलिस ने तजना नदी पुल के पास हुए दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

रात ने हवाओं से भेजा है पैगाम, आसमान के नाम, सुर्ख नीले आसमान पर फैल गई है लाली, नजर आ रही है चांद की परछाई। इस खूबसूरत फिजा में मन लिख रहा है प्रेम के गीत, कलम से झर रहे हैं सिर्फ प्यार के अल्फाज।

अंकुरी अंकुरी खिल जाता है सूरजमुखी, धूप की पहली किरण से गुलाब की पंखड़ी पर ठहरी ओस की बूंद मुस्कुरा उठती है। नरम धूप का टुकड़ा गुलमुहर सा सुंदर लगता है जब छा जाता है नशा प्यार का। छुई मुई हो जाता है मन जब मिलता है साथ चाहने वाले का।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। नींद में देखा था एक सपना कि कोई आया है नेह की पाती लेकर, कि कोई आया है अंजुरी भर प्यार का पैगाम लेकर। फिर जागती आंखों ने सजाया ख्वाब और वही ख्वाब बन गया जिंदगी का मकसद। मन में कचनार की कलियां फूटने लगीं, फूल बनकर महकने को आतुर हो उठीं।

जब गहराता है प्यार का एहसास, तो जैसे थके पांवों को मिल जाती है मंजिल, जैसे दिल की धड़कनों में बज रहा हो कोई साज, मौसम का हर मिजाज भला लगने लगता है, मन से मिट जाता है जमाने के लिए रंज, नजरों को इंतजार रहता है हर पल उस शख्स का जिसने लिखा है नाम मन की स्लेट पर।

कभी कभी मोहब्बत के रंग में घुल जाता है उदासी का रंग, कभी कभी ख्वाबों का रंग फीका हो जाता है, कभी कभी मिलन की घड़ियां ठहर जाती हैं, कभी कभी इंतजार सिर्फ इंतजार रह जाता है। आती है याद लेकिन नहीं आता वो जिसका हो इंतजार।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम तराने नए पुराने बस कुछ ही पलों में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
2: हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे।

0: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज के अंदर से। घर आंगन कार्यक्रम के अंतर्गत आई सुनते हैं प्रिया वर्मा की वार्ता। विषय है, महिलाएं अपनी दिनचर्या को दुरुस्त कैसे करें।
1: हर महिला के जीवन में एक अच्छी और नियमित दिनचर्या का होना बहुत ही जरूरी है। महिलाओं के लिए दुरुस्त दिनचर्या का मतलब है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन। दिन की सही शुरुआत पौष्टिक खान पान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद के माध्यम से ऊर्जा और हार्मोनल संतुलन बनाए रखा जा सकता है। जीवन बहुत तेजी से भागता है, काम, परिवार की देखभाल, सामाजिक जीवन और स्क्रीन के सामने सारा समय बीतने के कारण स्वास्थ्य अक्सर प्राथमिकताओं की सूची में सबसे नीचे आ जाता है। कई लोगों का मानना है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए अतिरिक्त समय, महंगे जिम की सदस्यता या सुनियोजित कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक सरल और व्यावहारिक है। व्यस्त दिनचर्या में स्वस्थ जीवन शैली जीने का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ करना ही है। इसका मतलब है कि हर समय सही काम करना, छोटे छोटे सचेत प्रयास भी फर्क ला सकते हैं। यहाँ तक कि उस दिन भी जब आप बहुत तनाव में हो, सही सोच और समझदारी से योजना बनाने में स्वस्थ रहना तनावपूर्ण नहीं बल्कि आसान हो जाता है। एक अच्छी दिनचर्या न केवल महिलाओं को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाती है बल्कि उनके आत्मविश्वास और कार्य क्षमता को भी बढ़ाती है। महिलाओं को घर और कामकाज के दौरान अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, यह आपके पूरे दिन को निर्धारित करती है। ध्यान और व्यायाम में 1 घंटा बिताने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय

सरल चीज़ों पर ध्यान दें जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। सामान्य से 10-15 मिनट पहले उठे, इस समय का सही उपयोग स्ट्रेचिंग करने, पानी पीने या कुछ गहरी सांस लेने के लिए करें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके शरीर को सक्रिय और जागृत करके एकाग्रता बढ़ाने और तनाव को कम करने में सहायता प्रदान करती है। सुबह जल्दी उठने से दिनचर्या व्यवस्थित रहती है और व्यस्त दिनों में भी आप अधिक नियंत्रण में महसूस करते हैं। व्यस्त दिनचर्या वाले लोगों के लिए यह एक बेहतरीन स्वस्थ जीवन शैली का सुझाव है। खाना छोड़ना समय बचाने की रणनीति लग सकती है, लेकिन इससे अंततः ऊर्जा की कमी, एकाग्रता में कमी और दिन के बाद के समय में सेहत खराब खान पान की आदतें उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए बढ़िया खाना पकाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पहले से योजना बनाना पर्याप्त है। एक स्वस्थ भोजन का मतलब एकदम सही भोजन होना नहीं, इसमें ज़्यादातर मामलों में बेहतरीन विकल्प चुनना शामिल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संतुलित भोजन शरीर को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे व्यस्त दिनचर्या में भी स्वस्थ जीवन शैली जीना संभव होता है। जब जीवन व्यस्त हो जाता है तो नींद उन पहली चीज़ों में से एक है जिनसे लोग समझौता करते हैं। दुर्भाग्य से नींद की कमी से उत्पादकता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मनोदशा और दीर्घकालीन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। सोने का सही समय निर्धारित करें और जितना हो सके उतनी बार सोने का प्रयास करें। रात को सोने से पहले स्क्रीन के सामने बिताए जाने वाले समय को 30 मिनट से कम रखें और शाम को रोशनी कम करके हल्का भोजन करें और कैफीन का सेवन सीमित करके एक आरामदायक दिनचर्या बनाएं। नींद से समझौता नहीं किया जा सकता है। अच्छी तरह से आराम करने पर अन्य सभी आदतों को बनाए रखना आसान हो जाता है। तनाव से बचना संभव नहीं है, लेकिन अनियंत्रित तनाव धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। स्वस्थ लोगों के लिए स्वस्थ आदतों को बनाए रखने के लिए तनाव को अच्छी तरह से प्रबंधित करना सीखना महत्वपूर्ण है। तनाव को हावी होने से पहले ही उस पर काबू पा लेने का प्रयास करना बेहद जरूरी है। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है गहरी सांस लेना, कुछ पल रुकना, संगीत सुनना या बाहर जाकर ताजी हवा में सांस लेना। इसके लिए घंटों ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दिन में कुछ क्षण ध्यान लगाने से भी बहुत फर्क पड़ता है और तनाव का कम होकर समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अत्यधिक व्यस्तता समय और ऊर्जा दोनों को नष्ट कर देती है और स्वयं की देखभाल के लिए समय नहीं बचता। ना कहना सीखना लाभकारी है, स्वास्थ्य पूर्ण नहीं। स्वास्थ्य सर्वोपरि है, जो आपको जीवन के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायक होता है। परिपूर्ण बनने का प्रयास लोगों को निराश कर सकता है, इसके बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप एक बार व्यायाम करना भूल जाते हैं या अस्वास्थ्यकर भोजन कर लेते हैं तो आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाते। स्वस्थ जीवन शैली में संतुलित होना आवश्यक है। कभी कभार होने वाली गलतियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निरंतरता। छोटी छोटी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें और आगे बढ़ते रहें। यह मानसिकता में बदलाव के रूप में होना चाहिए, ताकि एक दीर्घकालीन व्यस्त कार्यक्रम और स्वस्थ दिनचर्या बनाई जा सके जो वास्तव में कारगर हो। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्हें व्यस्त समय में भी खुद के लिए समय निकालने, अपने संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, हीमोग्लोबिन अवश्य जांच कराएं। स्वस्थ रहना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी कैलोरी बर्न करते हैं या आपका वजन कितना है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंदर और बाहर से कैसा महसूस करते हैं। खुद को हाइड्रेट करें। खुद जब हाइड्रेट रहेंगे तब आपका शारीरिक सेहत सही तरीके से काम करेंगे। शरीर में पानी की कमी आमतौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन यह ऊर्जा, पाचन और एकाग्रता के स्तर को प्रभावित करता है। अधिकतर लोग इसे भूख या थकान समझ लेते हैं,

अपने डेस्क, बैग या कार में पानी की बोतल रखें। प्यास लगने पर ही पानी न पिए, बल्कि दिन भर पानी पीते रहें। नींबू या जड़ी बूटी मिलाकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार स्वस्थ जीवन शैली के सुझावों में से एक यह है कि आप अपने व्यस्त दिनों में भी पर्याप्त मात्रा में पानी

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा कुछ ही पलों में प्रादेशिक मुख्य समाचार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ के पास जमा करने की अपील की है, ताकि 5 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा सके। 22 जुलाई को एएसटीडी सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। पाकुड़ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने एसआईआर में लापरवाही बरतने पर बूथ संख्या 213 के बीएलओ सुपरवाइजर और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। निरीक्षण के दौरान कुछ मतदाताओं को गलत तरीके से अनुपस्थित और स्थानांतरित श्रेणी में दर्ज किए जाने का मामला सामने आया। धनबाद के मुख्य डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पोस्टमास्टर राजीव कुमार ने बताया कि धमकी भरा मेल मिलने के तुरंत बाद एहतियातन पूरे परिसर को खाली करा लिया गया। झारखंड आंदोलनकारी और झामुमो नेता प्रोफेसर कालीपत सोरेन ने सरायकेला खरसावां एसपी मनोज स्वर्गियारी से मुलाकात कर रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने राजनगर क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आग्रह किया। साहिबगंज में युद्धकालीन परिस्थितियों से बचाव के लिए जिला प्रशासन, एनसीसी और जैप 9 के जवानों ने संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। अपर समाहर्ता विजय कुमार ने बताया कि नागरिकों को जान माल की रक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए आज रात 8 बजे स्टेशन चौक पर एयर अटैक से बचाव की विशेष मॉक ड्रिल की जाएगी। झारखंड में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा और ऐतिहासिक रथ मेलों को लेकर राज्यभर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज पट खुलने के साथ ही अनुष्ठान शुरू हो गया है, जहां कल शाम भगवान का रथ मौसीवाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेती बाड़ी सुनने वाले तमाम किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में पहले तो हम आपसे बातें करेंगे और उसके बाद आपको एक वार्ता भी सुनाएंगे। तो चलिए पहले हम बातें करते हैं आपसे खेतों को परती न छोड़े किसान, इस विषय को लेकर। खेतों को परती यानी कि खाली न छोड़े हमारे किसान भाई, क्योंकि किसान भाइयों किसानों के लिए खेतों को परती यानी खाली न छोड़ना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि अभ्यास है। खेतों को खाली छोड़ने से न केवल हमारे किसान भाइयों की वार्षिक आय प्रभावित होती है, बल्कि यूँ कहें कि भूमि की उपजाऊ क्षमता और प्राकृतिक नमी भी कम होती है। किसान भाइयों, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के अनुसार किसानों को अपनी भूमि का सतत उपयोग करना चाहिए। इसके लिए फसल चक्र का पालन करना सबसे सही तरीका होता है, सबसे सही होता है। एक फसल की कटाई के तुरंत बाद दूसरी फसल बोने से मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन जो है बना रहता है। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे कि धान या गेहूं के बाद दलहन जैसे चना मटर मूंग की खेती करने से मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे अगली फसल की पैदावार शानदार होती है। लगातार खेती करने से खेत में खरपतवार की भी जो

250 कमी होती है, यानी कि कम उगते हैं और मिट्टी का कटाव जो है रुकता है। हमारे किसान भाई की हरी खाद या जैविक खादों का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि खेतों को खाली न छोड़ने से हमारे किसान भाइयों को साल भर निरंतर जो है सो लगातार उनकी आमदनी होती रहती है हमारे किसान भाइयों को। तो इसलिए आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों, उचित सिंचाई प्रबंधन का उपयोग करके हमारे किसान भाई अपने खेतों को हमेशा हरा भरा और उत्पादक रख सकते हैं, उन्हें रखना भी चाहिए। और अगर इस तरह से आप रखते हैं तो आपको अलग से एक आय का साधन हो जाएगा, और इस तरह से साधन जब हो जाएगा तो आप जो है सो खुशहाल रहेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, ये तो बातें हुई खेतों को परती न छोड़े हमारे किसान भाई। अब हम आगे बातें करते हैं मधुमक्खी पालन पर, यानी कि मधुमक्खी पालन आय का एक उत्तम स्रोत है। जी हाँ किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन एक ऐसा कम खर्चीला उद्यम है जिसका उपयोग छोटे बड़े या भूमिहीन किसान सहित सभी वर्गों के किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, मधुमक्खियों से शहद, मोम, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और विष वगैरह जैसे विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, जिन्हें आप बाजार में बेचकर लाखों रुपए की आय जो है सो कमा सकते हैं। इनसे लाखों रुपए की आय अर्जित की जा सकती है और आप जो है इससे मुनाफा ले सकते हैं अपने घर परिवार के लिए, जिससे आपका घर परिवार भी खुशहाल रहेगा। तो किसान भाइयों, अब चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। फिलहाल उठाते हैं एक आनंद लोकगीत का भरत सिंह भारती की आवाज़ में।

से पूछली जवन कन से पूछी अरे हई नए।

पालन का महत्व। श्रोताओं, सूकर एक ऐसा पशु है जो गंदगी के अंबार में रहते हुए गंदे चीज़ों को अपना आहार बनाते हुए भी स्वस्थ रहता है। इस अवलोकन को विषय वस्तु बनाकर वैज्ञानिकों के शोध से यह स्पष्ट तौर पर उभर कर आया है कि सूकरों में बीमारी से लड़ने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। सूकर के इसी महत्व की वजह से इसे रक्त से सीरम निकालकर एड्स जैसी जानलेवा बीमारी के बचाव हेतु प्रतिरोधक औषधि बनाने का कार्य किया जा रहा है। कई जीवन रक्षक औषधियाँ भी सूकर से बनाई जा रही हैं, जैसे इंसुलिन, एड्रेनालिन, गोनेडोट्रोपिन आदि। इसलिए बड़ी दवा कंपनियों में भी सूकर की मांग बढ़ी है। श्रोताओं, सूकर से अल्प समय में बहुत अधिक मांस प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा पशु है जो वर्ष में दो बार बच्चा देती है एवं एक साथ कई बच्चे को जन्म देती है। साथ ही इसका शारीरिक वृद्धि दर भी अधिक है। सूकर मांस का पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होना, सूकर मांस खाने वालों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होना, सूकर मांस का उपभोक्ता बाजार में मांग के अनुपात में आपूर्ति का कम होना, झारखंड वासियों में परंपरागत रूप से सूकर पालन करना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आय का एक साधन होना, मिश्रित खेती के अनुकूल सूकर का निवास स्थान तालाब के बांध पर बनाया जा सकता है। सूकर पालन की आवश्यकता क्यों? श्रोताओं, हमारे देश में सूकरों की उत्पादन क्षमता विश्व के अन्य विकसित देशों से काफ़ी कम है, जिसका मुख्य कारण अच्छी नस्ल के सूकर का न होना, वैज्ञानिक विधि से पालन करने की अज्ञानता, अच्छी नस्ल के पशुओं को खरीदने, उसके आहार, आवास एवं प्रबंधन पर खर्च करने हेतु धन का अभाव। सूकर पालन ही एक ऐसा व्यवसाय है श्रोताओं, जो हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग का रूप ले सकता है। ज़रूरत है उन्नत नस्ल के सूकरों की आपूर्ति कर सरकार एवं बैंकों द्वारा आर्थिक सहयोग, खाने के खर्च का कम करना एवं प्रशिक्षण द्वारा आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी लेना। सूकर एक अत्यंत उपयोगी पशु है, जिसकी आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में है, जैसे खाद्यान्न आपूर्ति एवं औषधि निर्माण आदि। बेकार खाद्य पदार्थ जो अन्य पशु उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे होटल का या मेस की जूठन सामग्री, खाद्य पदार्थों से निकले बेकार पदार्थ, लोकल शराब से बचे अवशेष का समुचित उपयोग कर सूकर उनकी खपत करने में सहयोग करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या को आहार की

आपूर्ति में सहयोग कर कृषि क्षेत्र में अनाज उत्पादन पर दबाव को कम करता है। अब आइए आपको बताएं सूकर पालन में खर्च एवं आमदनी। जी हां श्रोताओं, सूकर पालक नई प्रजाति TND के एक सूकरी को पालकर एवं उसके बच्चों की बिक्री कर प्रतिवर्ष एक सूकरी से औसतन 15,000 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक कृषक बहुत ही आसानी से अकेले 15 सूकरियों को पाल सकता है, जो प्रत्येक माह की मजदूरी से बहुत अधिक है। ग्रामीण मजदूरों को प्रतिदिन काम मिलना संभव नहीं है, जिसके चलते बहुत से ग्रामीणों को दूसरी जगहों पर पलायन करना पड़ता है। ऐसे में अपने गांव में रहते हुए किसान प्रतिमाह 2 से 3 हज़ार रुपये की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवसाय से वे सालों भर कार्यरत भी रहेंगे और इसका समुचित लाभ भी पा सकते हैं। सूकर पालन से लाभ। जी हां श्रोताओं, सूकर पालन कम लागत और पूंजी से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि सूकर आवास की व्यवस्था एवं प्रबंधन का खर्च अन्य पशुओं की तुलना में काफ़ी कम है। सूकर पालन से बहुत कम समय में आमदनी होने लगती है, क्योंकि मादा सूकर 6 से 8 माह की उम्र में ही वयस्क हो जाती है और एक समय में एक साथ 8 से 12 बच्चों को जन्म देती है। 2 से 3 माह की उम्र में सूकर के बच्चों को बेचकर धन लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक सूकर बच्चे से हमें 15 से 2 हज़ार रुपये का लाभ मिल सकता है। सूकरों के प्रजनन में श्रोताओं अल्प समय का अंतराल रहता है, जिस कारण एक मादा सूकरी वर्ष में 2 बार बच्चों को जन्म देती है। इस कारण हमें एक वर्ष में 16 से 24 बच्चे प्राप्त होते हैं, जो वयस्क होने पर प्रजनन कार्य हेतु उपयोग में लाए जाते हैं या स्थानीय बाजारों में बेच दिए जाते हैं। श्रोताओं, नर सूकर 6 से 8 माह की उम्र में औसतन 70 से 80 किलोग्राम के हो जाते हैं। मांस के लिए तैयार प्रत्येक नर सूकर को स्थानीय बाज़ार में बेचने से 6,000 से 7,000 रुपये तक का शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है। श्रोताओं, सूकर की शारीरिक वृद्धि दर भी ज़्यादा होती है। एक सूकर प्रतिदिन 0.5 किलोग्राम के हिसाब के वजन से वृद्धि करता है, इसलिए सूकर ही एकमात्र ऐसा पशु है जिसे बहुत ही कम समय में सस्ता और पशुजनित मांस प्राप्त होता है। सूकर में खाद्य परिवर्तन की क्षमता अत्यधिक होती है, जहां अन्य पशुओं को 1 किलोग्राम मांस बनाने के लिए 10 से 12 किलोग्राम भोजन देना पड़ता है, वहीं सूकरों को मात्र 2.5 किलो से 3 किलोग्राम भोजन पर्याप्त होता है। सूकर मांस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन पाए जाने के कारण यह पौष्टिक भी होता है। आहार सस्ता होने की वजह से गरीब एवं निर्धन वर्ग को कुपोषण से बचाव करता है। सूकर का मांस स्वादिष्ट होने के कारण इससे कई पदार्थ अथवा व्यंजन बनते हैं, जिसकी स्थानीय एवं राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक मांग है। मांग के अनुपात में मांस की आपूर्ति नहीं के बराबर है, इसलिए इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का भविष्य अच्छा है। सूकरों में मांस प्राप्ति की मात्रा शरीर की वजन की 70 से 80% होती है, जो कि अन्य पशुओं की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। श्रोताओं, सूकर बेकार खाद्य पदार्थों जैसे होटल या मेस की जूठन सामग्री, खाद्य पदार्थों के कारखाने से निकले पदार्थ, हड़िया बनाने के बाद बेकार बची सामग्री, जंगली फल, घास, खराब दाना इत्यादि का उपयोग कर पौष्टिक मांस में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। श्रोताओं, अन्य व्यवसाय जैसे दूध और अंडा उत्पादन की वजह तरह ही पूरे दिन सूकर पालन में देखभाल की जरूरत नहीं रहती है। एक विकसित बड़ा सूकर साल भर में करीब 1 टन खाद दे सकता है। स्थानीय मूल्य के हिसाब से खाद बेचकर लाभ कमाया जा सकता है। सूकर खाद का उपयोग खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी आप कर सकते हैं। मछली पालन वाले तालाब में सूकर का खाद का उपयोग करने से

0: छलियों में भी तेजी से वृद्धि होती है। सुगर के बच्चों की खरीदारी आप कहाँ से करेंगे? श्रोताओं, एक लाभकारी परियोजना के लिए एक नर सुगर बच्चा के साथ 10 मादा सुकरी का योजना आप बना सकते हैं। इनकी खरीदारी करते समय इनके माता पिता की प्रजनन क्षमता, बच्चों की संख्या, मांस की गुणवत्ता, बीमारियों से बचने की क्षमता एवं वजन में वृद्धि दर की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुकर बच्चा सरकारी दर पर राजकीय सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र कांकेर रांची 6 से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, अब आइए आपको बता दें सुकर की उन्नत नस्लें। हमारे देश भारत में मिलने वाले सुकर प्रायः देशी नस्ल के सुकर होते हैं। ये आकार में छोटे, वजन में कम तथा अपेक्षाकृत कम बच्चे देते हैं। खाना के अनुपात में इनके वजन में वृद्धि नहीं होती है। इन सुकरों से मांस का उत्पादन भी बहुत कम होता है तथा ये बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त भी होते हैं। ऐसे सुकर व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभदायक नहीं होते हैं। संपूर्ण विश्व में लगभग 60 नस्ल के सुकर पाए जाते हैं, लेकिन हमारे देश भारत की जलवायु तथा वातावरण में व्यावसायिक रूप से 6 नस्लों के सुकर जैसे लार्ज हाइट, यॉर्कशायर, टैमवर्थ, हेम्पशायर, रशियन चरमुखा, TND और लैंडरेस ही लाभकारी साबित हो रहे हैं। इस तरह से किसान भाइयों, यदि आप खेती किसानी के साथ ही साथ अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने हेतु कुछ पशुपालन जैसे मुर्गी पालन, बत्तख पालन, सुकर पालन, गाय पालन, भैंस पालन इत्यादि का व्यवसाय अपनाकर अपने जीविका आसानी से चला सकते हैं और अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करके अपने एवं अपने परिवार के अन्य जरूरी चीज़ों का पोषण कर सकते हैं। इससे आपको घर के उपजे हुए अनाज औने पौने दाम में नहीं बेचने पड़ेंगे और आप अपने इच्छा के अनुसार अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा एवं अन्य तरह के जरूरी के काम निपटा सकते हैं और आपका समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, अभी आपने सुना सुकर पालन, इस विषय पर वार्ता सत्येंद्र प्रसाद सिंह की। और अब आइए हम आपसे बातें करते हैं खेतों में फास्फोरस जिप्सम का प्रयोग, इस विषय पर। जी हाँ किसान भाइयों, किसान भाई फसल उगाने के लिए सामान्यतः नत्रजन, फास्फोरस और पोटेशियम का उपयोग करते हैं। कैल्शियम और सल्फर का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे कैल्शियम एवं सल्फर की कमी की समस्या धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर रही है। तो इनकी कमी सघन खेती वाली भूमि, हल्की भूमि और अपक्षरणीय भूमि में अधिक होती है। कैल्शियम और सल्फर संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के मुख्य अवयवों में से है, जिनकी पूर्ति के अनेक स्रोत हैं। इनके से जिप्सम एक जैसे कि महत्वपूर्ण उर्वरक है। रासायनिक रूप से जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है, जिसे 23.3% कैल्शियम और 18.5% सल्फर होता है। जब यह पानी में किसान भाई घुलता है तो कैल्शियम और सल्फेट आयन प्रदान करता है और तुलनात्मक रूप से कुछ अधिक घनात्मक होने के कारण कैल्शियम के आयन मृदा में विद्यमान विनिमय सोडियम के आयनों को हटाकर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आयनों का मटियार कणों पर यह परिवर्तन मृदा की रासायनिक और भौतिक अवस्था में सुधार कर देता है और मृदा फसल उत्पादन के लिए सही हो जाती है, उपयुक्त हो जाती है। साथ ही जिप्सम भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों का अनुपात बनाने में सहायक करता है। हम आपको बता दें किसान भाइयों कि आखिर ऐसा मन में

है कि जिप्सम क्यों डालें, तो हम आपको बता दें किसान भाइयों कि कैल्शियम और सल्फर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए हमें इसे डालना चाहिए। साथ ही फसलों में जड़ों की सामान्य वृद्धि और विकास में सहायता देता है ये, तो इसके चलते भी हमें इसे डालना चाहिए। और जिप्सम का उपयोग फसल संरक्षण में भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें सल्फर उचित मात्रा में होता है। तिलहनी फसलों में जिप्सम डालने से सल्फर की पूर्ति होती है जो बीज उत्पादन और पौधे व तेल से आने वाली विशेष गंध के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है। जिप्सम देने से मृदा में पोषक तत्व सामान्यतः फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फर की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है। जिप्सम कैल्शियम का एक मुख्य स्रोत है जो कार्बनिक पदार्थों को मृदा के कणों से बांधता है, जिसमें मृदा कणों में स्थिरता प्रदान होती है और मृदा में वायु का आवागमन सुगम बना रहता है। किसान भाइयों, जिप्सम मृदा में कठोर परत बनने को रोकता है और मृदा में जल प्रवेश बढ़ता है। कैल्शियम की कमी के कारण ऊपरी बढ़ती पत्तियों के अग्रभाग का सफ़ेद होना, लिपटना और संकुचित होना होता है। अत्यधिक कमी की स्थिति में पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है तथा वर्धन शिखा भी सूख जाती है, जो कि जिप्सम डालने से पूरी की जा सकती है। किसान भाइयों, जिप्सम एक अच्छा भू सुधारक है, क्षारीय भूमि को सुधारने का कार्य करता है। साथ ही जिप्सम अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम के हानिकारक प्रभाव को कम करता है। जी हाँ किसान भाइयों, जिप्सम का उपयोग सच पूछिए तो फसलों में अधिक उपज और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, अब रही बातें कि भाई इसको हम डालें कब और कैसे डालें, तो हम आपको बता दें कि जिप्सम को मृदा में फसलों की बुआई से पहले डालते हैं। जिप्सम डालने से पहले खेत को पूरे रूप से तैयार करके, यानी कि 2-3 गहरी जुताई और पाटा लगाकर जिप्सम का बुरकाव करें और इसके बाद एक हल्की जुताई करके जिप्सम को मिट्टी में मिला दें। सामान्यतः धान्य फसलें 10 से 20 किलोग्राम कैल्शियम प्रति हेक्टेयर एवं दलहनी फसलें 15 किलोग्राम कैल्शियम प्रति हेक्टेयर भूमि से लेती हैं और सामान्य फसल पद्धति 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कैल्शियम भूमि से लेती हैं। जिप्सम को क्षारीय भूमि में मिलाने के लिए आवश्यक मात्रा, क्षारीय भूमि की विकृति की सीमा, वांछित सुधार की सीमा और भू सुधार के बाद उगाई जाने वाली फसलों पर निर्भर करती है। कितना सुधारक डालना है इसकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले कितना जिप्सम डालने की आवश्यकता होगी उसका निर्धारण किया जाता है। इसको जिप्सम की आवश्यकता यानी जिप्सम का रिक्वायरमेंट या GR कहा जाता है। जिप्सम की उचित मात्रा जानने के लिए जिप्सम की विभिन्न मात्राओं को लेकर प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों से यह प्रमाणित होता है कि धान की फसल के लिए जिप्सम की कुल मात्रा 1/4 भाग काफ़ी है, जबकि गेहूं की फसल के लिए यह कुल मात्रा से आधा पर्याप्त है और मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले क्षारीय मृदाओं के लिए लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, क्षारीय भूमि सुधार के कामों को शुरू करने का सबसे सही समय गर्मी के महीनों में होता है। जिप्सम फैलाने के तुरंत बाद कल्टीवेटर या देशी हल से भूमि की ऊपरी 8 से 12 सेंटीमीटर की सतह में मिलाकर खेतों को समतल करके मेड़बंदी करना जरूरी है ताकि खेत में पानी सभी जगह बराबर लग सके। जिप्सम को मृदा में अधिक गहराई तक नहीं मिलना चाहिए। धान की फसल में जिप्सम की आवश्यक मात्रा फसल लगने से 10-15 दिन पहले डालना चाहिए। पहले 4-5 सेंटीमीटर हल्का पानी लगाना चाहिए। जब पानी थोड़ा सूख जाए तो पुनः फिर से उसे 12 से 15 सेंटीमीटर पानी भरकर रिसाव क्रिया संपन्न करनी चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, क्षारीय भूमि में जिप्सम को बार बार मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह पाया गया है कि यदि धान की फसल को क्षारीय भूमि में लगातार उगाते रहें तो भूमि के क्षारीयपन में कमी आती है। खेतों को कभी लंबी अवधि के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये तो बातें हुई जिप्सम को कब और कैसे डालें। तो किसान भाइयों, अब हम इसी बातों के साथ आपसे खेती बाड़ी कार्यक्रम से लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।

संबोधित कार्यक्रम खेतीबारी आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण सभा कार्यक्रम। ग्रामीण सभा सुनने वाले तमाम किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में हम आपसे बातें करेंगे और उसके बाद आपको एक भेंटवार्ता भी सुनाएंगे। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, कृषि विशेषज्ञ जो कि हैं, और भेंटवार्ता का विषय होगा सीमित जल में मोटे अनाजों की खेती, और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। तो चलिए फिलहाल हम आपसे बातें करते हैं कुटीर उद्योग पर। जी हाँ किसान भाइयों एवं बहनों, कुटीर उद्योग में महिलाओं का योगदान, इस विषय को लेकर हम आपके पास आए हुए हैं। इस विषय को लेकर आपसे हम बातें करेंगे अभी। तो किसान भाइयों, कुटीर उद्योग, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कुटीर उद्योग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और महिलाओं का सशक्तिकरण में इनका योगदान अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। कम लागत, घरेलू संसाधनों और आसान प्रशिक्षण से ये उद्योग ग्रामीण शहरी महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सम्मान और घर परिवार में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, इस के द्वारा रोजगार और आय का सृजन जो है महिलाएं जो है करती हैं। जैसे कि घरेलू, छोटे घरेलू उद्योग जैसे सिलाई कढ़ाई, हथकरघा, हस्तशिल्प, मोमबत्ती, अगरबत्ती और पापड़ अचार बनाने के काम में महिलाओं को भारी भागीदारी है, और इससे महिलाएं जो है सो इस तरह से करके उसमें अच्छा योगदान देती हैं। दूसरी बात, किसान भाइयों की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास इससे बढ़ता है, यानी कि कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी आय अर्जित करने में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, मजबूत होती हैं। साथ ही इन उद्योगों में काम करने से महिलाओं को विपणन और उत्पादन में से जुड़े हुए नए कौशल सीखने का अवसर मिलता है। किसान भाइयों, इसके साथ ही जो है सो ये समूह जो है ग्रामीण महिलाओं के विकास में योगदान देते ही है, और इसके साथ ही आर्थिक स्वावलंबन और रोजगार भी इससे महिलाओं में होता है। जैसे कि समूह जो है महिलाओं को कृषि, पशुपालन, सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण जैसे छोटे उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता भी देते हैं। सरकार द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर महिलाओं का कौशल विकास किया जाता है, जिससे उनके उत्पादन, जिनके उत्पाद जो है बाजार में आसानी से बिक सके। साथ ही लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए विशेष सहायता और ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, वे बैंकिंग सेवाओं में जुड़े रहते हैं और समाज में उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इस तरह से किसान भाइयों, कुटीर उद्योग में महिलाओं का योगदान जो है सो बहुत ही सराहनीय होता है। और रही बात अब आगे हम

बाद फिर हम आपसे बातें करेंगे स्वयं सहायता समूह से ग्रामीण महिलाओं का विकास। तो सबसे पहले अब हम आपसे बातें करते हैं कुटीर उद्योग के में महिलाओं की भागीदारी के या योगदान के बाद मशरूम की खेती पर। जी हाँ किसान भाइयों एवं बहनों, सामान्य रूप से छत्तेदार खाद्य फफूंदी यानी कवक को मशरूम या खुम्बी कहते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें और प्रायः मशरूम में ताजे वजन के आधार पर 89-91% पानी और जो है होता है, और यह विटामिनों जैसे B1, B2, C और D एवं खनिज लवणों से भरा होता है। यह कई बीमारियों जैसे बहुमूत्र खून की कमी, बेरी बेरी, कैंसर, खांसी, मिर्गी, दिल की बीमारी में लाभदायक होता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों हम आपको बता दें कि इसकी खेती कृषि वानिकी एवं पशु व्यवसाय संबंधी अवशेषों पर तथा उत्पादन के पश्चात बचे अवशेषों को खाद के रूप में उपयोग भर कर दिया जाता है। उत्पादन हेतु बेकार एवं बंजर भूमि का समुचित उपयोग मशरूम गृहों का निर्माण करके किया जा सकता है। मशरूम की खेती किसानों और बेरोजगार युवकों के लिए एक सार्थक आय का माध्यम हो सकता है। किसान भाइयों, इसके लिए खेती का स्थान

जो है सो साधारण हवादार कमरा, ग्रीन हाउस, गैरेज, बंद बरामदा, पॉलीथीन के घर या छपरों जैसे या कच्चे घरों में इसकी खेती की जाती है। और बीज की रही बात तो हम आपको बता दें कि अनाज के दानों पर बने उच्च गुण वाले प्रमाणित बीज का ही व्यवहार करें।

व्यावसायिक खेती के लिए जो है मशरूम की कुछ जातियाँ एवं प्रजातियाँ प्रमुख है, जैसे कि शीतकालीन मशरूम के लिए एगिकेरिस या सफ़ेद बटन मशरूम होता है, तो समशीतोष्णकालीन मशरूम के लिए ओयस्टर यानी ढिंगरी या क्लूरोट्स मशरूम। ग्रीष्मकालीन मशरूम की बात करें तो वॉलवेरियल या धान पुआल मशरूम सही होता है। तो सफ़ेद दुधिया मशरूम जो है कृत्रिम मशरूम घर होने पर किसी भी प्रजाति के मशरूम की खेती किसी भी समय में की जा सकती है, और इसके लिए हमारे किसान एवं उत्पादकों के लिए सामान्य कमरे के तापक्रम जो झारखंड के किसान जो हमारे यहाँ के किसान हैं पर ढींगरी यानी प्लूरोट्स की खेती वर्ष के अधिकांश 9 से 10 माह समय में की जा सकती है। इसी तरह एगिरिकस या सफ़ेद बटन मशरूम की खेती जो है सो इसके खेती के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता है। सफ़ेद बटन मशरूम की मौसमी खेती करने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय सही माना जाता है। इस दौरान मशरूम की 2 फसलें ली जाती हैं, और बटन मशरूम की खेती के लिए अनुकूल तापमान 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड और सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 90% और शुद्ध हवा का संचालन होनी चाहिए। सफ़ेद बटन खुम्बी अगेर किस या बायस्पोरस की खेती की प्रक्रिया जटिल है, और सफल उत्पादन के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसकी वृद्धि के लिए 2 भिन्न भिन्न तापक्रम की आवश्यकता होती है। बटन मशरूम की सफल खेती के प्रशिक्षण के लिए भी आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, यानी कि कृषि विश्वविद्यालय से। और साथ ही हम आपको बता दें किसान भाइयों कि अब सफ़ेद दुधिया मशरूम की बारी आती है तो उसकी खेती कैसे की जा सकती है, तो इसके लिए आपको ग्रीष्मकालीन सफ़ेद दुधिया मशरूम यानी दूध का छत्ता की खेती मार्च से सितंबर महीने तक 25 से 38 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर की जा सकती है। इसमें 17.69% प्रोटीन, 4.1% वसा, 3.4% रेशेदार तत्व और 64.26% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे गेहूं अथवा धान के पुआल की कुट्टी पर उगाया जा सकता है। इसकी खेती में गेहूं अथवा धान के पुआल की कुट्टी को उबाले पानी में 2-3 घंटों तक भिगोकर अथवा रसायनों यानी कि 100 लीटर पानी में 10 ग्राम वेबिस्टिन फफूंदीनाशी और 100 मिलीलीटर फार्मलिन में 12 घंटों तक डुबोकर द्वारा विसंक्रमित करें, और पॉलीथीन बैग में विसंक्रमित कुट्टी की 10 सेंटीमीटर ऊंची पहली तह लगाएं। इसके ऊपर स्पॉन यानी कि बीज को भी घेर दें। फिर पॉलीथीन बैग में वायु संचार के लिए 10 से 15 छिद्र बना दें। बीजिंग पॉलीथीन बैग को एक अंधेरे कमरे में रख दें। 18 से 20 दिनों तक 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 80 से 90% नमी बनाए रखें। 18 से 20 दिनों में कवक जाल की विधि पूर्ण हो जाती है, और कवक जाल की विधि पूर्ण होने पर पॉलीथीन बैग को काट कर अलग कर दें। तो ये तो बातें हुई सफ़ेद दुधिया मशरूम की खेती की विधि के बारे में। अब आपको हम बताते हैं गुलाबी मशरूम के बारे में यानी प्लूरोट्स यूज की उत्पाद की विधि के बारे में। किसान भाइयों, यह बटन मशरूम जो है बटन मशरूम से भिन्न भिन्न और इसके उत्पाद विभिन्न विधि ऑयस्टर मशरूम के समान होती है। कच्चा होने पर मशरूम का रंग काफ़ी गुलाबी होता है, पकाए जाने पर यह नारंगी ब्राउन रंग में बदल जाता है। अच्छे होटलों और रेस्तरा में इसकी काफ़ी मांग है। इसके उत्पाद में पैकिंग का विशेष ध्यान देना होता है। छत्ता टूट जाने से बाजार मूल्य काफ़ी कम मिलता है। इसका आकार 2 से 5 सेंटीमीटर तक होता है। बसंत मौसम की समाप्ति के बाद इसका उत्पादन शुरू किया जा सकता है। आप उस समय इसकी खेती कर सकते हैं। अब रही बात धान पुआल मशरूम की खेती की, तो बता दें आपको कि धान पुआल मशरूम की खेती ग्रीष्मकालीन में होती है। इसे मार्च से सितंबर महीने तक 26 से 42 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किया जाता है। अपेक्षाकृत कम लागत और सरल तकनीक से इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, इस प्रजाति की खेती में

इसलिए छायादार स्थान की खिड़कियां पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं में होना बेहतर होगा। घने पेड़ के नीचे बरामदे में सतह से 1 फीट ऊंची चौकोर बांस के शया में आप इसे कर सकते हैं। और इसके उत्पादन के लिए सर्वप्रथम नए और स्वास्थ्य पुआल का 2 फीट लंबे 1 किलोग्राम वजन का गट्ठर बांधें और इस तरह 35 गट्ठर बना लें। इसे पानी के बड़े ड्रम या हौज में 12 घंटे तक भिंगोएं और इसके बाद इसे उबालकर या फफूंदी नाशी से उपचारित कर लें। पुआल के गट्ठर में 80-85% तक नमी बनाए रखना चाहिए। फिर स्पॉन यानी कि बीज की तैयारी के लिए एक शय के लिए किसी साफ सुथरे बर्तन में स्पॉन यानी कि बीज को निकाल कर छोटे टुकड़े में तोड़ लेते हैं। इसे 4 भागों में बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसे बिजाई के लिए उपचारित पुआल के गट्ठरों को फ्रेम पर इस प्रकार सजाएं कि बंधे सिरे जो हैं दोनों किनारों पर और खुले और सिरे वाले सया के बीच में सटे हुए हो। यह सया की पहली तह है। इस पर स्पॉन यानी कि बीज के छोटे छोटे टुकड़े को 10 सेंटीमीटर चारों किनारे छोड़ते हुए अंदर की तरफ डाल दें। स्पॉन छींटने के यानी कि बीज छींटने के बाद उस पर बेसन या हल्का भुरकाव कर दें। इसके बाद गट्ठरों की दूसरी तरह लगाएं। ध्यान रहे कि पहली तह की दूसरी दिशा यानी पहली तह उत्तर दक्षिण है तो दूसरी तह पूरा पश्चिम की ओर लगाएं। इस प्रक्रिया को तीसरी तह तक दोहराएं। चौथी तह पर स्पॉन को पूर्ण रूप से छींट दें और शेष गट्ठर के पुआल को खोलकर उसके ऊपर से ढक देते हैं। फ्रेम पर पूरे तैयार पुआल के शया को पॉलीथीन की चादर से चारों तरफ से कसकर ढक देते हैं जिससे शया के में वो अंदर की नमी और तापमान बनी रहती है। 3 से 4 दिनों के बाद वायु संचार हेतु आधा से 1 घंटा तक पॉलीथीन चादर को ढीला छोड़ते हैं। 4 से 6 दिनों के बाद फिर इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं और 10वें दिन जी हाँ किसान भाइयों 10वें दिन पॉलीथीन चादर को शया के चारों तरफ से ओर से खोल देते हैं। इसमें छोटे छोटे मशरूम हेड दिखाई देने लगेंगे जो दूसरे दिन अंडेनुमा गोल दिखने लगेंगे और तीसरे दिन अंडेनुमा मशरूम हेड छाते के आकार में खुल जाएंगे। दूसरे दिन का मशरूम हेड खाने में अति स्वादिष्ट होता है, बहुत ही

0: बताते हैं और सुनते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा से ली गई भेंट वार्ता। विषय है सीमित जल में मोटे अनाजों की खेती और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे, चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन बालकों बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे मोटे अनाजों की खेती की और कम जल में हम मोटे अनाजों की खेती कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी आज हम साझा करेंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आज कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि मोटे अनाजों में कौन कौन सी फसलें आती हैं।
2: किसान भाई मोटे अनाज से परिचित हैं, पहले मोटे अनाज की खेती करते थे। आजकल मोटे अनाज गरीबों की अनाज कही जाती थी पहले, लेकिन आज जो है उस मोटे अनाज का परिभाषा ही चेंज कर दिया गया है और मोटे अनाज अब अमीरों की अनाज बन गई है और उसका नामकरण भी अनेकों नाम से भी जानते हैं उसको, अभी सुपर फूड के नाम से जानते हैं और आजकल उसको श्री अन्न का भी नाम दिया गया है। तो मोटे अनाज से और इससे सभी लोग परिचित ही हैं। खासकर मोटे अनाज में लोग जो कहते हैं कि मोटे अनाज में क्या ज्वार बाजरा और रागी को रखते हैं, तो ज्वार बाजरा रागी मोटे अनाज में तो लोग जानते ही थे, लेकिन इसमें मोटे अनाज में और अनाज जैसे कोदो सामा मक्का इस सारे को ही मोटे अनाज में रखा जाता है।
1: अच्छा, तो कम पानी की बात जहाँ तक आती है, लोगों का कहना होता है, कृषि वैज्ञानिक लोग बोलते हैं और हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई बोलते हैं कि इसे असिंचित अवस्था में भी हम खेती कर सकते हैं।
2: जी हाँ, खासकर आजकल जो खेती मौसम परिवर्तित हो रही है, मौसम परिवर्तन से काफ़ी जो है बारिश के पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, बारिश कभी अनरेगुलर हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो इस पर भी इस मोटे अनाज पर काफ़ी कम प्रभाव पड़ता है। मोटे अनाज में पानी की भी काफ़ी कम मात्रा में उपयोग होता जरूरत पड़ती है, जैसे कभी कभी जैसे बारिश होती है इसका जिस प्लामू क्षेत्र में पिछले वर्ष जानिए कि 600-700 मिलीमीटर बारिश हुई है, उसमें जो है कि आप धान की खेती ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मोटे अनाज की खेती अच्छी तरह से हो सकती है क्योंकि मोटे अनाज में पानी की बहुत कम मात्रा जरूरत होती है। आप ये समझिए कि अगर मान लिया कि 1 kg धान के उत्पादन करना है तो उसमें कम से कम आपको 7000 से 8000 मिलीलीटर पानी की जरूरत पड़ती है।
1: अच्छा,
2: 7000 से 8000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है 1 kg धान के उत्पादन के लिए। लेकिन अगर मोटे अनाज की खेती करते हैं तो 1 kg अगर उत्पादन करने के लिए उसमें 200 लीटर ही पानी की जरूरत पड़ती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें कम पानी की जरूरत पड़ती है, बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। अगर साल में 200 मिलीमीटर भी बारिश होती है बरसात के सीजन में, तो 200 मिलीमीटर बारिश में भी मोटे अनाज की खेती आसानी से की जा सकती है। तो ये पानी की समस्या इसमें नहीं रहती है, बहुत कम पानी में किया जा सकता है खेती। और खासकर पानी के साथ साथ जो है इसके आयरेगुलर जो बारिश जो होती है इस पर भी इसका प्रभाव कम बहुत कम पड़ता है, है ना। दूसरी बात कि इसमें जो न्यूट्रिएंट आप खाद वगैरह जो डालते हैं वो भी बहुत कम जरूरत पड़ती है मोटे अनाज के लिए। तो मोटे अनाज कहें कि खासकर जो जहाँ पानी की कमी है किसानों के लिए भी ये बहुत कम किफ़ायती में ये मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं।
1: और इसकी संभावनाएँ कहाँ कहाँ बनती हैं अमूमन खेती की?
2: हाँ, ये इसकी खेती की संभावना सभी जगह कर सकते हैं, खासकर वहाँ जहाँ की यहाँ पानी के निकास ज़्यादा हो।
1: अच्छा,
2: पानी के जहाँ पानी अगर जमा हो तो वहाँ पर इसकी खेती थोड़ा सा करने में दिक्कत हो सकती है, है ना। जहाँ पानी के निकास हो तो वहाँ की खेती आसानी से की जा सकती है, अनेकों तरह से जा सकते हैं, जैसे आप इसको छीटा विधि से भी वो करके कर सकते हैं, बिचड़ा डाल करके रोपाई करके भी कर सकते हैं, जैसे रागी की खेती करना है, मड़ुआ की रागी जिसको मड़ुआ लोग कहते हैं, मड़ुआ खेती पहले करते थे लोग, लेकिन अब कुछ दिन से इसको मड़ुआ खेती के छोड़ दिए हैं, नहीं कर पाते हैं। तो मड़ुआ की खेती के लिए पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसको आप धान से पहले जो प्री मानसून कहते हैं, जिसमें प्री मानसून के सीजन में भी इसको लगा सकते हैं क्योंकि पानी की बहुत कम मात्रा इसमें जरूरत पड़ती है। जिसमें कम बारिश हो रही है, जिसमें बारिश आई है उसमें आप जून के मिडिल में उसको लगाइए, है ना। तो जून के मिडिल में लगा करके भी इससे आप जो है कम बारिश में
1: उत्पादन
2: ले सकते हैं। और आजकल तो जो मोटे अनाज काफ़ी डिमांड भी हो गई है, है ना, इसका जो आप ये देखिए कि प्राइस भी इसका आपको धान और गेहूं से ज़्यादा है। गवर्नमेंट भी इस पर ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है, हो गई है कि मोटे अनाज से खा करके लोग निरोगी भी हो सकते हैं, तो ये साबित हो गई है रिसर्च से। तो और मोटे अनाज पर जोर दिया जा रहा, गवर्नमेंट भी जोर दे रही है, इसका MSP जो है इसको भी अच्छे धान और गेहूं से अच्छा MSP इसका गवर्नमेंट दे रही है, तो किसान के लिए फ़ायदेमंद की खेती हो सकती है, काफ़ी फायदेमंद की हो।
1: अब प्रश्न उठता है खाद उर्वरक वगैरह का, तो इसमें खाद उर्वरक का इस्तेमाल कहाँ तक हमारे किसान भाई करते हैं?
2: इसका खाद उर्वरक की मात्रा भी बहुत कम लगती है, इसमें अगर कंपोस्ट डालते हैं खाद तो करीब 1 हेक्टेयर में 5 टन की जरूरत पड़ती है। कंपोस्ट डालने से इसका अच्छा उत्पादन भी होता है। केमिकल फर्टिलाइजर जो है इसमें अगर भी डालते हैं तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर में भी इसमें बहुत कम मात्रा की जरूरत पड़ती है, धान और गेहूँ की तुलना में इसमें काफ़ी कम की जरूरत पड़ती है।
1: अच्छा, अगर हमारे किसान भाई मोटे अनाजों की खेती कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो अभी खरीफ के लिए वो किसकी तैयारी करेंगे?
2: अभी खरीफ में अभी का सीजन जो है रागी

0: जो है सावा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है खेती
1: हम्म,
0: में, 4-5 महीना का खेती होती है। रागी है उसका कम टाइम है, 3 महीने की खेती, 3 महीने में 90 से 100 दिन से 110 दिन में तैयार हो जाती है।
1: तो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या तैयारी कर सकते हैं अभी सावा के लिए?
0: सावा के लिए अभी इसका बिचड़ा के लिए तैयारी कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: बिचड़ा डालने के लिए अभी बिचड़ा में थोड़ा सा देर भी कर सकते हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद ही बिचड़ा, इसको धान जैसे धान लगाते हैं उस समय इसको कोदो की खेती की जाती है।
1: की जाती है, लेकिन कहाँ इसका लगाएंगे? इसका लगाने के लिए उन्नत जमीन कौन सी है?
0: जमीन वही जमीन इसके लिए कोई भी मिलेट्स के लिए कोई जरूरी नहीं है उपजाऊ मिट्टी, ये बंजर भूमि में ही अच्छी पैदावार देती है, तो उपजाऊ मिट्टी की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, है ना। बंजर भूमि में इसकी खेती अच्छा आसानी से की जा सकती है,
1: आसानी से की जा सकती है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई लोग अगर मोटे अनाजों की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से अभी जिस तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं, मिलेट वर्ष घोषित किया जा चुका है 2023 को, इसमें काफ़ी संभावनाएं नज़र आ रही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और कम पूंजी में ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी हाँ, काफ़ी अच्छा इससे पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले मिलेट, पहले लोग मोटे अनाज की खेती अच्छी तरह करते थे, लेकिन जो हरित क्रांति का दौर आया 1970 में हरित क्रांति के दौर के में जो है गेहूं और चावल पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और इसका इसका जो है प्रोडक्शन को काफ़ी इंक्रीज किया, क्योंकि उसमें जरूरी था कि फूड सिक्योरिटी की जरूरत थी, क्योंकि सभी लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आजकल जो है अभी फूड सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, अब न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की जरूरत है, तो मोटे अनाज का उत्पादन करके आप न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पा सकते हैं, क्योंकि सारे मोटे अनाज में काफ़ी न्यूट्रियस है, इसलिए इसको सुपर फूड भी कहा जाता है।
1: तो हमारे किसान भाई आप निश्चित रूप से ये एकदम तय कर लें आप कि इस बार खरीफ में मोटे अनाजों की खेती हमें करनी है, चाहे सावा हो, कोदो हो, ज्वार बाजरा की बात ही क्यों ना हो, और रागी की बात क्यों ना हो, हमें मोटे अनाज की फसल अवश्य लेनी है और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए कुपोषण की जो क्षमता हमारे देश में है उसे दूर भी करना है। तो आप थे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी, आप कार्यक्रम से जुड़े और मोटे अनाजों की खेती से संबंधित जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी। हाँ किसान भाइयों, अभी आपने सुना कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा से ली गई पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, विषय था सीमित जल में मोटे अनाजों की खेती और इनसे बातचीत कर रहे थे इस संबंध में संतोष कुमार। और वाइए जैसा कि हमने कहा था कि आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, तो अब बारी है स्वयं सहायता समूह से ग्रामीण महिलाओं का विकास इस विषय को लेकर। जी हाँ किसान भाइयों बहनों, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम है। हम आपको बता दें किसान भाइयों की यह समूह 10 से 20 महिलाओं का एक स्वैच्छिक संगठन होते हैं, जो अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा कर सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण देते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, यह समूह ग्रामीण महिलाओं के विकास में योगदान देते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आर्थिक स्वावलंबन और रोजगार पर, यानी कि समूह जो है महिलाओं को कृषि, पशुपालन, सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण जैसे छोटे उद्योग शुरू करने और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। दूसरी, सरकार द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण कार्य चलाकर महिलाओं का कौशल विकास किया जाता है और उसके उत्पाद बाजार में आसानी से बिक सके, इस तरह से करते हैं। और इस तरह से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, वे बैंकिंग सेवाओं से जूझती और समाज में उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इस तरह से स्वयं सहायता समूह से ग्रामीण महिलाओं का विकास होता है और वे इस तरह से विकास उनका जो है आगे महिलाओं को ले जाता है। अब चलते चलते आइए सुनते हैं एक बार फिर से हम भरत सिंह भारती की आवाज़ में ये लोकगीत।

इसी गीत के साथ अब ग्रामीण सभा कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे राज्य केंद्र का प्रसारण। कृपया प्रति

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड के राजखरसवां डांगुआ पोसी चौथी रेलवे लाइन परियोजना को दी मंजूरी। रेल नेटवर्क होगा मजबूत। राज्यपाल ने बीआईटी मिश्रा के 7 दशकों के योगदान को सराहा। युवाओं को एआई और रोबोटिक्स से जोड़कर जॉब क्रिएटर बनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई और कार्यों की जियो टैगिंग के दिए सख्त निर्देश। राज्य में एसआईआर अभियान तेज। सांसद संजय सेठ ने जागरूकता वाहन को किया रवाना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 29 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की अपील की। और राज्य के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक धनबाद के वासेपुर में राजकीय सम्मान के साथ हुए सुपुर्द खाक। विभिन्न राजनेताओं और आम लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज झारखंड और ओडिशा के लिए 3907 करोड़ रुपए की 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके तहत झारखंड में राजखरसवां डांगुआ पोसी चौथी रेलवे लाइन का निर्माण होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे माल ढुलाई और रेल नेटवर्क सुदृढ़ होगा।
2: ईस्टर्न कोस्ट पे देखें तो पैराडीप वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स है। करीब 300 मिलियन टन्स की इसकी कैपेसिटी है। पैराडीप सर्व करता है नॉर्थ में, पूरा स्टील हब है, जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, बोकारो है। इन स्टील हब्स को पैराडीप पोर्ट से कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, आयरन ओर का मूवमेंट, ये सारा का सारा पैराडीप से होता है।
1: इसके साथ ही कैबिनेट ने सेमिकॉन 2.0 मोबाइल फोन विनिर्माण योजना और यूरिया क्षेत्र के लिए NIPU 2026 नीति को भी स्वीकृति दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बीआईटी मिश्रा के स्थापना दिवस पर संस्थान के 7 दशकों के शैक्षणिक व तकनीकी योगदान की सराहना की। उन्होंने NEP 2020 के तहत युवाओं को AI और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों से जोड़कर जॉब क्रिएटर बनाने और विकसित भारत 2047 के निर्माण में भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज पथ निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पारदर्शिता के लिए सभी सड़कों, फ्लाईओवरों और पुलों की अनिवार्य जियो टैगिंग तथा सुव्यवस्थित डेटाबेस तैयार करने का आदेश दिया। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पलामू समाहरणालय में आयोजित समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने IDBI बैंक के CSR फंड से 10 दिव्यांगजनों को ट्राई स्कूटी बांटी। इस दौरान उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री ने राज्य के विकास के लिए बैंकों से CD रेशियो बढ़ाने और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड के खर्च की पारदर्शी निगरानी करने की बात कही। आज देश में स्किल इंडिया मिशन की

0: 18वीं वर्षगांठ और विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है, ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराजधानी दुमका में आज विश्व युवा कौशल दिवस पर 4 झारखंड गर्ल्स बटालियन NCC द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साझा भविष्य के लिए कौशल विषय पर आयोजित इस समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष सुधीर कुमार मंडल और कर्नल अनिल यादव ने युवाओं से सरकारी कौशल योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के कांके विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत आज एक जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर रांची के सांसद संजय सेठ ने नागरिकों से अपील की कि वे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मतदाता विवरणों का समय पर सत्यापन और आवश्यक संशोधन अवश्य कराएं।
2: जैसा पता चल रहा है मीडिया के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से, कि अभी प्रतिशत कम है, जिसका परिणाम है कि लोग के बीच जागरूकता की हो सकता कमी हो, तो इसके गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर लोगों को जागरूक करना कि भाई आप गणना फॉर्म जरूर भरें, और यह गणना फॉर्म है तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा। SIR 29 जुलाई को समाप्त हो रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए जिसका गणना फॉर्म नहीं भरा हो।
0: इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन फॉर्म BLO के पास जमा करने की अपील की है, ताकि 5 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा सके। 22 जुलाई को ASDD सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए देश भर में जारी गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत अब तक 5 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर जुटाए जा चुके हैं। अभियान के झारखंड प्रभारी अभय आश्रय दास ने प्रेसवार्ता में बताया कि आगामी 27 जुलाई को देश के सभी जिलों में उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हस्ताक्षरित मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसके बाद दूसरे चरण में 15 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
3: इस अभियान का यही उद्देश्य है कि संपूर्ण भारतवर्ष में गाय माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, पहला। दूसरा, सभी गौ माताएं जो आयु के आधार पर हत्या ना की जाए। तीसरा, गाय की रक्षा के लिए संविधान में संशोधन कर एक कठोर राज्य और केंद्र कानून बनाए।
0: खूंटी पुलिस ने तजना नदी पुल के पास हुए दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था।
4: जिस लड़की की हत्या हुई है, वो लड़की का अपने पति से काफ़ी दिन से विवाद चल रहा था। इनका आपस में कोर्ट में एक मेंटेनेंस का केस भी चल रहा था, और यह लड़की अपने 5 साल के बच्चे को, जो कि इसके फूल पति के साथ रह रहा था, उसको लेने के लिए उसके पास गई थी। उसी क्रम में इन लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद घटना को इसके पति ने अंजाम दिया।
0: राज्य के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मन्नान मलिक को आज धनबाद के वासेपुर स्थित शमशेर नगर कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। झारखंड में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा और ऐतिहासिक रथ मेलों को लेकर

राज्य भर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज पट खुलने के साथ ही अनुष्ठान शुरू हो गया है, जहां कल शाम भगवान का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में आज दोपहर से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बीच मौसम केंद्र रांची ने तात्कालिक पूर्वानुमान जारी कर राज्य के चतरा, गढ़वा, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड के राजखरसावां डंगुआ पोसी चौथी रेलवे लाइन परियोजना को दी मंजूरी। रेल नेटवर्क होगा मजबूत। राज्यपाल ने बीआईटी मिश्रा के 7 दशकों के योगदान को सराहा। युवाओं को एआई और रोबोटिक्स से जोड़कर जॉब क्रिएटर बनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई और कार्यों की जियो टैगिंग के दिए सख्त निर्देश। राज्य में SIR अभियान तेज। सांसद संजय सेठ ने जागरूकता वाहन को किया रवाना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 29 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की अपील की। और राज्य के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक धनबाद के वासेपुर में राजकीय सम्मान के साथ हुए सुपुर्दे खाक। विभिन्न राजनेताओं और आम लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता।
1: खरीफ फसल की बुआई को लेकर कृषि विभाग की ओर से 51,500 हेक्टेयर में किसानी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 3,065 हेक्टेयर में धान की बुआई हो चुकी है, जो लक्ष्य का 6% है। साथ ही राज्य में मिलेट योजना के तहत गोड्डा में मड़ुआ फसल को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य से दोगुना खेती की गई है।
2: हमारे गोड्डा जिले में धान का टारगेट 51,500 हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है वित्तीय वर्ष 2026-27 में। के विरुद्ध अभी तक हमारे गोड्डा जिले में 3,065 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जो कुल टारगेट का लगभग 6% होता है। इसके साथ झारखंड में एक योजना चल रही है, झारखंड स्टेट मिलेट मिशन योजना। ये योजना के तहत मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें हमारे गोड्डा जिला का लक्ष्य 862 हेक्टेयर है, जिनके विरुद्ध लगभग 1800 हेक्टेयर एरिया कवर कर चुके हैं हम लोग, जो हमारा लक्ष्य से लगभग दोगुना है।
1: ललमटिया थाना क्षेत्र के निमा कला गांव, जो ईसीएल प्रभावित गांव है, इस क्षेत्र का रहने वाला 22 वर्षीय देवगन मरांडी ने नेपाल के खिलाफ फाइटिंग कर आज गोड्डा जिले सहित राज्य का नाम रोशन किया है। दिल्ली में एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट की प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फाइटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया तथा नेपाल को 17 मिनट में पराजित कर राज्य का नाम गौरवान्वित किया है।
3: 3 मिनट का राउंड होता है, फर्स्ट राउंड हुआ, इसमें 17 सेकंड में नॉकआउट किए। सब फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली वाला का दिलासा था, मैं कर लूंगा।
1: जिला मुख्यालय में गत दिनों राजद की 30वां स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केक काटा और सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीबों और दलितों की आवाज उन्होंने हमेशा बुलंद किया है।
4: पक्ष के लोग भी कहते हैं, विपक्ष के लोग भी कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांतों को शायद वो लोग नहीं जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कोई बिकाऊ माल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल वो टिकाऊ माल है। अगर बिकाऊ माल रहता तो संजय यादव भी आरएसएस और बीजेपी के गोद में खेल, लड़ाई लड़ना पसंद किया, गोली खाना पसंद किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
1: आस्था का सबसे बड़ा केंद्र शहर के कनवारा गांव में गत दिनों नागवासुकी मेला के रूप में संपन्न हुआ। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर भगवान नाग देवता की पूजा अर्चना की तथा उन्हें डाली चढ़ाया। नागवासुकी मेला करीब 125 वर्षों से आयोजित होता रहा है। 15 दिनों तक चले पूजा के दौरान यहाँ के लोग नशा से पूरी तरह से मुक्त रहते हैं।

0: गोड्डा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गत दिनों शहर के बीचों बीच स्थित बंगाल ज्वेलरी नामक आभूषण दुकान में तीन साथी अपराधियों ने दनादन गोली चलाकर करीब 50 लाख रुपए के आभूषण एवं नगद राशि लूटकर फरार हो गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद दो दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही अपराधी देवघर जिले के बताए जाते हैं, जिसके पास से 38 ग्राम सोना एवं 45,000 रुपए पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही इस घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त हथियार वो बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है।
1: आसपास के जितने जिले हैं, जामताड़ा, देवघर, तुमका और माका, इसमें ये गैंग अभी तक नहीं पकड़ा गया है और ये सब जगह जितने भी ज्वेलरी लूट के केस हुए इसी ने, और जो मास्टरमाइंड है जो आपने देखा है, जो फुटेज आप लोगों ने भी देखा, वो वही है। हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे।
0: आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर।
2: अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र का प्रसारण FM 103 MHz पर। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का प्रोग्राम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

नमस्कार, मैं हुसैन जैसिन्ना और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता राजेश खन्ना के अभिनीत फिल्मों के गाने।

और इस पल आपका गम, ये तन्हाई

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक रंग, और एक रंग कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म के गाने। अभी आपने सुनी फिल्म खामोशी का गीत, गायक कलाकार थे किशोर कुमार, गीतकार समीम जालपुरी और संगीतकार थे हेमंत कुमार। अब आइए सुनते हैं दो रास्ते फिल्म का गाना। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म का गीत, बोल थे आनंद बख्शी के और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म है सफ़र, गीत रचना इंदिवर के और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सफर फिल्म का गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं कटी फतन फिल्म का गाना। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एक रंग कार्यक्रम, और एक रंग कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं राजेश खन्ना अभिनीत फिल्मों के गाने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आखिर में मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत। बोले हैं मजरू सुल्तानपुरी के और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, आवाज़ किशोर कुमार की।

0: मेरे जीवन साथी। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। श्रोताओं, इसी गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्मी गीतों का प्रोग्राम एक रंग समाप्त होता है। एक रंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे राजेश खन्ना अभिनीत फिल्मों के गाने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। कल्याणी कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर निर्मला सिंह से ली गई बातचीत। विषय है विवाह की सही उम्र क्या है। इनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम कल्याणी।
1: नमस्कार मित्रों, आजकल जिंदगी तेजी से बदल रही है। सभी यही चाहते हैं कि एक अच्छा और मोटी तनख्वाह वाला कैरियर चुने। कैरियर चुनने की राह में शादी भी एक बहुत बड़ा फैसला होता है और ये जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू भी है। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कैरियर संवारने के चक्कर में लोग शादी में विलंब करने लग जाते हैं और एकाकी जीवन जीने लगते हैं। आखिर विवाह कब और किस उम्र में किया जाए? हालांकि सरकार की गाइडलाइन 18 और 21 वर्ष है, और यदि विवाह विलंब से हो तो क्या परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मला सिंह। मैडम स्वागत है। आजकल शादी की उम्र बढ़ती जा रही है, क्या कारण मान रहे हैं आज के बदलते दौर में इसका?
2: यही बात है जो अभी आपने प्रस्तावना में कहा कि लोग सोच रहे हैं कि शादी तब करें जब हम बिल्कुल अपने करियर में सेटल हो जाएं, पढ़ाई ख़त्म कर लें, नौकरी चाकरी करने लगें, जो भी करियर के एक हाइट पहुँचना है, अच्छी कमाई करने लगें, ताकि हम अपने परिवार को, खुद को सब तरह से इकोनॉमिकली सक्षम पाएं, सारे शौक़ पूरे कर सकें। अब इसमें शादी की उम्र भागती चली जा रही है, तो जो भी है जितना कंफर्टेबल हो एटलीस्ट 30 आने तक उनको फैमिली बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 30 के बाद मुश्किल आने लगती है।
1: मुश्किलें क्या आ जाती हैं यदि 30 के बाद विवाह के लोग करते हैं?
2: 30 के बाद अगर विवाह करते हैं, 30 के बाद आपको नहीं पता कि वो 31 में कर रहे हैं कि 32 में कर रहे हैं, ठीक है। 30 के बाद अगर वो विवाह करते हैं तो है कि वो, उनको पता है कि लेट मैं शादी कर रही हूँ। शादी करते के साथ उनको चाहिए कि अभी मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। मैरिज का मतलब है कि हम अपना करियर का काम कर लिए हैं और अब हमको बच्चा ही करना है, इसलिए वो शादी किए, लेट किए और अब तुरंत हमको बच्चा चाहिए। ये चीज़ उनके अंदर एक स्ट्रेस भी देता है कि तुरंत तो आप जो जब चाहेंगे तब हार्मोन का लेवल उस टाइप से नहीं हो जाएगा ना, और जो सिस्टम है आपके हिसाब से नहीं काम करेंगे। अब एक तरह का ये स्ट्रेस उनके अंदर आ जाता है कि हमको तुरंत प्रेग्नेंट होना। नेचुरली वो बहुत जल्दी डॉक्टर के पास भी चले आते हैं, अगर जल्दी नहीं भी आते हैं तो किसी को भी हम लोग तब इलाज के लिए लेते हैं, जबकि एक साल कम से कम अनप्रोटेक्टेड कोई सुरक्षा का ये मापदंड लिए हुए पति पत्नी अगर साथ रहता है फिजिकली, तब अगर बच्चा नहीं होता है तब उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इलाज करते हैं, अगर कुछ निकलता है तो उसका इलाज करते हैं।
1: कैरियर की राह पर चलते चलते जब एक मुकाम आता है तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि अब शादी कर लें और जल्द से जल्द परिवार भी हमारा बन जाए।
2: बिल्कुल।
1: तो इसमें मानसिक तनाव भी होने लग जाता है, लोग अवसाद से घिर जाते हैं। आपके हिसाब से, आप वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, शादी की एक सही उम्र आज के समय में क्या होनी चाहिए ताकि यदि उसके बाद करते हैं तो जटिलताएँ उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है?
2: देखिए, न्यूमेरिकली आप पूछेगा कि कितने उम्र में हो जानी चाहिए, ऐसे तो हर किसी का सिस्टम एक अपनी तरह से भी होता है और बहुत सी बातों पे भी डिपेंड करता है। अगर शादी हम कर रहे हैं, नेचुरली परिवार को आगे बढ़ाना है, तो क्या है कि किसका किस तरह का बनावट भी है। बहुत लेट से करने से क्या होता है कि ऐसे भी आप देखेंगे कि 25 के बाद जनरली बॉडी में ओबेसिटी भी आने लगती है ना, और मेंस्ट्रुएशन हो सकता है कि अभी जो ठीक आ रहा हो वो इतना स्ट्रेस लेकर के, जो भी करियर का या जो भी कही और एज सब मिला करके, हो सकता है कि बहुत अच्छे से हमारा

0: देखा जाए तो 25 साल करियर संवारते संवारते में ही निकल जाता है।
1: बिल्कुल, और इसलिए मैं 25 कह रही हूँ कि 25 और जो भी मतलब 30 के पहले शादी हो जाए, पहला मतलब बेबी जो है वो 30 तक में कोशिश करे आदमी की परिवार बढ़ाना है तो 30 तक में वो कर ले।
0: एक जो पुराने समय परिवार के बीच में जो अपनत्व की भावना होती थी वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। आज के लड़के लड़कियाँ चाहते हैं कि पहले हम अच्छा रोजगार प्राप्त कर लें, अच्छे तनख्वाह वाले हम कैरियर अपना लें, और ऐसे में वो परिवार से दूरियाँ उनकी बढ़ती जाती है।
1: हाँ बिल्कुल, एक क्या है कि स्ट्रगल किया, उन्होंने अचीव किया, जो भी एजुकेशन कंप्लीट किया, नौकरी में आए, नौकरी में भी अच्छा कर रहे हैं, तरह तरह के पीयर प्रेशर है उनके ऊपर, एज भी हो गई है, एक उनकी अपनी मतलब मानसिकता डेवलप हो गई है दोनों की, लड़का हो लड़की हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली का चलन भी इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों को ही कमाना है, लड़का लड़की दोनों को कमाना है, और जब कमाई करने लगे हैं अच्छी कमाई तभी शादी भी कर रहे हैं। नेचुरली परिवार के इसमें नहीं है, वो कहीं और हैं, अपने इसकी जगह में है, जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग है वहाँ पर हैं वो, और परिवार से उनका संबंध भी नहीं है। प्लस कि पहले जो कम उम्र में होती थी शादी, इकोनॉमिकली भी परिवार पे डिपेंडेंट होते थे, या जल्दी शादी हुई, बच्चे हो गए, उनको पालना है, सब तरह से मिला करके, तो इसलिए परिवार में बड़े बुजुर्गों का, जो भी माता पिता हुए और लोग भी हुए, उन सब का रोल था, तो हमें स्ट्रेस भी कम होता था। अब क्या है कि दोनों की पर्सनालिटी बनी हुई है, दोनों एक अपनी मानसिकता के साथ है, दोनों खुद भी न्यूक्लियर फैमिली में और कोई घर में भी नहीं है, अब दोनों अपने काम से आए हैं, अपने अपने से जूझ रहे हैं, और कोई भी बात होता कि थोड़ा सा कोई मन लायक नहीं बात किया, दोनों एक दूसरे से झगड़ भी पड़ते हैं, प्लस लेट से शादी करते हैं अगर, तो ये भी बात है कि वो तुरंत तुरंत मतलब सब कुछ उनको चाहिए होता है, और उस पर्सनालिटी के साथ में एक दूसरे को सुनने का भी टाइम नहीं है उनके पास। देखिए डिवोर्स रेट आज क्या हालत है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट तो हो गए हैं, अच्छा कमा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है, स्वास्थ्य भी नहीं रह जाता है धीरे धीरे, इतना स्ट्रेस लीजिएगा तो स्वास्थ्य का क्या होगा।
0: जब आप काफ़ी विलंब से विवाह के लिए तैयार होते हैं तो आप मानसिक रूप से काफ़ी परिपक्व होते हैं, और आप फिर अपने हिसाब से सोचने लग जाते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वो हमारे हिसाब से ही हो, एक मैच आप करने लग जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इसमें एक तारतम्य नहीं बैठता है, फिर समस्याएं शुरू।
1: वही बात
0: हो,
1: मतलब कॉम्पेरेटिव स्टडी आपका हर बात को लेकर के, कि वो आपके लिमिट में नहीं बैठ रहा है, जो भी आपने एक बना के रखा है कि मान लीजिए कि दोनों का तारतम्य नहीं बैठने का क्या होता है, यही सब चीज़ें हैं, हर चीज़ का एक तरह कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है, वो बात व्यवहार हो, घर का काम हो, अगर बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी हो, सैलरी का ये हो, तो जहाँ वो सब चीज़ें आएंगी तो फिर तो दिक्कत हो ही है ना। बिल और दिल मिलाने की बात कहते हैं ना, कि बाहर वेस्टर्न कंट्री में लोग बिल मिलाते हैं और हम लोग हिंदुस्तान में दिल मिलाते हैं।
0: जब दिल मिलेगा तो इस तरह की समस्याएं नहीं
1: होंगी।
0: मैडम क्या कहेंगे हमारे आने वाले जनरेशन को?
1: मैं ये कहूँगी कि नहीं, पढ़ाई लिखाई तो करनी है, करियर बने, सब कुछ करना है, लेकिन सब में एक थोड़ा बैलेंस लेकर के चले, देखें कि कहाँ पे क्या ये हो रहा है, बहुत उसको लिंगर ना करें, शादी ब्याह की भी उम्र को बहुत लिंगर ना करें, विदाउट पार्टनर भी बहुत उम्र तक रहना, 35 साल 40 साल तक आजकल लोग रह जाते हैं, वो भी आपके अंदर शारीरिक भी बहुत शारीरिक मानसिक बहुत तरह की बीमारियाँ देती हैं। आज डिप्रेशन कितना ज़्यादा है लोगों में, चूँकि उनको भी अपना वो बांटने के लिए कोई भी नहीं है, अपना सुख दुख आदमी बांटना चाहता है ना, अकेले तो झेल नहीं सकेगा लाइफ में, तो उसके लिए आपके पास नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ में डिले कर, बच्चा भी कोशिश करिए, अगर शादी आपने कर ली है तो बच्चा भी कोशिश करिए कि 30 तक में कम से कम एक फर्स्ट बेबी तो आपका ही जाना चाहिए, ज़्यादा डिले ना हो। मैंने देखा है कि लोग 5 साल 10 साल डिले करते हैं, लगता है कि पता नहीं वो क्या बन जाएंगे उस समय, ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी नेगेटिव भी जाता है, वो स्ट्रेस आपको बहुत फ्रूटफुल नहीं बना पाता है। मैं एक डॉक्टर की तरह बात करूं तो लड़की का तो है ही कि भाई उसको हर महीने एक अंडा निकलता है जो कि वही फर्टिलाइज करता है तो बच्चे पैदा होते हैं। अब क्या है कि जब आपका पीरियड शुरू हुआ, जैसे वो मैच्योर हुआ आपका सिस्टम हार्मोन का, हर महीने आपका एक एक निकल रहा है, तो हर महीने तो डिप्लीट हो रहे, जो अच्छे होते हैं, जो बढ़िया सब तरह से अच्छे अंडे होते हैं, वो आपको शुरू में निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, बाद में जो बच जाते हैं वो आपके वो बेकार वाले, ख़राब वाले होते हैं, सब क्वालिटी वाले होते हैं। उसी तरह से पुरुषों में भी है, डिले करते हैं, ज़्यादातर पुरुष बाहर रहे, मोटरसाइकिल चलाए, जींस जैसे कपड़े पहने, ये सब मिला के उनमें भी इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इन दिनों हो गई है। स्पर्म का काउंट

0: क्वालिटी देखते हैं, बहुत ही बेकार होने लगा।
1: तो इसका असर भ्रूण पर भी पड़ेगा मैडम?
0: भ्रूण पे ही पड़ेगा, इसलिए इसकी बातें हो रही हैं। सेक्सुअल लाइफ पे ना भी पड़े तो भ्रूण पे ही इसका असर पड़ता है, क्योंकि तो लेट से भी शादी हो रही है, अच्छे आपके पास अंडे स्पर्म्स भी नहीं है, और ऊपर ये सब भी फैक्टर्स हो जा रहे हैं। प्लस 35 के बाद ऐसे भी देखिएगा कि सिस्टमिक डिसऑर्डर आ जाता है, लड़का हो या लड़की हो, ब्लड प्रेशर जैसा चीज़, डायबिटीज जैसा चीज़, या लड़कियों की जब बच्चा भी जब करने जाती है तो तरह तरह की बीमारियाँ। ये सब अगर प्रॉब्लम पहले से नहीं है, और एक एल्डरली लड़की अगर प्रेग्नेंट होती है, नेचुरल से हो, टेस्ट ट्यूब बेबी से हो, जैसे भी हो, उसमें तरह तरह की बीमारियाँ आने का डर रहता है। तो ब्लड प्रेशर हो जाता है प्रेगनेंसी में आकर के, पहले से नहीं भी है तो डायबिटीज़ हो जाता है। अब उसमें संभालना, आपकी बच्चा को भी ठीक ठीक से एकदम 9 महीने तक पहुँचाना, और माँ का भी स्वास्थ्य, कि दोनों का स्वास्थ्य, जच्चा बच्चा दोनों को देखना, वो डॉक्टर को पानी पिलाने वाली बात हो जाती,
1: चुनौती हो जाती है डॉक्टर,
0: बहुत चुनौती हो जाती है। कभी कभी पेशेंट सकम भी कर जाता है। बस कंक्लूजन यही है, टेक होम मैसेज कहिए यही है कि करियर बनाइए, शादी की उम्र को बहुत ज़्यादा ना टालें, कोशिश करें कि एक लड़की 25 उसके अराउंड 25 से 30 के बीच में, एक लड़का भी है तो उसी तरह से वो दोनों शादी कर लें और करियर बनाएं, दोनों मिलके ये करें, परिवार का भी इम्पोर्टेंस समझें, अपनी प्रोजनी को भी आगे बढ़ाएं।
1: और परिवार एक बहुत बड़ी संस्था है, यदि आप परिवार में रहते हैं तो एक खुशहाल जिंदगी आप व्यतीत करेंगे और आप खुश रहेंगे, परिवार भी खुश रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निर्मला सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: श्रोताओं कल्याणी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर निर्मला सिंह से ली गई बातचीत, विषय था शादी की सही उम्र। बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, बोल हैं फैज ऑनर के और संगीतकार हैं संजीव दर्शन। फिल्म का नाम है प्यासा।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

लीजिए सुनिए पलक मुंशल और यशराज कपिल की आवाज़ों में पुलिस गिरी फिल्म का गीत। गीत के बोल हैं सबीर अहमद के और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

पुलिस गिरी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे पलक मुसल और यशराज कपिल की आवाज़ों में। गीत के बोल थे सबीर अहमद के और संगीतकार थे हिमेश रेशमिया। अब आइए सुनते हैं हनु मलिक के संगीत निर्देशन में नितिन रैकवार का लिखा हुआ गीत। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अनुराधा श्रीराम का। फिल्म का नाम है घर वाली बाहर वाली।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चित्रपट से और मैं हूं संजय सिन्हा। लीजिए सुनिए साधना सरगम और मनहर की आवाजों में जुर्म फिल्म का गीत, बोल हैं प्रेम सैदी की और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

जुर्म फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मन्हर और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत के बोल थे प्रेम सैदी की और संगीतकार थे राजेश रोशन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एम जी श्री कुमार और अनुराधा पटवाल की आवाज़ों में। महबूब का लिखा हुआ गीत है, संगीतकार ए आर रहमान। फिल्म का नाम है डोली सजा के।

0: डोली सजा के रखना। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पटवाल और एम जी श्री कुमार की आवाजों में। गीत के बोल महबूब के थे और संगीतकार थे ए आर रहमान। अब आइए सुनते हैं समीर का लिखा हुआ गीत, संगीतकार है नदीम श्रवण, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है दिलवाले।
1: ने पियानो कौन बजा रहा है? तुम बंद करो इसे, मैं कहती हूँ बंद करो इसे। मैं प्यार नहीं करती तुमसे, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा।
2: हमारे बीच कुछ नहीं रहा?
1: क्या हक है तुम्हें मेरे ही घर में घुस के मुझे सताने का?
2: तभी तो तुम तक मेरा जुनून, मेरे प्यार का पागलपन पहुँचेगा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चित्रपट से, और मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की आवाज़। बोल हैं भैरव अरुण की और संगीतकार हैं जति ललित। फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम की।

आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चित्रपट से। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा समाचार संध्या, न्यूज़ 8 9 और उर्दू में खबरें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 40 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कम्प्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में

दो मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया

0: छह नए प्लांट ऐड किए गए। छह नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये आठ और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं, जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है, जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक
2: हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
5: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

0: करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बंदी फिर लागू होने के साथ ही अमेरिका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़

0: हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निज़ाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर 2 कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ्फुज़ का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमेरिका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। जकार्ता में अंडर 19 और अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप्स में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के जबकि दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते हैं। और फीफा आलमी कप फुटबॉल के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान 46 किलोमीटर तवील 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिससे शहरी मोबिलिटी में बेहतरी आएगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल सरमाया लागत 14,400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी और ये कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान बिला रुकावट कनेक्टिविटी फराहम करेगा, जिससे शहर के सड़क नेटवर्क पर नुमाया तौर पर भीड़ भाड़ कम होगी और शहरी मोबिलिटी बेहतर होगी। इम्कान है कि ये प्रोजेक्ट जिस हिस्से का इहाता करेगा उसमें सफर का औसत वक्त 60 मिनट से कम होकर 20 मिनट हो जाएगा। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वरुणा दरिया के किनारे तकरीबन 43 किलोमीटर तवील 6 से 4 लेन वाले सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिस पर कुल सरमाया लागत तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए होगी। इसे वाराणसी रिंग रोड, वाराणसी हवाई अड्डे, काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक रसाई में नुमाया बेहतरी भी आएगी। मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम की तश्कील के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन 1.0 प्रोग्राम में तवज्जो सनत के आगाज और उसे कायम करने पर थी और सेमीकॉन 2.0 के तहत सभी अहम जरूरी चिप्स भारत में ही डिजाइन की जाएंगी और इस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के इख्तिताम तक मुल्क चिप डिजाइन करने के मामले में खुद कफील बन जाएगा।
1: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए
0: जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि भारत ने अमेरिका, जापान, यूरोपीय यूनियन, नीदरलैंड, सिंगापुर और जर्मनी के साथ पहले ही शराकत दारियां कायम की हैं। उन्होंने मुत्तला किया कि इस सेमीकॉन 2.0 के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का इम्कान है। मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट अखराजात के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि आइंदा 5 बरस के लिए ये स्कीम नाफिज की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से इसकी मुद्दत के दौरान मजमुई तौर पर अंदाजन 39,00,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन तैयार किए जाने का इम्कान है, जबकि मजमुई बरामदात के 7,50,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद है।
3: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मरकजी काबीना ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 की खातिर कौमी सरमायाकारी पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद मुल्क में गैस पर मबनी यूरिया तैयार करने वाले यूनिटों के कयाम के लिए यूरिया के शोबे में नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है ताकि खुद कफालत के हदफ को हासिल किया जा सके।
3: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA नाफिज हो गया है। इसके साथ ही समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी कहा जाता है, भी नाफिजुल अमल हो गया है। इससे बरतानिया में काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद की आमदोरफ्त और मुसाबकती सलाहियत को मजीद तकवीत मिलेगी। इस तारीखी मुआहिदे के तहत बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदात के 99% हिस्से को 0 महसूल के साथ रसाई हासिल होगी। इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग, खुराक की डिब्बाबंदी, दवा साजी और MSME जैसे शोबे शामिल हैं। इस मुआहिदे पर अमल दरामद भारत को आलमी सतह पर एक मजबूत, मुसाबकती और पायदार मईशत बनाने की समत में एक अहम कदम है। ये मुआहिदा भारत और बरतानिया के दरमियान इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का आगाज भी है। मुआहिदे के निफाज के पहले ही दिन भारत से बरतानिया को 14 करोड़ अमरीकी डॉलर मालियत की अशिया बरामद की गयी। तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये मुआहिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के ऐन मुताबिक है। उन्होंने कहा कि ये एक निहायत अहम और बड़े तिजारती मुआहिदों में से एक है जो दोनों मुल्कों को तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके फराहम करेगा। बरतानिया की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरॉन ने कहा कि ये मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए निहायत सूदमंद साबित होगा। मलबूसात की बरामदात को फरोग देने से मुतालिक कौंसिल AEPC के चेयरमैन डॉक्टर ए सक्थीवल ने कहा कि इस मुआहिदे के नतीजे में 1.5 साल के अंदर बरामदात दोगुनी होने की उम्मीद है। नायब सदर CP राधा कृष्णन ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA और समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदा भारत और बरतानिया के देरीना ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA से भारत के किसानों, कारोबारी अफराद और MSMEs को काफी फायदा होगा, जबकि मुख्तलिफ शोबों को बरतानिया के बाजार तक बेहतर रसाई हासिल होगी। इससे टेक्नोलॉजी, पेशेवराना खिदमात और इख्तरा के शोबों में भारतीय बाहमी तआवुन बढ़ेगा और हुनरमंद भारतीय अफराद की आमदोरफ्त आसान होगी। उन्होंने मजीद कहा कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत बरतानिया में आर्जी तौर पर काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद को बड़ा फायदा पहुंचेगा और भारतीय कंपनियों की मुसाबकती सलाहियत में इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आबनाए हुर्मुज में बहरी जहाजों पर हमले के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमरीका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका की फौजी सेंट्रल कमान ने कहा है कि एक बार फिर किए गए हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज में कमर

0: कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है, जो तवानाई की आलमी सप्लाई का एक अहम रास्ता है। ईरानी अहलकारों ने कहा कि अमरीकी हमलों में फौजी बैरक्स को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज कम 7 फौजी अहलकार हलाक हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी हमलों में जुनूबी बंदरगाही शहर बुशहर को भी निशाना बनाया गया, जहां मुल्क की सिविल न्यूक्लियाई तंसीबात मौजूद हैं। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमे मोहाजिरानी ने कहा कि एक दूसरे पर जारी हमलों के दौरान हालिया दिनों में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इस दौरान ईरान के सिपाह पासदारान इंकलाब इस्लामी ने दावा किया है कि उसने बहरीन और उर्दून में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले किए हैं, जिसमें कमान सेंटर, तैयारों के शेल्टर और दीगर अहम मकाम को निशाना बनाया गया है। उसने कहा है कि ये हमले बुहरे हिंद में अमरीका की जानिब से बहरी अफवाज तैनात करने और आबनाए हुरमुस पर कंट्रोल के बहाने बहरी रास्तों की नाकाबंदी के जवाब में किए गए हैं। उसने इस नाकाबंदी पर मगरबी एशिया से तवानाई की सभी बरामदात को रोक देने की भी धमकी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे के रोज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो जिंद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोर्ट CSR पर जोर दिया, ताकि स्टार्टअप्स महारत की तरक्की और एग्रीटेक के जरिए ज़राअत को मजबूत बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने नई दिल्ली में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 के लिए ICAR टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर पर जोर दिया कि वो ट्रस्टीशिप के भारतीय अखलाक को अपनाएं और अपनी कमाई का एक हिस्सा किसानों, ज़रई तहकीक और देही बिरादरियों के फलाह बहबूद के लिए वक्फ करें।
1: निश्चित तौर पर जो समझौते हुए हैं देश में कृषि के लिए भी और बाकी सेक्टर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये समझौते न केवल हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, जिसका लाभ खेती को भी मिलेगा, बल्कि इन समझौतों से भारत में हमारे उद्योग, व्यापार जगत, उनको एक नई ताकत मिलेगी।
0: चुनाव कमीशन ने आज पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी SIR मुहिम की हतमी तारीख में 11 दिन की तौसी कर दी है। दिल्ली में इब्तदाई वोटर फहरिस्त अब 5 अगस्त के बजाय 17 अगस्त को शाये की जाएगी। इस तरह घर घर जाकर वोटरों की तस्दीक का अमल, जो 28 जुलाई तक जारी रहना था, अब 8 अगस्त तक जारी रहेगा। हतमी वोटर फहरिस्त 19 अक्टूबर को शाये की जाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज स्टार्टअप, तहकीक और इख्तरा के लिए बेल्जियम के ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर एकाटेरिना जहरीवा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने तहकीक के लिए साफ सुथरी और माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजीज के लिए उभरते हुए मौके पर तबादला ख्याल किया। 19 साल और 23 साल तक की उम्र की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप्स में आज जकार्ता में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जीते हैं, वहीं दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते। 19 साल तक की उम्र के जुमरे में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता, वहीं प्राची ने 57 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। फीफा आलमी कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे होगा। इससे पहले कल रात टेक्सास में मुकाबले के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर फाइनल में जगह बना ली थी। बरतानिया की हुकूमत ने आज 16 और 17 साल के 9 उम्र जवानों के लिए आधी रात के बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद करने के मंसूबे का ऐलान किया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निज़ाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर 2 कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ्फुज़ का मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत।

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिलके काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें

0: और था कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
1: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
0: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काम छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस

इसके इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए, और उन्होंने कहा मदन जी मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है का माल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

0: सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।
1: हम सब

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के
1: आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मैं हूं इस कार्यक्रम में आपके साथ संजय सिन्हा।

0: कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज से फिल्म है ताजमहल।
1: रोके जमाना चाहे
0: लता मंगेशकर के साथ, मोहम्मद रफी के साथ हैं लता मंगेशकर।

ताजमहल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार रोशन। अब आइए सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और फिल्म है दोस्ती।

दोस्ती फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा और मैं हूँ संजय सिन्हा। सुनते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लता मंगेशकर की आवाज़, गीत के बोल हैं राजेंद्र किशन के और संगीतकार हैं रवि। फिल्म है ख

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ख़ानदान फिल्म का गीत। गीत के बोल थे राजेंद्र किशन के और संगीतकार थे रवि। नमस्कार, मैं हूँ संजय सिन्हा और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। अब आइए सुनते हैं हंसरा जयपुरी का लिखा हुआ गीत है। संगीतकार हैं शंकर जय किशन, गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और फिल्म का नाम है सूरज।

0: तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा।
1: फिल्म का नाम है आराधना, गायक कलाकार किशोर कुमार।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे आराधना फिल्म का गीत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत। मिलन फिल्म का ये गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज के अंदर से। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म का नाम जीने की राह है।

मुकेश का गाया हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी पहचान, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। अब आइए सुनते हैं मेरा नाम जोकर फिल्म का गीत, गाया कलाकार हैं मन्ना डे, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: आदमी से ज्यादा वफादार है। हप, हप, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

प्रथम अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए

0: राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति एनआईपीयू 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। एनडीडीबी मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन डीआईबीडी और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय एआई समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
2: Semicon 2 is built around six key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
1: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The projects include a six-lane greenfield elevated corridor covering over 46 km between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility.